सुप्रभात, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज। रेडियो आजाद है देश। तदनुसार 20 जुलाई 2026। स्टूडियो घड़ी में इस वक्त सुबह के 7 बजे अब हमारी सुबह की सभा आरंभ होती है। आप सभी का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो।

0: जीवन सौरभ। गर्मियों के दिन थे। एक चींटी कड़ी मेहनत से अनाज के दाने जमा कर रही थी। टिड्डा मस्ती में गाना गा रहा था। क्यों परेशान हो रही हो, टिड्डे ने पूछा, आओ मेरे साथ मस्ती करो। चींटी ने कहा, सर्दी आने वाली है, तैयारी जरूरी है। टिड्डे ने मजाक उड़ाया और गाता रहा। सर्दी आई, चींटी के पास खाना था, टिड्डा भूखा मर गया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कल की तैयारी आज करो।
1: जीवन सौरभ।

आइए अब आपको बताए थे इस सभा में प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रमों के बारे में। अब से ठीक बात सुनिएगा कार्यक्रम अक्षनिधि सूक्त 168 मंडल 1 और उसके बाद आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत का। सुबह 8 बजे सुनिए वतन का राग। बटुकेश्वर दत्त की पुण्यतिथि पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम में स्वर होगा सुधा अनुपम का। आठ बजकर 30 मिनट पर सुनिए सुनो कहानी गुप्तदान मुंशी प्रेमचंद की। स्वर होगा संदीप शर्मा का। कला कल्लोलिनी यह कार्यक्रम सुनिए सुबह 9 बजे। सत्यदेव दुबे पर आधारित होगा आज का ही कार्यक्रम। कार्यक्रम में स्वर होगा दानिश खान और मनीषा चतुर्वेदी का। विशेष कार्यक्रम सुनिए सुबह 9:30 पर कला पिनी कोमकली भक्ति संगीत पर। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग की फराज फैयाज ने। और सुबह 10 बजे आज सुनिए परिक्रमा। हिंदोस्ता हमारा ये कार्यक्रम सुनिए सुबह 10:30 पर। मीराबेन की पुण्यतिथि पर आधारित होगा कार्यक्रम हमारे हिंदोस्ता हमारा आज का। ग्यारह बजे सुनिए कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार। गोपाल दास सक्सेना नीरज पर उनकी पुण्यतिथि पर आधारित होगा आज का यह कार्यक्रम। गोपाल दास नीरज बहुत माने हुए कवि रहे हिंदुस्तान के, कई अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। सुबह 11:30 पर सुनिए युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब से लेकर दोपहर 12 बजे तक बने रहिए मेरी यानी रतनेश के साथ और आनंद लीजिए इन विभिन्न कार्यक्रमों का। तो ये थी कार्यक्रम की रूपरेखा और अब एक अंतराल के बाद सुनिए अक्षय निधि।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 168 से वाचन। ऋषि हैं अगस्त्य मैत्रा वरुणि, देवता हैं मरुद्गण, छंद है जगति और त्रिष्टुप।
1: यज्ञा यज्ञा वह समना तुतुर वणिर धियन धियम वो देवया उ ददिध्वे आवोर वाचः सुविताय रोदस्योर महे ववृत्यामवसे सुवृक्ति भी। हे मरुद्गण, प्रत्येक यज्ञीय कर्म में आपके मन की अनुकूलता ही कार्य को तत्परता से संपन्न करा लेती है।

0: आप जल की लहरों के समान हजारों लोगों द्वारा प्रशंसित हैं। आप पूज्य गौ आदि पशुधन के समान सदैव हमारे समीप रहें। सोमासो न ये सुतास्तृप्तांशवो हृत्सु पीतासो दुवसो नासते एषा मनसेषु रम्भिणीव रारभे हस्तेषु खादिश्च कृतिश्च समदधे। सोमरस पान करने से जिस प्रकार तृप्ति होती है, उसी प्रकार इन मरुद्गणों के कंधों पर सुशोभित आयुधों का आश्रय प्राप्त कर सेना प्रसन्न एवं निर्भय होती है। इन मरुद्गणों के हाथों में अलंकृत तलवारें भी सुशोभित हैं। अवस्वयुक्ता दिव आवृथा ययुर्मर्त्याः केशया चोदतः त्मना अरेण वस्तु विजाता अचुच्य वुर दृढ़हानि चिन्मरुतो भ्राज दृष्टयः। अपनी ही इच्छा से कर्मरत ये मरुद्गण दिव्य लोक से अनायासी अंतरिक्ष में आए हैं। हे अविनाशी मरुतो, आप अपनी शक्तियों से प्रेरणा प्रदान करें। प्रखर एवं तेजस्वी शक्तियों से हथियारों को धारण करने वाले ये वीर मरुद्गण प्रबलतम शत्रुओं को भी परास्त कर देते हैं। को वोंतर मरुत रिष्टि विद्युतो रेजतित मना हन्वेव जिह्वया धनवच्युत इशाम न यामनि पुरुप्रैषा अहन्यो नैतशः। हे आयुधों से सुशोभित वीर मरुतों, आप अन्न वृद्धि के लिए विशेष प्रेरणाएं प्रदान करते हैं। धनुष से छोड़े गए बाण के समान, प्रशिक्षित अश्वों के समान तथा जीभ के साथ स्वतः चलायमान हनु अर्थात ठुड्ढी की तरह कौन आपको गतिशील करता है। क्व स्विदस्य रजसो महस्परम क्वावरम मरुतो यस्मिन् नायय यच्या वायथ विथुरेव संहितम् व्यद्रिणा पतथ त्वे शमर्णवम्। हे वीर मरुद्गण, आप जिस महान तथा असीम अंतरिक्ष से आते हैं, उसका आदि अंत कौन सा है? जब आप सघन बादलों को हिलाते हैं, उस समय वज्र प्रहार से आश्रयहीन होने के समान वे तेजस्वी बादल जल वृष्टि करने लगते हैं। सातिर न वोमवती स्वरवती त्वेषा विपाका मरुतः पिपिष्वती भद्रा वो राति प्रणतो न दक्षिणा पृथुज्रयी असुर्येव जंजति। हे वीर मरुद्गण, आपके अनुदानों की तरह ही आपकी संपदा भी है। वह सामर्थ्यवान सुखप्रद तेज संपन्न विशिष्ट फलदायक शत्रुदल संहारक और कल्याणकारी है। आपकी कृपा दक्षिणा के समान ही विजय प्रदान करने वाली तथा दैवी शक्ति के समान शत्रु को परास्त करने वाली है। प्रतिष्ठो भन्ति सिंधवः पविभ्यो यदभ्रियां वाच मुदीरयन्ति अवस्मयन्त विद्युतः पृथिव्यां यदि घृतं मरुतः प्रश्नुवन्ति। जब इन वीर मरुदगणों के रथ के पहियों से मेघों के गर्जन के समान प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तब नदियों के जल प्रवाह में भारी खलबली मच जाती है। वीर मरुदगण जब जल वृष्टि करते हैं, तब पृथ्वी पर विद्युत तरंगें मानो हास्य कर रही प्रतीत होती हैं। असूत प्रश्निर महते रणाय त्वेष मयासाम मरुता मनीकम ते सप्सरासो जनयन्ताभ्व मादित्स्व धामिशिराम परियपश्यन। मातृभूमि की प्रेरणा से महासंग्राम के लिए गतिशील वीर मरुतों की प्रखर तेजस्वी सेना अस्तित्व में आई। संगठित होकर शत्रुओं पर प्रहार करने वाले इन वीरों ने संग्राम में प्रखर तेजस्विता का परिचय दिया। उसके बाद सभी ने अन्न उत्पादक एवं धारक क्षमताओं को भी चारों ओर फैले हुए अनुभव किया। एषवः स्तोमो मरुत इयम् गीर्मान्दार्यस्य मान्यस्य कारोः एषा यासीष्ट तन्वे वयाम् विद्यामेषम् व्रजनम् जीरदानुम्। हे वीर मरुतो, सम्माननीय कवियों द्वारा आपको प्रसन्न करने के लिए उनके द्वारा की गई काव्य रचना आपके निमित्त समर्पित है। ये स्तुतियां आपको परिपुष्ट बनाए, हमें भी अन्न बल तथा विजय प्राप्त कराए।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 168 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि, 90.8 MHz पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए। 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

श्रोताओं, ये तो सर्वविदित है कि ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं हैं। अंततः उसी ने हमें गढ़ा है, उसी ने बनाया है और हमें भी उसी की शरण में जाना होता है। या यूं कहें कि सब कुछ होने के बाद भी अंततः है हरि शरण ही।

श्रोताओं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, करते भी हम हैं, हर कोई करता है, आप भी करते हैं, वो भी करता है, हर इंसान उसकी जितनी क्षमता है उससे कार्य करता है, प्रयास करता है, फल भी पाता है। लेकिन हम कोई ना कोई एक ताकत है जिसके भरोसे ये करते हैं, जो हमसे करवाता है, जो कार्य हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। तो हम सब के मन में एक भरोसा है, उस भरोसे के सहारे हम अपने प्रयास करते हैं,

श्रोता, हम प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास कितना सफल होगा, क्या उसके परिणाम होंगे, परिणाम जो भी हो, अंततः हम जाते हरि शरण में ही हैं। सफल हो तो भी, असफल हो तो भी, सफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, असफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, जाते हरि शरण में ही हैं।

मित्रों, ये था भक्ति संगीत। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। बने रहिए हमारे साथ अगले कार्यक्रमों के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मित्रों, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम वतन का राग का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त का जन्म 18 नवंबर 1910 को बंगाली कायस्थ परिवार में ग्राम औरी जिला नानी बेदवान बंगाल में हुआ था। उनके पिता गोष्ठ बिहारी दत्त कानपुर में नौकरी करते थे। बटुकेश्वर ने 1925 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसी दौरान उनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया। इस बात का उन्हें गहरा आघात लगा। उन्हीं दिनों वे सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के संपर्क में आए और क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य बन गए। सुखदेव और राजगुरु के साथ भी उन्होंने कई जगहों पर काम किया। इसी दौरान उन्होंने बम बनाना भी सीखा। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली स्थित केंद्रीय असेंबली में, जिसे वर्तमान का संसद भवन कहा जाता है, भगत सिंह के साथ बम विस्फोट करके उन्होंने ब्रिटिश राज्य के आधिपत्य का विरोध किया। दरअसल बम विस्फोट बिना किसी को हानि पहुंचाए असेंबली में पर्चे फेंक कर उनके माध्यम से अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए किया गया था। उस दिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को दबाने के लिए ब्रिटिश शासन की ओर से पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाया गया था, जो इन लोगों के विरोध के कारण एक वोट से पारित नहीं हो सका। इस घटना के बाद बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को बंदी बना लिया गया। 12 जून 1929 को इन दोनों को आजीवन कारावास का दंड सुनाया गया। सजा सुनाने के उपरांत इनको लाहौर फोर्ट कारागृह में भेजा गया। इसी दौरान साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन करते हुए लाहौर में लाला लाजपत राय को अंग्रेजों के आदेश पर अंग्रेजी राज के सिपाहियों द्वारा इतना पीटा गया कि उनकी मृत्यु हो गई। इसके लिए उत्तरदायी पुलिस अधिकारी को मारकर लाला लाजपत राय की मृत्यु का प्रतिशोध लेने का निर्णय क्रांतिकारियों ने लिया था। इस कार्यवाही को अंजाम देने के परिणाम स्वरूप लाहौर षड्यंत्र का अभियोग चलाया गया और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उन्हें काला पानी भेज दिया गया।

कारागृह में सजा के दौरान बटुकेश्वर दत्त ने 1933 और 1937 में ऐतिहासिक भूख हड़ताल की। उन्हें सेल्यूलर कारागृह से 1937 में बांकीपुर केंद्रीय कारागृह पटना भेज दिया गया और 1938 में उन्हें आजाद कर दिया गया। कालापानी से गंभीर बीमारी लेकर लौटे दत्त पुनः बंदी बनाए गए और 4 सालों के बाद 1945 में आजाद किए गए। इसके बाद जीवन यापन के लिए उन्होंने बिस्किट और डबल रोटी का एक छोटा सा कारखाना खोला, परंतु उसमें बहुत नुकसान होने के कारण उसे बंद करना पड़ा। कुछ समय तक उन्होंने टूरिस्ट प्रतिनिधि और बस परिवहन का काम भी किया, लेकिन इसमें भी उन्हें असफलता ही हाथ लगी। 1964 में अचानक व्याधिग्रस्त होने के कारण उन्हें गंभीर स्थिति में पटना के शासकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। पटना मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर मुखोपाध्याय ने दत्त का उपचार शुरू किया, परंतु उनकी स्थिति बिगड़ती गई क्योंकि समय पर उन्हें उपचार नहीं मिल सका था। 22 नवंबर 1964 को उन्हें दिल्ली लाया गया। दिल्ली पहुंचने पर उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मैं उस दिल्ली में जहां मैंने बम फेंका था एक अपाहिज बनकर स्ट्रेचर पर लाया जाऊंगा। उन्हें सफदरजंग चिकित्सालय में भर्ती किया गया। पीठ में असहनीय पीड़ा के उपचार के लिए किए जाने वाले कोबाल्ट ट्रीटमेंट की व्यवस्था केवल एम्स में थी। 23 नवंबर को पहली बार उन्हें कोबाल्ट ट्रीटमेंट दिया गया। इस दौरान पता चला कि दत्त बाबू को कैंसर है और उनके जीवन के चंद दिन ही शेष बचे हैं।

पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि हम आपको कुछ देना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो मांग लीजिए। छल छलाए नेत्र और मंद मुस्कान के साथ दत्त ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी यही अंतिम इच्छा है कि मेरा दाह संस्कार मेरे मित्र भगत सिंह की समाधि के पास किया जाए। लाहौर षड्यंत्र अभियोग के किशोरीलाल अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें उन्होंने पहचाना था। उनकी बिगड़ती स्थिति को देखकर भगत सिंह की मां विद्यावती को पंजाब से सरकार ने कार के द्वारा बुलवाया था। 17 जुलाई को बटुकेश्वर दत्त कोमा में चले गए और 20 जुलाई 1965 की रात 1:50 पर उन्होंने इस संसार से विदा ले ली। उनका अंतिम संस्कार उनकी इच्छा के अनुरूप भारत पाक सीमा के पास हुसैनीवाला में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि के पास किया गया। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम में आपको सुना रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी गुप्त धन।

बाबू हरिदास का ईंटों का पजावा यानी भट्टा शहर से मिला हुआ था। आसपास के देहातों से सैकड़ों स्त्री पुरुष लड़के नित्य आते और पजावे से ईंट सिर पर उठाकर ऊपर कतारों से सजाते। एक आदमी पजावे के पास एक टोकरी में कौड़ियां लिए बैठा रहता था। मजदूरों को ईंटों की संख्या के हिसाब से कौड़ियां बांटता। ईंटें जितनी ही ज्यादा होती उतनी ही ज्यादा कौड़ियां मिलती। इस लोभ में बहुत से मजदूर बूते के बाहर काम करते। वृद्धों और बालकों को ईंट के बोझ में अकड़े हुए देखना बहुत करुणाजनक दृश्य था। कभी कभी बाबू हरिदास स्वयं आकर कौड़ी वाले के पास बैठ जाते और ईंट लादने को प्रोत्साहित करते। ये दृश्य तब और भी दारुण हो जाता था जब ईंटों की कोई असाधारण आवश्यकता पड़ती। उसमें मजूरी दूनी कर दी जाती और मजूर लोग अपनी सामर्थ्य से दूनी ईंटें लेकर चलते। एक एक पग उठाना कठिन हो जाता। उन्हें सिर से पैर तक पसीने में डूबे पजावे की राख चढ़ाए ईंटों का एक पहाड़ सिर पर रखे बोझ से दबे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो लोभ का भूत उन्हें जमीन पर पटक कर उनके सिर पर सवार हो गया है। सबसे करुण दशा एक छोटे लड़के की थी जो सदैव अपनी अवस्था के लड़कों से दुगनी ईंटें उठाता और सारे दिन अविश्रांत परिश्रम और धैर्य के साथ अपने काम में लगा रहता। उसके मुख पर ऐसी दीनता छाई रहती थी। उसका शरीर इतना क्रश और दुर्बल था कि उसे देखकर दया आ जाती थी। और लड़के बनिए की दुकान से गुड़ लाकर खाते और कोई व्यक्तिगत संग्राम में अपनी जिह्वा और बाहू के जौहर दिखाता। लेकिन इस गरीब लड़के को अपने काम से काम था। उसमें ना लड़कपन की चंचलता थी, न शरारत, न खिलंदड़पन। यहां तक कि उसके होठों पर कभी हंसी तक ना आती थी। बाबू हरिदास को उसकी दशा पर दया आती। कभी कभी कौड़ी वाले को इशारा करते कि उस हिसाब से अधिक कौड़ियां दे दो। कभी कभी वे उसे कुछ खाने को भी दे देते। एक दिन उन्होंने उस लड़के को बुलाकर अपने पास बिठाया और उसके समाचार पूछने लगे। ज्ञात हुआ कि उसका घर पास ही के गांव में है। घर में एक वृद्धा माता के सिवाय कोई नहीं है और वृद्धा भी किसी पुराने रोग से ग्रस्त रहती है। घर का सारा भार इसी लड़के के सिर पर था। कोई उसे रोटियां बनाकर देने वाला भी न था। शाम को जाता तो अपने हाथों से रोटियां बनाता और अपनी मां को खिलाता था। जाति का ठाकुर था। किसी समय उसका कुल धन धान्य से संपन्न था। लेन देन होता था और शक्कर का कारखाना चलता था। कुछ जमीन भी थी, किंतु भाइयों की स्पर्धा और विद्वेष ने उसे इतनी हीनावस्था तक पहुंचा दिया था कि अब रोटियों के लाले पड़े थे। लड़के का नाम मगन सिंह था। हरिदास ने पूछा, गांव वाले तुम्हारी कुछ मदद नहीं करते? मगन ने कहा, वाह, उनका वश चले तो मुझे मार डालें। सब समझते हैं कि मेरे घर में रुपए गड़े हैं। हरिदास ने उत्सुकता से पूछा, पुराना घराना है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तुम्हारी मां ने इस विषय में तुमसे कुछ नहीं कहा? मगन बोला, बाबूजी नहीं, एक भी पैसा नहीं। रुपए होते तो अम्मा इतनी तकलीफ क्यों उठाती। बाबू हरिदास मगन सिंह से इतने प्रसन्न हुए कि मजूरों की श्रेणी से उठाकर अपने नौकरों में रख लिया। उसे कौड़ियां बांटने का काम दिया और पजावे में मुंशी जी को ताकीद कर दी कि इसे कुछ पढ़ना लिखना सिखाइए। अनाथ के भाग्य जाग उठे। मगन सिंह बड़ा कर्तव्यशील और चतुर लड़का था। उसे कभी देर ना होती, कभी नागा ना होता। थोड़े ही दिनों में उसने बाबू साहब का विश्वास प्राप्त कर लिया। लिखने पढ़ने में भी कुशल हो गया। बरसात के दिन थे, पजावे में पानी भरा हुआ था, कारोबार बंद था। मगन सिंह 3 दिनों से गैर हाजिर था। हरिदास को चिंता हुई, क्या बात है, कहीं बीमार तो नहीं हो गया, कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई? कई आदमियों से पूछताछ की पर कुछ पता ना चला। 4th दिन पूछते पूछते मगन सिंह के घर पहुंचे। घर क्या था, पुरानी समृद्धि का ध्वंसावशेष मात्र था। उनकी आवाज सुनते ही मगन सिंह बाहर निकल आया। हरिदास ने पूछा, कई दिन से आई नहीं, माता का क्या हाल है? मगन सिंह ने अवरुद्ध कंठ से उत्तर दिया, अम्मा आजकल बहुत बीमार हैं, कहती हैं अब ना बचूंगी। कई बार आपको बुलाने के लिए मुझसे कह चुकी हैं, पर मैं संकोच के मारे आपके पास ना आता था। अब आप सौभाग्य से आ गए हैं तो जरा चलकर उसे देख लीजिए, आपकी लालसा भी पूरी हो जाए। हरिदास भीतर गए। सारा घर भौतिक निस्सारता का परिचायक था। सुर्खी, कंकड़ और ईंटों के ढेर चारों ओर पड़े हुए थे। विनाश का प्रत्यक्ष स्वरूप था। केवल 2 कोठरियां गुजरने लायक थीं। मगन सिंह ने 1 कोठरी की ओर उन्हें इशारे से बताया। हरिदास भीतर गए तो देखा
कि वृद्धा एक सड़े हुए काठ के टुकड़े पर पड़ी कराह रही है। उनकी आहट पाते ही आंखें खोली और अनुमान से पहचान गई। बोली, आप आ गए बड़ी दया की, आपके दर्शनों की बड़ी अभिलाषा थी। मेरा नाथ बालक के नाथ अब आप ही हैं, जैसे आपने अब तक उसकी रक्षा की है वो निगाह उस पर सदैव बनाए रखिएगा। मेरी विपत्ति के दिन पूरे हो गए, इस मिट्टी को पार लगा दीजिएगा। एक दिन घर में लक्ष्मी का वास था, हदिन आए तो उन्होंने भी आंखें फेर ली। पुरखों ने इसी दिन के लिए कुछ थाती धरती माता को सौंप दी थी। उसका बीजक बड़े यत्न से रखा था, पर बहुत दिन से उसका कहीं पता नहीं। मगन के पिता ने बहुत खोजा पर न पा सके, नहीं तो हमारी इतनी दशा हीन न होती। आज 3 दिन हुए वो मुझे बीजक आप ही आप रद्दी कागजों में मिल गया, तब से उसे छिपा कर रखे हूं। मगन बाहर है, मेरे सिरहाने जो संदूक रखी है उसी में वो बीजक है, उसमें सब बातें लिखी हैं, उसी से ठिकाने का भी पता चलेगा। अवसर मिले तो उसे खुदवा डालिए, मगन को दे दीजिएगा। यही कहने के लिए आपको बार बार बुलवाती थी, आपके सिवा मुझे किसी पर विश्वास न था। संसार से धर्म उठ गया, किसकी नियत पर भरोसा किया जाए। हरिदास ने बीजक का समाचार किसी से न कहा, नियत बिगड़ गई, दूध में मक्खी पड़ गई। बीजक से ज्ञात हुआ कि धन उस घर से 500 डग पश्चिम की ओर एक मंदिर के चबूतरे के नीचे है। हरिदास धन को भोगना चाहते थे, पर इस तरह कि किसी को कानो कान खबर ना हो। काम कष्ट साध्य था, नाम पर धब्बा लगने की प्रबल आशंका थी, जो संसार में सबसे बड़ी यंत्रणा है। कितनी घोर निष्ठा थी, जिस अनाथ की रक्षा की, जिसे बच्चे की भांति पाला, उसके साथ विश्वासघात। कई दिनों तक आत्मवेदना की पीड़ा सहते रहे, अंत में कुतर्कों ने विवेक को परास्त कर दिया। मैंने कभी धर्म का परित्याग नहीं किया और ना कभी करूंगा, क्या कोई ऐसा प्राणी भी है जो मनुष्य में एक बार भी विचलित ना हुआ हो? यदि है तो वो मनुष्य नहीं देवता है, मैं मनुष्य हूं, मुझे देवताओं की पंक्ति में बैठने का दावा नहीं है। मन को समझाना बच्चे को फुसलाना है। हरिदास सांझ को सैर करने के लिए घर से निकल जाते, जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता तो मंदिर के चबूतरे पर आ बैठते और एक कुदाली से उसे खोदते। दिन में 2-1 बार इधर उधर ताक झांक करते कि कोई चबूतरे के पास खड़ा तो नहीं है। रात की निस्तब्धता में उन्हें अकेले बैठे ईंटों को हटाते उतना ही भय होता था जितना किसी भ्रष्ट वैष्णव को आमिष भोजन से होता है। चबूतरा लंबा चौड़ा था, उसे खोदते 1 महीना लग गया और अभी आधी मंजिल भी तय न हुई। इन दिनों उनकी दशा उस पुरुष की सी थी जो कोई मंत्र जगा रहा हो। चित्त पर चंचलता छाई रहती, आंखों की ज्योति तीव्र हो गई थी, बहुत गुमसुम रहते, मानो ध्यान में हो। किसी से बातचीत न करते, अगर कोई छेड़कर बात करता तो झुंझला पड़ते, पजावे की ओर बहुत कम जाते। विचारशील पुरुष थे, आत्मा बार बार इस कुटिल व्यापार से भागती, निश्चय करते कि अब चबूतरे की ओर न जाऊंगा। पर संध्या होते ही उन पर एक नशा सा छा जाता, बुद्धि विवेक का अपहरण हो जाता, जैसे कुत्ता मार खाकर थोड़ी देर के बाद टुकड़े के लालच में जा बैठता है, वही दशा उनकी थी। यहां तक कि दूसरा मास भी व्यतीत हुआ। अमावस की रात थी, हरिदास मलिन हृदय में बैठी कालिमा की भांति चबूतरे पर बैठे हुए थे। आज चबूतरा खुद जाएगा, जरा देर तक और मेहनत करनी पड़ेगी, कोई चिंता नहीं। घर में लोग चिंतित हो रहे होंगे, पर अभी निश्चित हुआ जाता है कि चबूतरे के नीचे क्या है। पत्थर का तहखाना निकल आया तो समझ जाऊंगा कि धन अवश्य होगा, तहखाना ना मिले तो मालूम हो जाएगा कि सब धोखा ही धोखा है। कहीं सचमुच तहखाना ना मिले तो बड़ी दिल लगी हो, मुफ्त में उल्लू बनूं, पर नहीं, कुदाली खटखट बोल रही है। हाँ, पत्थर की चट्टान है, उन्होंने टटोल कर देखा, भ्रम दूर हो गया, चट्टान थी। तहखाना मिल गया, पर हरिदास खुशी से उछले कूदे नहीं। आज वे लौटे तो सिर में दर्द था, समझे थकान है, लेकिन ये थकान नींद से ना गई। रात को ही उन्हें जोर से बुखार हो गया, 3 दिन तक ज्वर में पड़े रहे, किसी दवा से फायदा ना हुआ। इसी रुग्णावस्था में हरिदास को बार बार भ्रम होता था, कहीं ये मेरी तृष्णा का दंड तो नहीं है। जी में आता था मगन सिंह को बीजक दे दूं और क्षमा की याचना करूं, पर भंडा फोड़ होने का भय मुंह बंद कर देता था। न जाने ईसा के अनुयायी अपने पादरियों के सम्मुख कैसे अपने जीवन भर के पापों की कथा सुनाया करते थे।
हरिदास की मृत्यु के पीछे ये बीजक उनके सुपुत्र प्रभुदास के हाथ लगा। बीजक मगन सिंह के पुरखों का लिखा है, इसमें लेश मात्र भी संदेह न था। लेकिन उन्होंने सोचा, पिताजी ने कुछ सोचकर ही इस मार्ग पर पग रखा होगा। वे कितने नीति परायण, कितने सत्यवादी पुरुष थे, उनकी नियत पर कभी किसी को संदेह नहीं हुआ। जब उन्होंने इस आचार को घृणित नहीं समझा तो मेरी क्या गिनती, कहीं ये धन हाथ आ जाए तो कितने सुख से जीवन व्यतीत हो। शहर के रईसों को दिखा दूं कि धन का सदुपयोग क्यों कर होना चाहिए, बड़ों बड़ों का सिर नीचा कर दूं कोई आंख ना मिला सके, इरादा पक्का हो गया। शाम होते ही वे घर से बाहर निकले, वही समय था, वही चौकन्नी आंखें थीं और वही तेज कुदाली थी। ऐसा ज्ञात होता था मानो हरिदास की आत्मा इस नए भेष में अपना काम कर रही है। चबूतरे का धरातल पहले ही खुद चुका था, अब संगीन तहखाना था, जोड़ों को हटाना कठिन था, पुराने जमाने का पक्का मसाला था। कुल्हाड़ी उचट उचट कर लौट आती थी, कई दिनों में ऊपर की दरारें खुली लेकिन चट्टाने जरा भी ना हिली। तब वो लोहे की छड़ से काम लेने लगे, लेकिन कई दिनों तक जोर लगाने पर भी चट्टाने ना खिसकी। सब कुछ अपने ही हाथों करना था, किसी से सहायता न मिल सकती थी। यहां तक कि फिर वही अमावस्या की रात आ गई। प्रभुदास को जोर लगाते 12 बज गए और चट्टाने भाग्य रेखाओं की भांति अटल थी। पर आज इस समस्या को हल करना आवश्यक था, कहीं तहखाने पर किसी की निगाह पड़ जाए तो मेरे मन की लालसा मन में ही रह जाए। वो चट्टान पर बैठकर सोचने लगे, क्या करूं, बुद्धि कुछ काम नहीं करती। सहसा उन्हें युक्ति सूझी, क्यों ना बारूद से काम लूं। इतने अधीर हो रहे थे कि कल पर इस काम को न छोड़ सके, सीधे बाजार की तरफ चले। 2 मील का रास्ता हवा की तरह तय किया, पर वहां पहुंचे तो दुकानें बंद हो चुकी थी। आतिशबाज हीले करने लगा, बारूद इस समय नहीं मिल सकती, सरकारी हुक्म नहीं है। तुम कौन हो, इस वक्त बारूद लेकर क्या करोगे? ना भैया, कोई वारदात हो जाए तो मुफ्त में बंधा बंधा फिरूं, तुम्हें कौन पूछेगा। प्रभुदास की शांत वृत्ति कभी इतनी कठिन परीक्षा में न पड़ी थी। वे अंत तक अनुनय विनय ही करते रहे, यहां तक कि मुद्राओं की सुरीली झनकार ने उसे वशीभूत कर दिया। प्रभुदास यहां से चले तो धरती पर पांव न पड़ते थे। रात के 2 बजे थे, प्रभुदास मंदिर के पास पहुंचे, चट्टानों की दराजों में बारूद रख पलीदा लगा दिया और दूर भागे। एक क्षण में जोर का धमाका हुआ, चट्टान उड़ गई, अंधेरा गार सामने था, मानो कोई पिशाच उन्हें निगल जाने के लिए मुंह खोले हुए है। प्रभात का समय था, प्रभुदास अपने कमरे में लेटे हुए थे। सामने लोहे के संदूक में 10,000 पुरानी मोहरे रखी हुई थी। उनकी माता सिरहाने बैठी पंखा जल रही थी। प्रभुदास ज्वर की ज्वाला से जल रहे थे, करवटें बदलते थे, कराहते थे, हाथ पांव पटकते थे, पर आंखें लोहे के संदूक की ओर लगी हुई थी। इसी में उनके जीवन की आशाएं बंद थी। मगन सिंह अब पजावे का मुंशी था, इसी घर में रहता था, आकर बोला, पजावे चलिएगा, गाड़ी तैयार कराऊं। प्रभुदास ने उसके मुख की ओर क्षमा याचना की दृष्टि से देखा और बोले, नहीं आज मैं न चलूंगा, तबीयत अच्छी नहीं है, तुम भी मत जाओ। मगन सिंह उनकी दशा देखकर डॉक्टर को बुलाने चला। 10 बजते प्रभुदास का मुख पीला पड़ गया, आंखें लाल हो गईं। माता ने उनकी ओर देखा तो शोक से विवल हो गईं। बाबू हरिदास की अंतिम दशा उनकी आंखों में फिर गई, जान पड़ता था ये उसी शोक घटना की पुनरावृत्ति है। वो देवताओं की मनौतियां मना रही थी, किंतु प्रभुदास की आंखें उसी लोहे के संदूक की ओर लगी हुई थी जिस पर उन्होंने अपनी आत्मा अर्पण कर दी थी। उनकी स्त्री आकर उनके पैताने बैठ गई और बिलख बिलख कर रोने लगी। प्रभुदास की आंखों से भी आंसू बह रहे थे, पर वे आंखें उसी लोहे के संदूक की ओर निराशापूर्ण भाव से देख रही थी। डॉक्टर ने आकर देखा, दवा दी और चला गया, पर दवा का असर उल्टा हुआ। प्रभुदास के हाथ पांव सर्द हो गए, मुख निस्तेज हो गया, हृदय की गति मंद पड़ गई, पर आंखें संदूक की ओर से न हटी। मोहल्ले के लोग जमा हो गए, पिता और पुत्र के स्वभाव और चरित्र पर टिप्पणियां होने लगी। दोनों शील और विनय के पुतले थे, किसी को भूल कर भी कड़ी बात न कही। प्रभुदास का संपूर्ण शरीर ठंडा हो गया था, प्राण थे तो केवल आंखों में। वे अब भी उसी लोहे के संदूक की ओर सतृष्ण भाव से देख रही थी। घर में कोहराम मचा हुआ था, दोनों महिलाएं पछाड़े खा खा कर गिरती थी। मोहल्ले की स्त्रियां उन्हें समझाती थी। अन्य मित्रगण
आंखों पर रुमाल जमाए हुए थे। जवानी की मौत संसार का सबसे करुण, सबसे अस्वाभाविक और भयंकर दृश्य है। ये वज्राघात है, विधाता की निर्दय लीला है। प्रभुदास का सारा शरीर प्राणहीन हो गया था, पर आंखें जीवित थीं। वे अब भी उसी संदूक की ओर लगी थी। जीवन ने तृष्णा का रूप धारण कर लिया था। सांस निकलती है पर आस नहीं निकलती। इतने में मगन सिंह आकर खड़ा हो गया। प्रभुदास की निगाह उस पर पड़ी। ऐसा जान पड़ा मानो उसके शरीर में फिर रक्त का संचार हुआ, अंगों में स्फूर्ति के चिन्ह दिखाई दिए। इशारे से अपने मुंह के निकट बुलाया, उसके कान में कुछ कहा, एक बार लोहे के संदूक की ओर इशारा किया और आंखें उलट गईं, प्राण निकल गए।

0: श्रोताओं, ये थी मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी गुप्तधन। फिर अपने अगले अंक में एक और कहानी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो मित्र, अपने किस्सा को संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: वामपम पवित्र प्रतीकों से लेकर साम्राज्य की मुद्रा तक। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में अमेरिकी पूर्वोत्तर के दलदली इलाकों और तटों पर एक अजीब गरीब बदलाव हो रहा था। यूरोपीय सिक्कों के आगमन से बहुत पहले इस क्षेत्र के मूल निवासी जैसे मुंशी समूह क्वाहोग क्लैम के खोल से मोती बनाते थे। इन मोतियों को वामपम कहा जाता था। ये केवल सजावट की चीजें नहीं थी, ये संधियों को दर्ज करने, कहानियां सुनाने और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए उपयोग की जाने वाली पवित्र वस्तुएं थीं। सबसे कीमती गहरे बैंगनी रंग के मोती होते थे, जिन्हें शंख के गहरे हिस्सों से तराशा जाता था। दिलचस्प बात यह है कि इन बैंगनी मोतियों का उत्पादन इंटरैक्टिव डोमेन्स यानी पारस्परिक प्रभुत्व का परिणाम था। पत्थर जैसे सख्त क्वाहोग हॉल को नाजुक बेलनाकार मोतियों में तराशने के लिए स्वदेशी कारीगरों को यूरोप से आपूर्ति किए गए धातु के ड्रिल की आवश्यकता थी, जो 1630 के दशक तक हडसन घाटी में आम नहीं हुए थे। इस तकनीकी संलयन ने लॉन्ग आइलैंड के तटीय क्षेत्रों को एक वास्तविक टकसाल में बदल दिया। 1640 के दशक तक डच और अंग्रेजी बसने वालों के लिए एक अजीब आर्थिक वास्तविकता बन गई थी। उपनिवेशों में सोने चांदी की कमी थी और फिर फर, जो कि पशुओं की खाल होती थी, का व्यापार धन का प्राथमिक इंजन था। बसने वालों और स्वदेशी समूहों के बीच व्यापार को सुगम बनाने के लिए वामपम पसंद की मुद्रा बन गया। ये वो पैसा था जिसने सीमावर्ती क्षेत्रों के व्यापार को गति दी, जिसका उपयोग वीवर की खाल से लेकर मक्के और यहाँ तक कि जमीन के विशाल टुकड़ों को खरीदने के लिए किया जाता था। हालांकि डच वेस्ट इंडिया कंपनी और स्वदेशी उत्पादक इस पैसे को दो पूरी तरह से अलग नजरियों से देखते थे, उनके लिए वामपम सामाजिक पारस्परिकता का हिस्सा था, एक उपहार जिसके बदले में दुनिया को संतुलन में रखने के लिए दूसरा उपहार दिया जाना चाहिए। उनके लिए ये वस्तु थी जिसे कर यानी टैक्स के दायरे में लाया और नियंत्रित किया जाना था। सितंबर 1639 में डच डायरेक्टर विलेम कीफ्ट ने नीति में एक कट्टरपंथी बदलाव का प्रयास किया। उन्होंने स्थानीय मुंशी समूहों पर सुरक्षा शुल्क लगा दिया और डच किलों की लागत वहन करने के लिए वामपम और वीवर की खाल के रूप में ट्रिब्यूट की मांग की। मुंशी इस बात से आक्रोशित थे। उन्होंने तर्क दिया कि उन्होंने डचों का स्वागत किया था, उनके संकट के समय उनकी देखभाल की थी और उन्हें अपनी जमीन पर मुफ्त में बसने की अनुमति दी थी। वामपम, जो संतुलन का प्रतीक था, उसे अनचाही सुरक्षा के लिए टैक्स के रूप में मांगना सामाजिक पारस्परिकता की विफलता थी। वामपम के आध्यात्मिक और राजनीतिक मूल्य की यही मौलिक गलतफहमी 1640 में प्रथम डच मुंशी युद्ध का प्राथमिक कारण बनी। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ा, लॉन्ग आइलैंड के वामपम उत्पादक एक दुखद बंधन में फंस गए। यूरोपीय बाजार अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से एकीकृत होने के कारण उन्हें केवल अपनी जमीन और मोती बनाने के लिए आवश्यक धातु के औजारों तक पहुंच बनाए रखने के लिए डचों को शांति और सैन्य सहायता का वचन देने के लिए मजबूर होना पड़ा। 17वीं शताब्दी के मध्य तक जंगल के वे आध्यात्मिक मोतीशाही अधीनता के हथियार बन चुके थे, जो उन लोगों की बेदखली का रास्ता तय कर रहे थे जिन्होंने उन्हें बनाया था। वामपम उस समय के एक डरावने अवशेष के रूप में आज भी मौजूद हैं। जब पवित्र प्रतीकों को साम्राज्य की ठंडी मुद्रा के रूप में पुनर्गठित किया गया था।
2: क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना?
3: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
4: प्रारंभिक आधुनिक समुद्रों की भयावहता, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, वीओसी का क्रूर अनुशासन, प्रारंभिक आधुनिक समुद्रों की यात्रा अकल्पनीय आतंक की दुनिया में उतरने जैसी थी, जहां मृत्यु अपने सबसे विभत्स और भयानक रूपों में आती थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों में, जैसे कि एंक्यूजेन या फॉर्च्यून, जो जापान के मार्गों पर चलते थे, वहां का वातावरण पेचिश, अत्यधिक भीड़ और उल्टी की निरंतर दुर्गंध का एक अस्थिर मिश्रण था। इन तैरते हुए नरक तुल्य जहाजों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कंपनी अनुशासन की एक ऐसी प्रणाली पर निर्भर थी जो औसत नाविक को पूर्ण समर्पण के लिए डराने के लिए डिजाइन की गई थी। वीओसी के लिए एक नाविक आज्ञाकारी दास से अधिक कुछ नहीं था। किसी श्रेष्ठ के आदेश के प्रति थोड़ी सी भी अनिच्छा या बुदबुदाहट के संकेत पर एक नाविक को नियमित रूप से रस्सी से पीटा और धमकाया जाता था। हालांकि जो लोग अधिक गंभीर अपराध करते थे, उनके लिए डच नौसैनिक कानून की भीषण रचनात्मकता ने कहीं अधिक विभत्स रूप ले लिया था। गंभीर दंडों में सबसे आम था यार्ड आर्म से गिराना। उदाहरण के लिए, एंक्विजिन पर यदि कोई व्यक्ति अनधिकृत शराब लेते पकड़ा जाता तो उसे उसके हाथ बांधकर रिंगिंग में ऊपर खींच लिया जाता और फिर 40 या 50 फीट नीचे गिरा दिया जाता था। रस्सी के अंत में लगने वाला अचानक झटका पीड़ित के कंधों को उखाड़ने या तोड़ने के लिए काफी था, जिसके बाद उसे कोड़े मारने के लिए मस्तूल से बांध दिया जाता था। चाकूबाजी या झगड़े में शामिल लोगों के लिए सजा और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। अपराधी को अपना हाथ जहाज के मस्तूल के खिलाफ रखने के लिए मजबूर किया जाता था और उसकी हथेली के केंद्र से एक तेज चाकू पार कर दिया जाता था, जिससे वह लकड़ी से चिपक जाता था। अपनी स्वतंत्रता पाने के लिए नाविक को चाकू को अपने ही हाथ में खींचकर बाहर निकालना पड़ता था, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें उसे अपने ही मांस को काटना और टेंडन को अलग करना होता था। नौसैनिक अनुशासन की सबसे निचला स्तर कील हॉलिंग था। दोषी व्यक्ति को वजन से बांधकर ओवरबोर्ड फेंक दिया जाता था और एक रस्सी द्वारा जहाज के नीचे से दूसरी तरफ खींच लिया जाता था। अंधेरे पानी के नीचे खींचे जाते समय नाविक को दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, डूबने की उच्च संभावना और जहाज के तल पर जमे सत राग्र और तीखे शंख जो आरी की तरह काम करते थे। इसका परिणाम अक्सर पीड़ित के शरीर से मांस का खून से लथपथ पट्टियों के रूप में उखड़ जाना होता था। जापान में भर्ती किए गए सैनिकों और भाड़े के लड़ाकों के लिए यह तलवार की दवा ही एकमात्र ऐसा अधिकार था जिसका वीओसी का मानना था कि वे सम्मान करते हैं। सतर्कता में मामूली चूक का अंत भी अंतिम होता था। पेड्रो नामक एक सैनिक को केवल इसलिए फायरिंग स्क्वाड द्वारा मार दिया गया क्योंकि वह किले की दीवारों पर पहरा देते समय सोता हुआ पाया गया था। टॉर्चर और जुर्माने की इस व्यापक प्रणाली ने सुनिश्चित किया कि चाहे वह एम्स्टर्डम का कोई गरीब नाविक हो या हिरोडो का कोई साहसी व्यक्ति, वह कंपनी राज्य का एक आज्ञाकारी सेवक बना रहे जो रस्सियों ब्लेड के निरंतर प्रत्यक्ष भय से बंधा हुआ था।
5: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलनी।

0: कला कल्लोलिनी, जहां कला लहर बनकर बहती है और कलाकारों की आवाज वक्त की बंदिशों को तोड़कर सदियों तक गूंजती रहती है। आज की कड़ी में हम बात करेंगे एक ऐसे महानायक की जिसने रंगमंच को सिर्फ जिया नहीं बल्कि उसे एक नई परिभाषा दी। आइए मिलकर रुख करते हैं इस कलात्मक सफर की ओर। बहती है जो अनवरत सदियों का इतिहास लिए, रंगों की सुरों की लफ्जों की प्यास लिए, ये भावों की सरिता है, ये सुरमई रागिनी है, कला के अनंत समंदर से उठी ये कला कल्लोलिनी है। कुछ अनकहे किस्से हैं, कुछ जाने पहचाने हैं, कुछ अनकहे किस्से हैं, कुछ जाने पहचाने हैं, ये कभी घुंघरू बनकर छनकती है, कभी चित्र बनकर सजती है, ये कभी नाटक के मंच पर जीवन की हकीकत बनकर गरजती है। समय का पर्दा अब धीरे धीरे सरकने वाला है, इतिहास के पन्नों से एक सितारा मंच पर उतरने वाला है।
1: और आज कला कल्लोलिनी की लहरें हमें बहाकर ले जा रही हैं एक ऐसे समंदर की तरफ जिसने भारतीय रंगमंच को अपनी शर्तों पर जीना सिखाया। एक ऐसा शख्स जिसने नाटक को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा का आत्म साक्षात्कार बना दिया। जी हाँ, आज बात हो रही है पद्म भूषण से सम्मानित आधुनिक भारतीय रंगमंच के कबीर, अक्खड़ फक्कड़ और अद्वितीय नाटककार निर्देशक सत्यदेव दुबे की। आइए शुरू करते हैं उनकी जीवन यात्रा। दोस्तों, समय का पहिया पीछे घूमता है। सन 1936 की 13 जुलाई को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की शांत वादियों में एक बालक ने आंखें खोली। नाम रखा गया सत्यदेव दुबे।
0: घर में कला और संस्कृति का एक अनूठा माहौल पहले से मौजूद था। एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे सत्यदेव के पिता का बिलासपुर में अपना एक स्थानीय सिनेमा हॉल था। उस दौर में जहां आम बच्चों के लिए सिनेमा देखना किसी सपने जैसा होता था, वहीं छोटे सत्यदेव के लिए वह जादुई पर्दा उनका अपना घर था। वो अक्सर अंधेरे हॉल के किसी कोने में बैठ जाते और पर्दे पर चलने वाली कहानियों, लाइव परफॉर्मेंस और इंसानी जज्बातों को बड़े कौतूहल से निहारते। फिल्मों के उन किरदारों को देखकर उनके बाल मन में कहानी कहने और दृश्यों को रचने की समझ अनजाने में ही अपनी जड़ें जमाने लगी थी। लेकिन नियति का खेल भी बड़ा निराला होता है। जिस लड़के को आगे चलकर भारतीय रंगमंच का सबसे बड़ा कप्तान बनना था, उस समय उसका दिल थिएटर के विंग्स में नहीं बल्कि क्रिकेट के हरे मैदान पर धड़कता था। बचपन और शुरुआती लड़कपन के दिनों में सत्यदेव के सिर पर क्रिकेट का भूत सवार था। धूप में तपते हुए हाथ में बल्ला थामे वो गेंद की हर हरकत को वैसे ही भापते थे जैसे आगे चलकर उन्होंने अभिनेताओं के हाव भाव को भापा। वो एक पेशेवर क्रिकेटर बनने का ख्वाब देखते थे। खेल के मैदान की वो एकाग्रता, अनुशासन और कुछ कर गुजरने की जिद, शायद ये सब उन्होंने क्रिकेट की पिच से ही सीखा था, जिसे उन्होंने बाद में थिएटर के तख्ते पर उतार दिया। किसे पता था कि बिलासपुर के मैदानों पर चौके छक्के लगाने का सपना देखने वाला ये लड़का एक दिन माया नगरी मुंबई की पिच पर उतरकर भारतीय नाटक और सिनेमा की पूरी कप्तानी ही बदल देगा।
1: पिता के सिनेमा हॉल के प्रोजेक्टर से निकलती रोशनी की वो चमकीली लकीर, सिल्वर स्क्रीन पर नाचते हुए किरदार और बिलासपुर की तपती दोपहरी में चमचमाता क्रिकेट का बल्ला, सत्यदेव दुबे का बचपन इन्हीं दिलचस्प रंगों से बुना गया था। बिलासपुर की उस माटी में कुछ अजीब सी कशिश थी। अरपा नदी के किनारे खेलते हुए इस बालक के भीतर शब्दों की एक नदी बहने लगी थी। पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर कोई सरकारी ओहदा संभाले, पर नियति ने तो इस बालक के हाथों में रंगमंच की चाबी सौंप रखी थी। दुबे जी का बचपन कोई बहुत ठाट बाट का नहीं था, एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, एक ऐसी खोज जो उन्हें शांत नहीं बैठने देती थी। वो किताबों में खो जाते, कहानियों के पात्रों को अपने आसपास ढूंढने लगते।
0: बिलासपुर की शांत हवाओं को पीछे छोड़ जब 16-17 साल का वह दुबला पतला लड़का बंबई के खचाखच भरे वीटी स्टेशन पर उतरा तो उसके पास ना तो कोई बड़ा सूटकेस था और ना ही जेब में पैसों की खनक थी, तो बस आंखों में एक अजनबी सी चमक और दिल में कुछ बड़ा कर गुजरने की बेचैनी। सेंट जेवियर्स कॉलेज की ऐतिहासिक इमारत के ऊंचे मेहराबों के नीचे अंग्रेजी साहित्य के पन्नों को पलटते हुए सत्यदेव दुबे के विचारों को नए पंख मिल रहे थे। कॉलेज उनके लिए सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं बल्कि एक जादुई प्रयोगशाला बन गया था। वहां वह रोज नए विचार गढ़ते थे, लेकिन इस वैचारिक उड़ान के पीछे एक कड़वी हकीकत भी थी, पेट की भूख और खाली जेब। माया नगरी की चमचमाती रोशनियों के बीच इस नौजवान के संघर्ष की कहानी बड़ी बेदर्द मगर बेहद खूबसूरत थी। जब रात को पूरी मुंबई सो जाती तब सत्यदेव के पास सिर छुपाने की कोई छत नहीं होती थी। कई रातें उन्होंने रेलवे स्टेशनों के ठंडे बेंचों पर या फुटपाथ के सन्नाटे में आसमान को चादर बनाकर गुजारी।
1: श्रोताओं, कहते हैं ना कि जौहरी की नजर में हीरा कभी नहीं छुप सकता। कॉलेज के इन्हीं कई दिनों के बीच नियति ने उनका हाथ थाम लिया। उनकी मुलाकात रंगमंच के उस दौर के सबसे बड़े पारखी और थिएटर यूनिट के मसीहा इब्राहिम अलकाजी से हुई। अलकाजी साहब ने भीड़ में खड़े इस अखड़ स्वाभिमानी और बेहद प्रतिभाशाली लड़के की भीतर सुलगती कला की चिंगारी को पहली ही नजर में पहचान लिया। उन्होंने सत्यदेव को तराशना शुरू किया और बस यहीं से फुटपाथ के उस फकीर का भारतीय रंगमंच के सुल्तान बनने का आधिकारिक सफर शुरू हो गया। कहते हैं जब दो समंदर आपस में मिलते हैं तो कोई शोर नहीं होता, बस एक गहरी अनंत खामोशी छा जाती है। मुंबई की उस उमस भरी शाम को भी शायद समय कुछ पल के लिए ठहर गया था। ये सिर्फ दो इंसानों की मुलाकात नहीं थी, ये रंगमंच के अतीत और भविष्य का एक ऐतिहासिक आलिंगन था। एक तरफ थे इब्राहिम अलकाजी, अनुशासन का दूसरा नाम, सलीका, संजीदगी और थिएटर का वो कड़क पैमाना जिसे छूना हर किसी के बस की बात नहीं थी, और दूसरी तरफ बिलासपुर की धूल से उठकर आया वो अल्हड़ नौजवान सत्यदेव दुबे।
0: अलकाजी का अनुशासन और दुबे का अनगणनपन, इन दोनों का मिलन ऐसा था जैसे बहती हुई उफनती नदी को एक मजबूत बांध मिल गया हो। अलकाजी ने सत्यदेव को शब्दों का सलीका सिखाया और सत्यदेव ने अलकाजी के रंगमंच को अपनी मिट्टी की सौंधी खुशबू दी। इब्राहिम अलकाजी 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली भारतीय थिएटर निर्देशकों में से एक थे। रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से प्रशिक्षित, उन्होंने भारतीय रंगमंच में भारी आधुनिकता और पेशेवर रवैया पेश किया। उन्होंने मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन और गिरीश कर्नाट के तुगलक जैसे 50 से अधिक नाटकों का निर्देशन किया। 1962 से 1977 तक एनएसडी के प्रमुख के रूप में उन्होंने भारत में अभिनय और रंगमंच की शिक्षा को एक नई दिशा दी। सत्यदेव दुबे एक बहुमुखी रंगकर्मी, अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे। 1950 के दशक के मध्य में मुंबई आकर वे इब्राहिम अलकाजी की थिएटर यूनिट में शामिल हो गए। अब अलकाजी एनएसडी के लिए दिल्ली चले गए तो दुबे ने थिएटर यूनिट की बागडोर संभाली। उन्होंने गिरीश कर्नाड, बादल सरकार और विजय तेंदुलकर जैसे नाटककारों के प्रमुख नाटकों का निर्माण किया। 1971 में उन्होंने फिल्म शांतता कोर्ट चालू आहे का निर्देशन किया, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अलकाजी और दुबे के बीच का संबंध सत्यदेव दुबे के रंगमंच करियर की शुरुआत इब्राहिम अलकाजी के सानिध्य में ही हुई थी। दुबे ने थिएटर यूनिट में अलकाजी के मार्गदर्शन में काम किया और बाद में उनके द्वारा छोड़े गए समूह का नेतृत्व भी किया। इसके अलावा दुबे ने ही धर्मवीर भारती के अंधा युग की क्षमता को पहचाना था और उसे अलकाजी के पास भेजा था। अलकाजी ने 1962 में एनएसडी में इस नाटक का मंचन किया, जिसने भारतीय रंगमंच के इतिहास में एक नया प्रतिमान स्थापित किया। ये मुलाकात महज एक इत्तेफाक नहीं थी, ये नियति का वो गुप्त समझौता था जिसने फुटपाथ पर सोने वाले एक भूखे फकीर को भारतीय रंगमंच का शहंशाह बनाने की पहली इबारत लिखी थी।
1: सत्यदेव दुबे ने जब महसूस किया कि हिंदी रंगमंच अपने मूल लेखन की कमी से जूझ रहा है, तो उन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने मराठी, कन्नड़, बंगाली भाषा के सर्वश्रेष्ठ समकालीन नाटकों को चुना और उन्हें हिंदी में इस तरह ढाला कि वे नाटक हिंदी भाषी दर्शकों की अपनी रूह का हिस्सा बन गए। गिरीश कर्नाड के हैवदन और ययाति जैसे कन्नड़ नाटकों को हिंदी मंच पर लाकर उन्होंने पौराणिक कथाओं को आधुनिक संदर्भ दिए, तो वहीं बादल सरकार के बंगाली नाटक एवं इंद्रजीत के जरिए उन्होंने उस दौर के युवाओं के भीतर की सामाजिक छटपटाहट और अकेलेपन को आवाज दी। वे सही मायने में भारतीय भाषाओं के बीच एक मजबूत और जीवंत सांस्कृतिक सेतु बन गए थे। दुबे जी का ये दृढ़ विश्वास था कि नाटक भव्य सेट, कीमती पर्दों या भारी भरकम साजो सामान का मोहताज नहीं होता, बल्कि रंगमंच की असली ताकत तो अभिनेता, शब्द और दर्शकों के बीच का सीधा संवाद है। उन्होंने बेहद कम खर्चे में सिर्फ कुछ कर्टन्स, एक दो कुर्सियां और बेहतरीन लाइट अरेंजमेंट के दम पर ऐसे नाटक तैयार किए जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखते थे। उनके इस मिनिमलिस्टिक प्रयोग का सबसे बड़ा उदाहरण अंधा युग का मंचन था, जहां उन्होंने किसी बंद ऑडिटोरियम में भारी भरकम खर्चों के बजाय बाण गंगा के खुले खंडहरों को अपना सेट बनाया और प्रकृति तथा माहौल को ही अपने नाटक का एक जीवंत हिस्सा बना दिया।
0: गुरु इब्राहिम अलकाजी के जाने के बाद दुबे जी ने थिएटर यूनिट को देश की सबसे जीवंत रंग कार्यशाला में तब्दील कर दिया, जहां नाटक सिर्फ शाम को मंच पर दिखाने के लिए नहीं होते थे, बल्कि रोज अभिनय, आवाज के उतार चढ़ाव और शब्दों के उच्चारण पर कड़ा विमर्श होता था। दुबे जी भाषा और संवाद अदायगी को लेकर बेहद सख्त थे और यदि कोई अभिनेता किसी शब्द का उच्चारण गलत करता तो वे पूरे नाटक का रिहर्सल तब तक रोक देते थे जब तक वह शब्द बिल्कुल शुद्ध ना निकले। उनका यह खड़पन और गुस्सा किसी दुर्भावना से नहीं, बल्कि कला के प्रति उनके अगाध समर्पण से पैदा होता था और यही वजह थी कि उनका कड़ा अनुशासन कलाकारों को मांझकर हीरा बना देता था। सत्यदेव दुबे के लिए रंगमंच कोई व्यवसाय या मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि वह एक गहरी दार्शनिक साधना और आत्मखोज का माध्यम था। उन्होंने विजय तेंदुलकर के नाटक गिधारे और सखाराम बाइंडर जैसे नाटकों का निर्देशन किया, जो समाज के पाखंड, मानवीय क्रूरता और दबी हुई कुंठाओं पर बेहद तीखा प्रहार करते थे। इन प्रयोगधर्मी नाटकों को लेकर उस दौर में बड़े विवाद भी हुए और सेंसरशिप की तलवारें भी चली, लेकिन दुबे जी कभी अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं हुए। उनका मानना था कि नाटक का काम दर्शक को केवल सुलाना या बहलाना नहीं, बल्कि उसकी सोई हुई चेतना को झकझोर कर जगाना है। इसलिए वे रंगमंच और कलाकारों की आत्मनिर्भरता के बहुत बड़े पैरोकार थे। वे हमेशा लोगों से इस बात का आग्रह करते थे कि नाटक को कभी मुफ्त या पास पर नहीं, बल्कि हमेशा टिकट खरीद कर ही देखना चाहिए। उनका मानना था कि जब एक दर्शक टिकट खरीदता है तो वह न केवल कला का सम्मान करता है, बल्कि उस नाटक और कलाकार की आजादी को भी जिंदा रखता है।
1: श्रोताओं, सत्यदेव दुबे सिर्फ पर्दे के पीछे से धागे हिलाने वाले सूत्रधार नहीं थे, उनके भीतर एक ऐसा अभिनेता भी छुपा था जो मंच की खुशबू पाते ही जाग उठता था। अक्सर जब थिएटर की रिहर्सल खत्म होती या शाम को दोस्तों और शागिर्दों की महफिल जमती तो लोग उनसे कुछ सुनाने की जिद कर बैठते। दुबे जी मुस्कुराते, उनके चेहरे की कड़कड़ाहट पल भर में गायब हो जाती और उनकी आंखें किसी गहरे दार्शनिक सोच में डूब जाती। वे हमेशा धर्मवीर भारती के अंधा युग के उस पात्र की पंक्तियां सुनाते जो उनके दिल के सबसे करीब था, अश्वत्थामा। एक ऐसा पात्र जो भटक चुका था, जो कुंठित था, लेकिन जिसके भीतर सत्य को जानने की छटपटाहट थी। जब दुबे जी अपनी बुलंद और भारी आवाज में हाथों को हवा में लहराते हुए ये संवाद बोलते तो कमरे में बैठा हर शख्स अपनी सुध-बुध खो बैठता था।
0: यह मेरा नहीं, यह उस युग का अंधापन है जिसमें हम सब जीते हैं, जिसमें हम सब मरते हैं। मैंने तो सिर्फ उस प्रतिशोध को चुना जो इस समूचे ब्रह्मांड के माथे पर लिखा था। अब न कोई न्याय है, न कोई धर्म है, सिर्फ एक अंतहीन रात है और मैं हूं। इन पंक्तियों को बोलते हुए उनकी आवाज में जो दर्द, जो गुस्सा और जो दार्शनिक ठहराव होता था वह सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देता था। उन्हें ऐसे जटिल पात्र बहुत पसंद थे जो सफेद या काले नहीं होते थे बल्कि इंसानी स्वभाव के भूरे रंगों को दर्शाते थे। वह कहते थे कि नाटक का असली मजा तब है जब वह आपको अंदर से बेचैन कर दे। आज भी जब थिएटर की पुरानी गलियों में अंधा युग का जिक्र होता है तो लोगों के कानों में अश्वत्थामा के रूप में गूंजती सत्यदेव दुबे की वह बुलंद आवाज आज भी सजीव हो उठती है।
1: इसी वैचारिक आजादी और कड़े अनुशासन की पाठशाला से दुबे जी ने अभिनेताओं की एक ऐसी अद्वितीय पौध तैयार की जो आगे चलकर न केवल थिएटर के स्तंभ बने बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और दिग्गज अभिनेता कहलाए। उनके तराशे हुए हीरो में अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, रत्ना पाठक शाह, अमोल पालेकर और सतीश कौशिक जैसे नाम शामिल थे जिन्होंने अभिनय की परिभाषा ही बदल दी। रंगमंच की इसी धुरी पर काम करते हुए 70 के दशक में सत्यदेव दुबे की मुलाकात मशहूर फिल्मकार श्याम बेनेगल से हुई। ये मुलाकात भारतीय समानांतर सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुई। दोनों की कलात्मक ट्यूनिंग इतनी बेहतरीन थी कि श्याम बेनेगल के शुरुआती और सबसे प्रभावशाली फिल्मों की आत्मा दुबे जी के शब्द ही बने। दुबे जी ने बेनेगल की कालजयी त्रयी, अंकुर, निशांत और मंथन के संवाद और पटकथा लिखी जिन्होंने भारतीय सिनेमा को यथार्थवाद का एक नया चेहरा दिया। इसके बाद 1977 में आई फिल्म भूमिका के लिए तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ पटकथा का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। उन्होंने बेनेगल की फिल्म कलयुग की पटकथा पर भी काम किया था।
0: शब्दों का जादू बिखेरने के साथ साथ दुबे जी ने पर्दे पर अपनी अदाकारी का हुनर भी दिखाया। उन्होंने श्याम बेनेगल की ही फिल्म निशांत में एक पुजारी की बेहद जीवंत और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा उन्होंने गोविंद निहलानी की मशहूर फिल्म आक्रोश में भी अभिनय किया। इतना ही नहीं, कला सिनेमा से इतर उन्होंने मुख्य धारा के सिनेमा में भी अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने साईं पराजपे की बेहद लोकप्रिय फिल्म चश्मे बद्दूर के तीखे और मजेदार संवाद लिखे और निर्देशक उमेश मेहरा की फिल्म हमारे तुम्हारे की पटकथा भी तैयार की। सत्यदेव दुबे ने श्याम बेनेगल की टीवी सीरियल भारत एक खोज में चाणक्य और फिल्म निशांत में पुजारी की भूमिका निभाई। पटकथा लेखन से लेकर कैमरे के सामने अभिनय करने तक सिनेमा का ये पूरा सफर उनके बहुमुखी और अक्खड़ कलाकार होने का सबसे बड़ा प्रमाण था। मशहूर फिल्मकार श्याम बेनेगल सत्यदेव दुबे को भारतीय कला जगत का एक अद्वितीय और अपरिहार्य स्तंभ मानते थे। वे अक्सर दुबे जी के बारे में कुछ बेहद खास बातें कहा करते थे। बेनेगल अक्सर तारीफ करते थे कि दुबे जी के पास अभिनेताओं को तराशने की एक जादुई कला थी। अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी जैसे दिग्गज कलाकारों को बेनेगल ने अपनी फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं दी। वे सब दुबे जी की थिएटर वर्कशॉप की ही देन थे। बेनेगल मानते थे कि दुबे जी जिस अभिनेता पर हाथ रख देते थे वे सोना बन जाता था। श्याम बेनेगल दुबे जी के अक्खड़पन और उनकी फकीरी के मुरीद थे। वे कहते थे कि दुबे एक ऐसे विरल कलाकार थे जिन्होंने कभी पैसों या शोहरत के लिए अपनी कला से समझौता नहीं किया। वे सिनेमा में काम जरूर करते थे लेकिन उनका दिल हमेशा थिएटर के लिए ही धड़कता था। सीधे शब्दों में कहें तो श्याम बेनेगल के लिए सत्यदेव दुबे सिर्फ एक सह लेखक या दोस्त नहीं थे, बल्कि वे उन्हें एक ऐसा क्रिएटिव पार्टनर और थिएटर गुरु मानते थे जिसने भारतीय सिनेमा और रंगमंच को सच बोलना सिखाया।
1: श्रोताओं, वो पूरी तरह से एक फकीर और सन्यासी की तरह जिए, जिनका एकमात्र धर्म और परिवार सिर्फ और सिर्फ रंगमंच ही था। दुबे जी ने जीवन के आखिरी पड़ाव तक नए लड़कों और लड़कियों को तलाशने और उन्हें तराशने का काम कभी बंद नहीं किया। मुंबई का प्रसिद्ध पृथ्वी थिएटर उनका दूसरा घर बन चुका था। वे घंटों वहां के कैफे में ही बैठे रहते थे, जहां कोई भी नया लड़का स्क्रिप्ट लेकर उनके पास आ सकता था। वो बिना किसी फीस के सिर्फ चाय की चुस्कियों पर नए निर्देशकों को नाटक की बारीकियां सिखाते थे। उन्होंने हमेशा नए और युवा नाटककारों को मंच दिया, क्योंकि उनका मानना था कि थिएटर को जिंदा रखने के लिए नए खून और नए विचार का आना बेहद जरूरी है।
0: थिएटर और फिल्मों के अलावा दुबे जी ने जन माध्यमों की ताकत को भी बहुत पहले पहचान लिया था। उन्होंने धर्मवीर भारती के अंधा युग को न केवल मंच पर उतारा, बल्कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी उसके कई प्रयोग किए। उन्होंने ध्वनि और संवाद के उतार चढ़ाव

0: समर्पण को सर्वोच्च सम्मान देते हुए साल 1971 में देश की सर्वोच्च कला संस्था द्वारा उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद भारतीय समानांतर सिनेमा को अपनी लेखनी और संवादों से एक नया और यथार्थवादी धरातल देने के लिए साल 1977 में आई उनकी प्रसिद्ध फिल्म भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पटकथा का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनके जीवन भर के संघर्ष, अमूल्य योगदान और एक महान मेंटोर के रूप में उनके कद को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें बेहद प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान से भी विभूषित किया। आखिरकार उनके इसी फकीराना जज्बे और कलात्मक महानता को सलाम करते हुए साल 2011 में भारत सरकार ने उन्हें देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से अलंकृत किया, जो उनके जीवन की कला यात्रा पर राष्ट्र की ओर से एक गौरवशाली मोहर थी।
1: दुबे जी मुंबई के एक बेहद साधारण से किराए के कमरे में किताबों और नाटकों की स्क्रिप्ट के बीच अपनी फकीरी में मस्त थे। वे अक्सर अकेले ही मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करते या पृथ्वी थिएटर के बाहर एक कप चाय हाथ में थामे घंटों बैठे रहते। उनके जीवन में ना तो पैसों का लालच था और ना ही किसी सांसारिक सुख की चाह। उनका कोई पारंपरिक परिवार नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी कला को ही अपनी संतान और अपना संसार मान लिया था। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आपको अकेलेपन से डर नहीं लगता, तो उन्होंने हंसकर कहा था, जिसके पास शब्दों का मेला हो और मंच की रोशनी हो, वो भला अकेला कैसे हो सकता है। उनका ये निश्चल समर्पण दिखाता है कि वे सिर्फ नाटक करते नहीं थे, वे खुद में एक जीवंत नाटक थे। सत्यदेव दुबे ने जीवन के अंतिम क्षणों तक अपनी कलात्मक ऊर्जा और जीवंतता को बनाए रखा, लेकिन उम्र के आखिरी पड़ाव पर उनका शरीर थकने लगा था। साल 2011 के सितंबर महीने में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ, जिसके बाद वे कोमा में चले गए। इसके बाद अगले कुछ महीनों तक मुंबई के एक अस्पताल में उनका इलाज चलता रहा। आखिरकार अपनी बीमारी से एक लंबा और संजीदा संघर्ष लड़ने के बाद 25 दिसंबर 2011 को 75 वर्ष की आयु में मुंबई के टोपीवाला राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज और BYL नायर चैरिटेबल अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन का कारण लंबे समय से चल रही बीमारी और दिल का दौरा पड़ना था। उनके जाने से भारतीय रंगमंच का एक बेहद प्रखर, निडर और स्वर्णिम युग हमेशा के लिए समाप्त हो गया, लेकिन अपनी कला और विचारों के रूप में वे आज भी हर रंग कर्मी की चेतना में जीवित हैं। अभिनेता अनुपम खेर ने कहा, हिंदी रंगमंच के दिग्गज सत्यदेव दुबे अब हमारे बीच नहीं रहे। रंगमंच के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता अद्भुत थी। यह एक बड़ी क्षति है, उनकी आत्मा को शांति मिले। फिल्म निर्माता महेश भट्ट ने कहा, थिएटर जगत के दिग्गज सत्यदेव दुबे का देहांत हो गया। साथ साथ घूमने फिरने के दिनों की प्यारी यादें मुझे घेर लेती हैं। अलविदा दुबे जी, ढेर सारा प्यार। निर्देशक केन घोष ने कहा, सत्यदेव दुबे के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। उन्होंने बड़ी विनम्रता से इश्क विश की नई कास्ट के साथ एक एक्टिंग वर्कशॉप आयोजित की थी। शांता गोखले उन्हें याद करते हुए कहती हैं
0: कि सत्यदेव दुबे को बहस छेड़ना बहुत पसंद था और उन्हें सबसे ज्यादा खुशी तब होती थी जब वो युवा रंगमंच कलाकारों को अपने विचारों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करने के बजाय प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित कर पाते थे। आधी सदी से भी अधिक समय में उन्होंने हिंदी, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी में 100 से अधिक नाटकों का निर्देशन किया, युवा नाटककारों की खोज की और उन्हें अपनी रचनाओं को फिर से लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही अभिनेताओं की कई

0: पीढ़ियों को प्रशिक्षित भी किया। आप हमेशा कलाकारों और अभिनेताओं के दिलों में मशाल बनकर जलते रहेंगे। दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने सत्यदेव दुबे को अपना थिएटर गुरु माना है। वो अक्सर याद करते हैं कि कैसे दुबे जी ने उन्हें मंच पर बिना डरे संवाद बोलना और अपनी ऊर्जा को सही जगह इस्तेमाल करना सिखाया। उन्होंने दुबे जी को एक निडर, स्पष्टवादी और रंगमंच के प्रति जुनूनी व्यक्ति बताया।
1: सत्यदेव दुबे अक्सर कहा करते थे कि एक सच्चे अभिनेता का काम केवल संवाद बोलना या चेहरे पर मुखौटा लगाना नहीं है। उनके लिए अभिनय एक आत्मसमर्पण था। वह कहते थे, एक अच्छा अभिनेता वह नहीं है जो मंच पर आकर खुद को दिखाए, बल्कि वह है जो मंच पर आकर अपने अहंकार को पूरी तरह मिटा दे और उस पात्र को अपने भीतर जीने दे। अभिनेता का शरीर और उसकी आवाज सिर्फ एक माध्यम है, असली खेल तो उसकी आत्मा की ईमानदारी का है। सत्यदेव दुबे आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन भारतीय कला जगत उनके जिक्र के बिना हमेशा अधूरा रहेगा। वे एक ऐसे फकीर थे जिन्होंने कभी महलों की चाह नहीं की, क्योंकि उनके हिस्से में मंच की वो जादुई रोशनी थी जो इतिहास बदल देती है। उन्होंने सिनेमा को दिग्गज अभिनेता और कालजयी शब्द दिए और हमें सिखाया कि कला कभी मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि समाज को झकझोरने के लिए होती है। तो श्रोताओं, कला कल्लोलिनी में आज इतना ही। अगले भाग में हम आपको फिर ऐसे ही महान शख्सियत से रूबरू कराएंगे। रंगमंच के कबीर फिल्मकार और नाटककार सत्यदेव दुबे जी पर चर्चा आपको पसंद आई होगी। अब समय है आपसे विदा लेने का। जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया था संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी और मैं था दानिश, और लेखन दीपक नेमा।
0: आपके लिए इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया मैंने यानी मनीषा,
1: और मैं दानिश। नमस्कार।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त है विशेष कार्यक्रम का। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं भक्ति पदों का गायन। कलाकार हैं कलापिनी कोमकली।

0: ये प्रस्तुति हुई भारत भवन में आयोजित संतवाणी समारोह में। ये इस कार्यक्रम का पहला भाग है।
1: संगीत को पूरी निष्ठा और निरंतर साधना से उत्कर्ष की नई दिशाएं देने वाली सुश्री कलाकृति हमारे संगीत समय की यशस्वी गान प्रतिभा है। मूर्धन्य गायक पंडित कुमार गंधर्व और संगीत विदुषी श्रीमती वसुंधरा कोमली की बेटी और उनकी इस शिष्या ने कठिन उत्तराधिकार को पारंपरिक गरिमा और मौलिक संज्ञान से अपने कला व्यक्तित्व में अंगीकार किया है। आध्यात्मिक आनंद, रंजनकारी तत्वों का समावेश और राग रस का भावात्मक विस्तार उनके गायन की वे खूबियां हैं जो श्रोताओं से एक सहज आत्मीयता का सेतु तैयार करती हैं। उनके अनेक रिकॉर्ड जारी हो चुके हैं जिनमें उनकी गायकी के बेशुमार पोशीदा पहलुओं को परखा जा सकता है। पहली और देवी अहिल्या उन फिल्मों के नाम हैं जिनमें कलापिनी जी ने पार्श्व गायन भी किया है। इन दिनों देवास में स्थापित पंडित कुमार गंधर्व संगीत अकादमी रियाज के अनेक रचनात्मक प्रकल्पों में अपना सक्रिय योगदान दे रही है। सुश्री कलापिनी को अनेक सम्मानों से विभूषित किया जा चुका है जिसमें संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली का पुरस्कार विशेष उल्लेखनीय है।
2: सबको नमस्कार। आज की संतवाणी के इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं एक चंद्र सखी के पद से करने जा रही हूँ। एक तरह का मंगलाचरण है ये और कुछ अप्राप्य चंद्र सखी के पदों में से एक है। कल्याण में निबद्ध ये रचना।

अब मैं आपके सम्मुख एक अभंग प्रस्तुत करने जा रही हूं। तुकाराम का पद है। मेरे पूज्य पिता और गुरु पंडित कुमार गंधर्व ने इसे स्वरबद्ध किया है।

आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे भक्ति पदों का गायन। कलाकार थीं कलापिनी कोमकली। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आपने सुना हमारा विशेष कार्यक्रम काला पानी कोमकली। अब वक्त है कार्यक्रम परिक्रमा का, आइए सुनते हैं परिक्रमा।

भारत भवन में महिमा श्रृंखला के तहत रविवार को पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह द्वारा परिकल्पित और निर्देशित नृत्य नाट्य कथा सियाराम की प्रस्तुति हुई। इस नाट्य कथा की लगातार दूसरे दिन की प्रस्तुति थी, मगर डॉक्टर सोनल मानसिंह के प्रति लोगों के मन में आदर कहें या सियाराम के प्रति विश्वास, भारत भवन का अंतरंग सभागार हाउसफुल रहा। डॉक्टर सोनल मानसिंह की परिकल्पना और लाइव कथा पाठ के बीच कलाकारों ने सियाराम विवाह का ऐसा भावपूर्ण दृश्य रचा कि पूरा सभागार भक्ति और उल्लास से भर उठा। संगीत, नृत्य और अभिनय के संगम ने दर्शकों को मानो मिथिला के स्वयंवर मंडप तक पहुंचा दिया। वहीं जनजातीय संग्रहालय में नृत्य गायन एवं वादन पर केंद्रित गतिविधि संभावना के तहत रविवार को गोंड राज्य गेड़ी नृत्य की प्रस्तुति दी गई। गेड़ी नृत्य, जिसे मुरिया लोग डिटोंग पटाए पाटाए कहते हैं, लकड़ी की गेड़ी पर किया जाता है। इसमें नृत्य होता है और गीत नहीं गाए जाते। डिटोंग गेड़ी नृत्य घोटुल का प्रमुख नृत्य है। इसमें स्त्रियां हिस्सा नहीं लेती हैं। वहीं कटनी के ज्ञानेश्वरी नायडू और साथियों द्वारा बधाई नृत्य की प्रस्तुति दी गई। बुंदेलखंड अंचल में जन्म, विवाह और तीज त्योहारों पर बधाई नृत्य किया जाता है। मनौती पूरी हो जाने पर देवी देवताओं के द्वार पर बधाई नृत्य होता है। इस नृत्य में स्त्रियां और पुरुष दोनों ही उमंग से भरकर नृत्य करते हैं। बात भारत स्टोरी टेलर की। भारत स्टोरी टेलर की ओर से रविवार को खास मानसून बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा में उल्लेखित किरदार मलिका दिल फरेब को आधार बनाकर स्टोरी टेलर विनीत डोंडियाल ने मुंशी प्रेमचंद की उर्दू कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न का पाठ किया। कहानी में दिल फिगार और मलिका दिल फरेब के माध्यम से प्रेम, सौंदर्य और त्याग का अनूठा प्रतीक रचा गया है।

सावन के आगमन के साथ ही प्रकृति ने हरी चुनरी ओढ़ ली है और इसी उल्लास को मनाने के लिए शहर की महिलाओं ने मिलकर एक बेहद खूबसूरत बरखा महोत्सव का आयोजन किया। इस उत्सव में सावन की मस्ती और सखियों ने मिलकर धमाल किया। शुरुआत वर्षा ऋतु आई रे, धरती को सजाने सवारने हरी चुनरी लाई रे की मधुर धुनों के साथ हुई। ट्रेडिशनल ड्रेस में महिलाएं सज धज कर पहुंची, उत्सव रंगों में डूब गया। ग्रुप डांस और सोलो डांस में महिलाओं ने अपनी प्रस्तुतियों से मंच पर धूम मचा दी। कैटवॉक बेस्ट गेटअप और सास बहु प्रतियोगिता हुई, कलश सजाए गए थे। आयोजक ने बताया कि व्यस्तता से दूर कुछ समय निकालना इसका उद्देश्य है। पश्चिम मध्य रेल के भोपाल मंडल में राजभाषा हिंदी का अलग उत्साह दिखा। एक प्रतियोगिता हुई जिसमें 50 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इसमें राजभाषा से जुड़े सवाल रखे गए तो वहीं व्याकरण और इससे जुड़े नियमों को साझा किया गया। मौका अखिल रेल हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का था। 50 कर्मचारियों ने इसमें हिस्सा लिया, टॉप 3 को अवार्ड दिए हैं। राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए आयोजन किया गया था। लगी आज सावन की बादल यूं गरजता है, जैसे सदाबहार गीतों से नवोदित कलाकारों ने समा बांध दिया। मौका एक शाम सुर संगीत के नाम का था। बताया गया कि शौकिया सिंगर्स को प्रतिभा दिखाने का मौका देकर वहां सम्मानित भी किया गया। भारत भवन के रूपाभ प्रभाग द्वारा समकालीन कलाकारों की कृतियों की प्रदर्शनी श्रृंखला के तहत एक समूह प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। रूपंकार भारत भवन के इस आयोजन में भोपाल के 8 कलाकारों ने जल रंग चित्रों को प्रदर्शित किया जाएगा। इन सभी कलाकारों ने अपने अपने चित्रों में जल रंगों के माध्यम से विभिन्न विषयों को घेरा है। ये समूह प्रदर्शनी 21 जुलाई से शुरू होकर 26 जुलाई तक चलेगी। दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक भारत भवन की रंग प्रदर्शनी दीर्घा चित्रों को देखा जा सकेगा। तो ये थी आज की परिक्रमा। सुनते रहिए FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नजर जब एक उपहार राजनीतिक आत्मसमर्पण का हथियार बन गया। क्या आप जानते हैं कि 18वीं सदी के भारतीय कूटनीति की दुनिया में एक साधारण सा उपहार राजनीतिक आत्मसमर्पण का हथियार हो सकता था? ये कहानी है नजर की, यानी वो औपचारिक उपहार जो अधीनता का प्रतीक था और इस बात की कि भारत के दूसरे गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस इसे प्रतिबंधित करने के लिए इतने जुनूनी क्यों हो गए थे। नजर के डर को समझने के लिए हमें पहले कॉर्नवालिस के पूर्ववर्ती वॉरेन हेस्टिंग्स को देखना होगा। हेस्टिंग्स का मानना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जीवित रहने के लिए मुगल मुखौटा पहनना होगा। वे मुगल राजकुमारों के साथ भव्य जुलूसों में निकलते थे और इस राजनीतिक कल्पना को स्वीकार करते थे कि कंपनी सम्राट की सेवक है। इस दुनिया में नजर का आदान प्रदान शासक और शासित के बीच परिचित संबंधों का मॉडल था। इन उपहारों को भेंट करके ब्रिटिश अधिकारी स्वदेशी वैधता के सदियों पुराने नाटकीय प्रदर्शन में अपनी भूमिका निभा रहे थे। लेकिन जब 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस आए तो उन्होंने चीजों को बहुत अलग नजरिए से देखा। कॉर्नवालिस एक ब्रिटिश कुलीन और पेशेवर सैनिक थे जिनके पास उन चीजों के लिए धैर्य नहीं था जिन्हें वे अपमानजनक समारोह कहते थे। उनके लिए किसी भारतीय शासक को नजर भेंट करना कोई शिष्टाचार नहीं था, बल्कि ये एक अपमानजनक स्थिति थी जिसने ब्रिटिश श्रेष्ठता के भ्रम को चकनाचूर कर दिया था। ये तनाव 1789 में चार्ल्स मैलेट नामक एक राजनयिक के साथ चरम पर पहुंच गया। मैलेट मराठा संघ के नेता पेशवा के दरबार में कंपनी के रेजिडेंट थे। एक औपचारिक बैठक के दौरान उम्मीद की गई कि मैलेट अपने हाथों से नजर पेश करेंगे। क्या आप जानते हैं कि कॉर्नवालिस ने उनसे क्या कहा? उन्होंने मैलेट को इनकार करने का आदेश दिया और जोर देकर कहा कि उन्हें कभी भी, यहाँ तक कि किसी नौकर के माध्यम से भी, खुद को ऐसी स्थिति में नहीं रखना चाहिए। कॉर्नवालिस का मानना था कि ब्रिटिश सरकार की गरिमा ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसने साम्राज्य को थाम रखा है। उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय समाज अत्यंत सतर्क है और किसी स्थानीय राजकुमार के प्रति व्यक्तिगत सम्मान के किसी भी संकेत को व्यक्तिगत अक्षमता या कमजोरी के रूप में देखा जाएगा। उन्हें डर था कि यदि अंग्रेज अधीनस्थ दिखाई दिए तो उन्हें हीन वर्ग के लोगों के रूप में देखा जाएगा और कंपनी का विचारों का साम्राज्य गायब हो जाएगा। नजर पर प्रतिबंध लगाकर कॉर्नवालिस मुगल मुखौटे को उतार फेंकने और उसकी जगह अंग्रेजों के अडिग चरित्र को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। वे कंपनी को शौकिया और विश्वसनीय व्यापारियों के समूह से एक

वह साधारण पत्ती जिसने दुनिया जीत ली। 18वीं शताब्दी के लंदन के चहल पहल भरे चायघरों में चीनी मिट्टी की एक साधारण कप में क्रांति जन्म ले रही थी, जहां कुलीन वर्ग पैको वसंत की पहली सफेद कोमल कलियों की तलाश में रहता था, वहीं आम जनता बुहिया नामक एक रहस्य की दीवानी हो रही थी। हालांकि यह किस्म राजाओं की पसंद से कोसों दूर थी। वास्तव में ये सीजन की सबसे आखिरी और सबसे देर से की जाने वाली तुड़ाई थी, जिसे चाय के पौधे की बड़ी और खुरदुरी पत्तियों से तैयार किया जाता था। बुहिया का रहस्य परिष्कृत स्वाद का विषय नहीं था, बल्कि यह अर्थशास्त्र और सामाजिक आदतों का एक शानदार तालमेल था। जैसे जैसे वेस्टइंडीज के बागानों से आने वाली चीनी की कीमतें गिरी, चाय कामकाजी वर्ग के लिए मिठास के उपभोग का सबसे बड़ा माध्यम बन गई। चूंकि बुहिया उपलब्ध किस्मों में सबसे सस्ती थी, इसलिए यह वे एकमात्र पत्ती थी जिसे आम जनता वहन कर सकती थी। 1700 के दशक के मध्य तक इस साधारण चाय ने बाजार पर कब्जा कर लिया था और कुल काली चाय के आयात में इसकी हिस्सेदारी 37.8% से उछलकर आश्चर्यजनक रूप से 63.3% हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ आ गया था कि बुहिया की भारी मात्रा में बिक्री ने उनके वैश्विक संचालन की विशाल लागत को वहन करने के लिए आवश्यक राजस्व प्रदान किया। भले ही सरकारी कर अंततः 100% से अधिक हो गए हों, लेकिन इस किफायती पेय के प्रति जनता के जुनून ने फसल के बचे कुचे हिस्से को पश्चिमी दुनिया का सबसे लोकप्रिय पेय बना दिया। बुहिया ने यह साबित कर दिया कि बढ़ते हुए साम्राज्य में विपत्ति सबसे शक्तिशाली थी, जिसने हर किसी को चाय के कप तक आने का निमंत्रण दिया।

0: ज्यादा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महाकाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: मीराबेन का असली नाम मेडलिन स्लेट था। उनका जन्म 22 नवंबर 1892 को एक अंग्रेज परिवार में हुआ था। महात्मा गांधी पर लिखी एक पुस्तक पढ़ने के बाद वे उससे इतना प्रभावित हुईं कि उन्होंने बापू की विचारधारा को न सिर्फ आत्मसात किया बल्कि उनके साथ रहने हिंदुस्तान चली आईं। गांधी जी ने उन्हें अपनी पुत्री माना और नाम दिया मीराबेन। बापू के सानिध्य में उन्होंने धुनना और बुनना सीखा। खादी के उत्थान के लिए उन्होंने कई प्रांतों का दौरा किया। 1932 में गांधी जी के जेल प्रवास और कांग्रेस कार्यकारिणी पर प्रतिबंध के दौरान उन्होंने सराहनीय भूमिका निभाई थी। अंग्रेज सरकार की क्रूरता की सूचनाएं एकत्रित करके वे दुनिया के कोने कोने में भेजने लगीं। उन्होंने विश्व के तमाम नेताओं से मिलकर गांधी जी के दृष्टिकोण को स्पष्ट करने का प्रयास किया। आजादी के पहले और आजादी के बाद उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा था। 20 जुलाई 1982 को उनका देहांत हो गया। भारतवासी उन्हें हमेशा याद रखेंगे।
3: मैडलिन स्लेट एक ब्रिटिश एडमिरल की वो बेटी जिनकी आत्मा भारत में बसती थी। 7 समंदर पार रहते हुए भी मैडलिन का गांधी जी से जुड़ाव आध्यात्मिक था और उनके इस अभूतपूर्व आध्यात्मिक आत्मिक सफर की शुरुआत हुई स्विट्जरलैंड से, जहां वो महान लेखक रोमा रोला से जीवन के उद्देश्य को जानने के लिए मिली और उसके बाद मैडलिन स्लेड बन गई मीराबेन।
4: आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू, वेयर टू गो। आई एम वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन बीथोवन, बट ही इज नो मोर टू गाइड मी।
3: महान संगीतकार बीथोवन के जीवन दर्शन से प्रभावित मैडलिन ने जब रोमा रोला से अपने जीवन के उद्देश्यों के बारे में जानना चाहा, तो उन्होंने जवाब में गांधी जी की जीवनी पढ़ने को देते हुए कहा,
5: He is second Jesus Christ।
3: इस किताब को पढ़ने से पहले मैडलिन गांधी जी के बारे में कुछ नहीं जानती थी और इसके बाद तो जैसे सब कुछ उन्हें ही मानती थी। मैडलिन को लगा कि गांधी जी के विचारों का अनुसरण ही उनका जीवन उद्देश्य है और इसी के लिए वो छटपटा रही थी। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने गांधी जी को पत्र लिखकर आश्रम आने की अनुमति मांगी।
6: बापू, इंग्लैंड से पत्र आया है।
7: किसका है?
6: मिस मैडलिन स्लेट का।
7: दिखाओ मुझे।
6: क्या हुआ बापू?
7: ये लड़की एक ब्रिटिश एडमिरल की बेटी है। कहती है कि मेरे विचारों को अपने जीवन में उतारना चाहती है। लिखती है, मेरे विचार उसे जीवन का उद्देश्य जान पड़ते हैं और इसलिए वो यहाँ आकर अपना जीवन आश्रम को समर्पित करना चाहती है।
6: लेकिन एक अंग्रेज लड़की अपने ही देश वालों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में हमारा साथ कैसे दे सकेगी?
7: उससे भी ज्यादा मुश्किल उसके लिए आश्रम की परिस्थितियों से तालमेल बिठाना होगा।
6: तो इसका मतलब यही ना बापू कि हम उन्हें यहाँ आने की अनुमति नहीं दे सकते?
7: अरे नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है। लाओ वो पोस्ट कार्ड मुझे दो।
6: लीजिए।
7: प्रिय मित्र, याद रखना, यहाँ का जीवन सुखमय नहीं है, ये बहुत कठिन है। यहाँ हर एक को शारीरिक श्रम करना पड़ता है। इस देश की जलवायु भी ऐसी नहीं जिसके बारे में न सोचो। मैंने ये बातें तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि चेतावनी के लिए लिखी है।
3: गांधी जी के जवाब के बाद तो जैसे मेडलिन की इच्छा दृढ़ निश्चय में बदल गई। उन्होंने विदेश में रहकर ही एक साल तक खुद को भारत और आश्रम के माहौल में ढालने की कोशिशें शुरू कर दी। वो उर्दू और हिंदी सीखने लगी, महान ग्रंथों के अनुवादित संस्करण भी पढ़े। एक ब्रिटिश एडमिरल की बेटी भारतीयता के रंग में रंगने लगी। उन्होंने महल में रहकर भी जमीन पर सोने का अभ्यास किया, चरखा चलाने लगी और शराब और मांस का भी त्याग कर दिया। घर वालों को अपने फैसले से अवगत कराने के बाद मेडलिन ने फिर एक बार गांधी जी को पत्र लिखा।
6: बापू, ये पत्र कई दिन पहले आया था।
7: लाओ।
6: उन्हीं मिस मेडलिन का है। इस बार 20 पाउंड भी भेजे हैं।
7: जिसका निश्चय इतना दृढ़ हो उसे कोई नहीं रोक सकता। इन्हें तो जवाब लिखना ही होगा। प्रिय मित्र, सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि पत्र का जवाब जल्दी ना दे पाया। मैं निरंतर यात्रा पर था

0: उम्मीद करती हूँ। कुछ महीने पहले मुझे एक अनुभव हुआ जिसके बारे में मैं आपसे मिलकर ही बताना चाहूँगी। इसने मुझे स्पष्ट कर दिया कि मेरा जीवन आपके जीवन से जुड़ने ही वाला है। मैं भारत आना चाहती हूँ ताकि आपके साथ रहकर आपके काम में अपनी ओर से यथासंभव सहायता करूँ। आप बताएं मैं कब आ सकती हूँ? इस पत्र के साथ उस ऊन का नमूना भेज रही हूँ जो मैंने चरखे पर खाता है।
1: आपका पत्र पढ़कर बहुत अच्छा लगा। आपने ऊन का जो नमूना भेजा है वो शानदार है। आप जब आना चाहें आपका स्वागत है। अगर मुझे पता चले कि आप किस जहाज से आ रही हैं तो आपकी अगवानी के लिए और साबरमती के लिए रेलगाड़ी के बारे में जानकारी देने के लिए कोई ना कोई जरूर पहुंच जाएगा।
2: 6 नवंबर 1925 को मेडलिन स्लेट का जहाज बॉम्बे के प्रिंसेस बंदरगाह में आ गया। उनके लिए सब कुछ अलग और अजब ही था। यहां
3: वेलकम टू इंडिया मेडलिन।
0: धन्यवाद।
3: अरे वाह, मुझे बापू ने आपकी सेवा में भेजा है। मेरा ख्याल है आप कुछ दिन मुंबई में रुककर आराम करें, थोड़ा शहर घूमकर देखें।
0: नहीं नहीं, मैं आज शाम की ट्रेन से ही अहमदाबाद जाना चाहती हूँ।
3: जी, जैसा तुमको ठीक लगता है। बग्गी इधर इधर।
1: आप सबको

0: रोमा रोहला का पत्र प्राप्त हुआ है। वो लिखते हैं कि जल्द ही साबरमती में आप मेडलिन स्लेट का स्वागत करेंगे, जिन्हें आपने अपने आश्रम में दाखिला देने की कृपा की है, वो मेरी बहन और मेरी प्यारी मित्र हैं, और मैं उन्हें अपनी मानस पुत्री भी मानता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप उन्हें अपने सबसे विश्वसनीय शिष्यों में पाएंगे। उनकी आत्मा प्रशंसनीय ऊर्जा एवं समर्पण से भरी है। वे एकदम सीधी सादी और ईमानदार हैं। आप जिस लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं, उसके लिए यूरोप उनसे ज्यादा विनम्र या निष्काय व्यक्ति प्रस्तुत नहीं कर सकता।
1: आश्रम में एक ओर मेडलिन के आने की उत्सुकता थी तो दूसरी ओर कुछ सुगबुगाहट थी।
2: मिस मेडलिन आ भी गया, चलो भाई चलो।
3: वेलकम मिस मेडलिन।
4: धन्यवाद भाई।
3: आप बापू से मिलने के पहले मुंह हाथ धो ले।
4: नहीं, मैं अभी बापू से मिलना चाहती हूँ।
3: जी जी ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। बापू, मिस मेडलिन।
0: संभल कर, तुम मेरी बेटी बन कर रहोगी।
1: एक दूसरे ब्यौरे के मुताबिक मेडलिन गांधी जी को देखते ही बेहोश हो गई थी, जिसका राज उन्होंने बाद में खोला। उन्होंने बताया कि बापू को देखते ही उन्हें उनकी तरफ से आते जबरदस्त प्रकाश की अनुभूति हुई। उस दिन के बाद मेडलिन जल्दी ही आश्रम के कार्यकलापों में हिस्सा लेने लगी।

0: मेडलिन, अब तुम हम सबको एक ईसाई भजन सुनो।
1: इंग्लिश प्रेयर?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं। प्रार्थना की कोई भाषा नहीं होती, यहाँ हर भाषा की प्रार्थना होती है। गाओ गाओ बेटी।

0: आइए मिस मेडलिन, मैं आपको पूरा आश्रम दिखा दूं।
1: अभी मैं एक पत्र लिख रही हूँ।
0: अच्छा अच्छा, अपने घर वालों की कुशलता की जानकारी ले रही हैं आप?
1: नहीं नहीं, उन्हें जिन्होंने मुझे यहाँ आने का रास्ता दिखाया।
0: ओह, वो प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक?
1: यस
0: जी। ठीक है, आप लिखिए, मैं चलती हूँ।
1: ओ मेरे प्यारे पिता, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि वे कितने दिव्य हैं। मैंने एक पैगंबर से मिलने की तैयारी की थी, मुझे एक देवदूत मिले। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओ मेरा जीवन सफल हो जाएगा।
2: मेडलिन के आश्रम आगमन के पहले की सुबुगाहटें अब असंतोष में बदलने लगी। कई आश्रमवासियों को ऐसा लगा कि बापू मेडलिन को खास तवज्जो दे रहे हैं।
3: कभी ऐसा हुआ है भला कि आश्रम के किसी नए सदस्य की अगवानी के लिए बापू ने महादेव देसाई, सरदार पटेल और स्वामी पटेल जैसे लोगों को भेजा हो?
4: हाँ, और आश्रम में सबसे अच्छे सूत काटने वाले सुरेंद्र भाई उसे सूत काटना सिखा रहे हैं।
3: और अब तो बापू चाहते हैं कि वो अंग्रेज पहले जल्द से जल्दी अच्छी हिंदी सीखकर उनके कार्यों में मदद करें।
4: पता नहीं बापू ऐसा क्यों कर रहे हैं।
5: बापू वो आश्रम के लोग।
4: जानता, मैं आज ही सबका भ्रम दूर किए देता हूँ। जाकर मेडलिन को यहाँ आने का संदेशा दो।
5: जी
6: जी बापू।
4: हाँ बेटी, आज मैं तुम्हें शौचालय साफ करने का तरीका सिखाता हूँ।
5: लेकिन बापू आप क्यों?
4: लाओ, मुझे ही जाना होगा। झाड़ू मुझे दो। आओ मेडलिन, हमें सारे शौचालयों की सफाई करनी है।
6: जी बापू।
4: ये देखो, इस झाड़ू से इस तरह सफाई की जाती है।
6: लाइए, मुझे दीजिए, मैं कोशिश करती हूँ। बापू, मुझे अपने कमरे में मेज, कुर्सी, पलंग और मच्छरदानी की कोई जरूरत नहीं। मैं फर्श पर चटाई पर सोने का अभ्यास कर चुकी हूँ, मुझे इसमें कोई मुश्किल नहीं।
4: ठीक है बेटी, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी।
2: मेडलिन के जिम्मेदारी भरे बर्ताव के चलते आश्रमवासी जल्दी ही समझ गए कि वो कोई साधारण अंग्रेज महिला नहीं। इसी बीच मेडलिन ने गांधी जी के समक्ष एक अप्रत्याशित अनुरोध कर सबको चकित कर दिया।
6: बापू, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ।
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
6: मैं ब्रह्मचर्य का व्रत लेना चाहती हूँ, साथ ही अपने बाल भी मुंडवाना चाहती हूँ।
4: अरे भाई, मैं कोई बुद्ध नहीं और तुम भी बौद्ध भिक्षुणी नहीं हो। ये व्रत गंभीर होते हैं, इन्हें हल्के में या हड़बड़ी में नहीं लेना चाहिए।
6: आप जानते हैं कि मैं आपसे जुड़ी किसी भी चीज को कभी हल्के में नहीं लेती। मैंने अच्छी तरह समझ लिया है कि ब्रह्मचर्य की आपकी अवधारणा का मतलब केवल यौन से नहीं बल्कि आत्मानुशासन और आत्मसंयम है। आश्रम का तपोवन वाला वातावरण मुझे आकर्षित करता है और मैं इसे मजबूत करना चाहती हूँ।
4: देखो, अगर तुम केश मुंडवाओगी तो दूसरी औरतों से अलग हो जाओगी और इससे तुम और अलग थलग पड़ जाओगी। तुम इस पर आज रात और विचार कर लो, हम कल इस पर बात करेंगे। ठीक है
6: जी बापू।
7: चलो चलो, शाम की प्रार्थना सभा शुरू हो चुकी है।

0: आओ बैठो, मुझे तुम्हारे लिए और अपने लिए खुशी होती है। कस्तूरबा, मुझे कैंची लाकर दो, मैं अच्छे खासे बाल काट लेता हूँ।
1: मुझे आशीर्वाद दीजिए बापू।
0: मुझे मालूम है कि ये आश्रम जिन आदर्शों को साकार करने के लिए स्थापित किया गया है, उन्हें पूरा करने के लिए तुम जितना प्रयास करोगी उतना कोई और नहीं करेगा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है, एक नया नाम, मीरा। मीरा भक्ति और धैर्य से भरपूर एक राजकुमारी थी। मीरा के भजन आज भी पूरे देश में गाए जाते हैं। अपने हिंदी शिक्षक नवीन से उनके बारे में पूछना।
2: मेडलिन अब आश्रम में मीराबेन के नाम से पुकारी जाने लगी। सफेद खादी की साड़ी में वो कभी रसोई में सब्जियां काटे जाने का निरीक्षण करती तो कभी प्रार्थना सभा के पहले की तैयारियों का, और जिस समय आश्रम का कोई कामकाज न होता तो सूत काटती या कुछ पढ़ती। 1925 से 1932 के बीच उन्होंने भारत की आजादी के लिए बहुत कुछ किया। 1932 के असहयोग आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई।
3: सर, आपका कई बार वार्निंग देनी पर भी मेडलिन नहीं माना। वो हर हाल में इंडियंस को सपोर्ट देना चाहती है।
4: लगता है वो ऐसे नहीं मानेगा। अरेस्ट हर।
2: अंग्रेजों के प्रयासों से उलट इन सजाओं ने जैसे मीराबेन के दृढ़ निश्चय को बढ़ाया हो। जेल से छूटने के बाद वो फिर अपने कामों में लग गई। उन्होंने गांव गांव जाकर बापू के आदर्शों का प्रचार प्रसार किया और समाज सेवा के नए आयाम स्थापित किए।
0: मीरा, वैसे तो तुम भारत में रहकर भी भारत की आजादी के लिए बहुत कुछ कर रही हो, लेकिन तुम्हें फिर लंदन जाना होगा।
1: लंदन?
0: हाँ मीरा, ताकि हम अपने आदर्शों की व्याख्या वहां के लोगों को समझाकर भी कर सके।
1: जी, जैसा आप ठीक समझें बापू।
2: लंदन में रहकर मीराबेन ने खुद एक अंग्रेज होते हुए भी अंग्रेजों के सामने भारत का दर्द रखा। वे कर्मचारियों अधिकारियों से मिली, अखबारों व पत्रिकाओं में लेख लिखे ताकि जल्द से जल्द भारत की आजादी का रास्ता खोल सके।
3: मेडलिन, व्हाई डोंट यू लीव इंडिया? दिस इज योर कंट्री, व्हाई यू आर फाइटिंग अगेंस्ट योर ओन कंट्री?
1: फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट मेडलिन, आई एम मीरा, एंड आई एम नॉट फाइटिंग अगेंस्ट एनी कंट्री। दिस इज ऑल अबाउट ट्रूथ एंड फॉल्स। Anyway, I have to go.
0: रघुपति राधव राजा राम। तो तुम्हारी वार्ताएं कितनी सफल रही मीरा?
1: पापू, मुझे लगता है कि वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों के विचारों को सुनते हैं और उनके विचारों की स्वतंत्रता से सहमत भी होते हैं। मैं होलीफैक्स, होर, स्मट और चर्चिल से मिली और उन्हें आपके सिद्धांतों के बारे में बताया। हमें कोशिश करते रहना चाहिए, वो जल्द ही भारत छोड़ देंगे।
0: लेकिन भारत में अभी जो स्थिति है वो सचमुच बहुत गंभीर है। लोग हिंसा पर उतर आए हैं और ऐसे तो
1: आप चिंता न करें बापू, सब ठीक हो जाएगा। मेरे लिए क्या आदेश है बापू?
0: मेरे विचार से हमें अलग अलग स्थानों पर जाना होगा, वहाँ के लोगों को अपने विचारों से अवगत कराकर सही रास्ते पर लाना होगा। तुम एक काम करो, अब तुम वर्धा चली जाओ।
1: जी, जैसी आपकी इच्छा।
2: ये वक्त 1942 का था। देश की आजादी चाहने वाले सभी लोग भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे। अंग्रेजों ने सबकी गिरफ्तारी का फरमान जारी कर दिया और इसी धरपकड़ में मीराबेन फिर जेल पहुंच गई। कुछ 2 साल जेल में बिताने के बाद उनकी रिहाई हुई।
5: अब आप कहाँ जाएंगी मीराबेन?
1: मैं हरिद्वार के पास एक किसान आश्रम का संचालन करूंगी। मुझे जेल में भी पत्र द्वारा बापू के दिशा निर्देश प्राप्त होते रहते थे।
5: मीराबेन, काफी दिनों से बापू का कोई पत्र नहीं आया।
1: हाँ, मैं जानती हूँ उन्हें। वे निश्चित ही देश में व्याप्त घृणा व हिंसा से खिन्न होंगे और इसलिए उनमें शायद कुछ समय के लिए विरक्ति का भाव आ गया है।
6: मीराबेन, मीराबेन, बुरी खबर है।
1: क्या हुआ?
6: जी जी, खबर मिली है कि बापू नहीं रहे।
1: नहीं रहे? मतलब?
6: हाँ, किसी ने उनकी हत्या कर दी।
1: हे राम, मेरे लिए अब तक केवल 2 सत्य थे, भगवान और बापू। आज वे दोनों मिलकर एक हो गए।
2: बरसों तक मीराबेन अपना काम करती रही, जनता की सेवा में निरंतर जुटी रही। लेकिन देश की आजादी के बाद जब उन्हें बापू के सपने बिखरते हुए दिखे तो वे चुपचाप भारत छोड़कर चली गईं। बरसों तक उनका कुछ पता न चला। 1979 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया। तब वो वियना के पास एक गांव में सादा जीवन जी रही थी। 1982 में वो अमरता को प्राप्त हो गई।
7: निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय,
8: मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें। ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
2: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस, वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
1: दो हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रजा मुराद और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
4: श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। और श्रोताओं, कार्यक्रम है शब्दों के शिल्पकार, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक महान कवि गोपाल दास नीरज जी के बारे में।
0: उनमें हिंदी का अश्वघोष बनने की क्षमता है। भदंत आनंद कौत्स्यायन के ये शब्द उस समर्थ कवि के लिए हैं जो अपनी बदनामी का उद्घोष भी बड़ी शान से करते हैं। कहिए, कुछ अंदाजा लगा आपको? भाई गेस कीजिए, कौन है जो कहते हैं इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, लगेंगी आपको सदियां हमें भुलाने में।
4: हाँ श्रोताओं, अपने अलग अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले कवि व गीतकार गोपाल दास नीरज हैं वे, जिन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने पहले कवि प्रदीप सम्मान से नवाजा है। वे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें शिक्षा व साहित्य के लिए भारत सरकार ने 2-2 बार सम्मानित किया है।

0: गया, फिर एक सिनेमा घर की दुकान पर नौकरी करने लगे। लंबी बेकारी के बाद दिल्ली जाकर के सप्लाई विभाग में टाइपिस्ट की नौकरी करने लगे। पगार थी 67 रुपए महीना। सोचिए जरा श्रोताओं, इसमें भी 35-40 रुपए वे घर भेज दिया करते थे, बाकी में मुश्किल से गुजारा कर पाते थे।
1: जी हाँ, पैसे बचाने के लिए दोपहर के समय बाजार की पूड़ी इसलिए खाते थे कि वो देर से हजम होती है और भूख जल्दी नहीं लगती। इसका दुष्परिणाम उन्हें आज तक भोगना पड़ रहा है। सन 1944 से ही वे कोलाइटिस और लीवर की बीमारी का शिकार हैं। उन्हीं दिनों से लगातार 9 माह तक बुखार आने पर भी इलाज के लिए दफ्तर से छुट्टी न ले सके। पैसे का अभाव अलग था, इसलिए ढंग से इलाज भी नहीं हो सका।
0: खैर श्रोताओं, दिल्ली प्रवास में ही उन्हें युग प्रवर्तक कवि निराला और प्रख्यात समीक्षक शांति प्रिय द्विवेदी का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। ये लोग 1945 में शाहदरा में उनके निवास पर ठहरे हुए थे।
1: दिल्ली में कुछ दिनों तक नीरज सॉन्ग पब्लिसिटी ऑफिस में साहित्य सहायक भी रहे, लेकिन वे सरकार के प्रचार के बजाय राष्ट्रीयता का प्रचार करने लगे। परिणाम ये हुआ कि ये नौकरी भी उन्हें छोड़नी पड़ी। ये सन 1946 की बात है। इसके बाद वे कानपुर आ गए और कुछ दिनों तक यहाँ के डीएवी कॉलेज में क्लर्की करते रहे। उन्हीं दिनों उनका विवाह हो गया। विवाह के बाद डीएवी कॉलेज की नौकरी छोड़कर वे बालकट ब्रदर्स नाम की एक विदेशी प्राइवेट कंपनी में स्टेनोटाइपिस्ट लग गए। ये नौकरी उन्होंने अपेक्षाकृत कुछ लंबे समय तक की, लगभग 5 सालों तक।
0: और शतन नौकरी करते हुए ही वे प्राइवेट परीक्षा देकर के 1949 में उन्होंने इंटरमीडिएट किया और उसके बाद बालकट ब्रदर्स के अतिरिक्त वे अन्य स्थानीय फर्म्स में नौकरी करते हुए 1951 में उन्होंने बीए पास कर लिया और कुछ दिनों तक कानपुर में ही जिला सूचना अधिकारी भी रहे। लेकिन पढ़ाई में बाधा आने से साल भर बाद ही यह नौकरी उन्हें छोड़नी पड़ी और उसके बाद 1953 में हिंदी साहित्य में एमए प्रथम श्रेणी में पास किया उन्होंने।
1: एमए करने के बाद नीरज 2 सालों तक बेरोजगार रहे, लेकिन ये बेरोजगारी परोक्ष रूप से उनके लिए वरदान साबित हुई, क्योंकि इस बीच उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और कवि सम्मेलनों के माध्यम से खूब वाहवाही लूटी। उनका गला अच्छा था, सो गीत श्रोताओं के दिल तक पहुंच जाते थे। लेकिन इस भागम भाग का एक नुकसान भी हुआ। पेट की बीमारी तो पहले से ही थी, अनवरत भ्रमण से उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से चौपट हो गया।
0: और श्रोताओं, इसके बाद 1955 में नीरज को मेरठ कॉलेज में हिंदी के लेक्चरर की नौकरी मिल गई, लेकिन यहाँ भी वे ज्यादा टिक ना सके। कारण यह है कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उन पर क्लास न लेने के आरोप लगाए गए और इसे शुद्ध होकर के उन्होंने नौकरी छोड़ दी। हालांकि बाद में ये आरोप भी असत्य प्रमाणित हुए।
1: इस नौकरी को छोड़ने के बाद वे अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर के रूप में लग गए। अलीगढ़ में ही मैरिस रोड पर वे

0: उनका एक गीत लिखने का निमंत्रण मिला और पहली फिल्म में उनके लिखे गीत कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे और दूसरा गीत देखती ही रहो दर्पण न तुम प्यार का यूं मुहूर्त निकल जाएगा बेहद लोकप्रिय हुआ श्रोताओं। और इसका परिणाम यह हुआ कि मुंबई में ही रह करके वे स्थायी रूप से गीत लिखने लगे।
1: फिल्मों में गीत लेखन का ये सिलसिला मेरा नाम जोकर, शर्मिली और प्रेम पुजारी जैसी अनेक चर्चित फिल्मों में कई वर्षों तक जारी रहा। लेकिन आजाद तबीयत के नीरज का मन मुंबई की फिल्मी दुनिया में अधिक नहीं लगा। फिल्म नगरी को अलविदा कहकर वे वापस अलीगढ़ आ गए।
0: श्रोता पंत जी ने लिखा है कि वियोगी होगा पहला कवि। गोपाल दास नीरज के संबंध में भी यह सत्य है। उनका कवि जीवन 1941-1942 से शुरू होता है। कारण था असफल प्रेम। जब वे हाई स्कूल में पढ़ते थे तभी एक लड़की से उनका प्रणय संबंध हो गया था, लेकिन अचानक उससे बिछोह हो गया और इस आघात को वे सह न सके और उनके मुख से ये पंक्तियां हठात ही फूट पड़ी। कितना एकाकी मम जीवन, किसी पेड़ पर यदि कोई पक्षी का जोड़ा बैठा होता तो न उसे भी आंखें भर के मैं इस डर से देख पाता कि कहीं नजर न लग जाए उसको।
1: और इस प्रकार वो प्रणयी युवक गोपाल दास सक्सेना कवि होकर गोपाल दास सक्सेना नीरज हो गया। शुरुआती दौर में हरिवंश राय बच्चन ने नीरज को काफी प्रभावित किया। उन्हें एक बार उनका निशा निमंत्रण पढ़ने को मिल गया। वे बताते हैं कि इस पुस्तक के पहले गीत ने ही उन्हें बहुत प्रभावित किया और उन्हें लिखने की सनक सवार हो गई।
0: हाँ श्रोता, और 1944 में प्रकाशित अपनी पहली काव्य कृति संघर्ष में वे लिखते हैं कि बच्चन जी से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। इसके कई कारण हैं। पहला तो यह कि बच्चन जी की तरह मुझे भी जिंदगी में बहुत लड़ना पड़ा है, अब भी लड़ रहा हूँ और शायद भविष्य में भी लड़ता ही रहूंगा।
1: क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का एक शोक गीत है सरोज स्मृति। ये लंबी कविता उन्होंने अपनी पुत्री सरोज के असामयिक निधन पर लिखी है। इसके अंत में वे लिखते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो आज तक नहीं कही। लगता है नीरज पर भी ये लागू होती है। संघर्ष की भूमिका में प्रख्यात समालोचक गुलाब राय ने लिखा था, नीरज के रुदनमय गानों में निराशा की अंतरधारा स्पष्ट रूप से झलकती है और वो जीवन के कटु अनुभवों से निःसृत होती प्रतीत होती है। जहां अमृत भी विष बन जाए वहां निराशा का होना स्वाभाविक ही है।
0: हाँ श्रोताओं, और नीरज की दूसरी कृति अंतर्ध्वनि 1946 में प्रकाशित हुई। इसमें बच्चन जी के प्रभाव से मुक्त होने का प्रयत्न उन्होंने किया है और विभावरी आते आते उन्होंने अपना स्वतंत्र जीवन दर्शन भी अपना लिया।
1: श्रोताओं, गोपाल दास नीरज आज विश्व विख्यात गीतकार हैं, लेकिन उनके जीवन के कई ऐसे पहलू हैं जिससे कम ही लोग अवगत होंगे, तो क्यों ना इन अनछुए पहलुओं को खुद उनकी जुबान से ही सुना जाए। अपने शुरुआती संघर्ष को याद करते हुए वे कहते हैं,
0: बचपन में पिता की मृत्यु हो गई, तभी से जीवन संघर्ष शुरू हो गया। दूसरे के घर रहने के लिए चला गया, 10 साल वहां रहा, सो अकेलापन रहा और अंतर्मुखी हो गया। जीवन में संघर्ष मैंने खूब किया है। पहले 10 साल तक क्लर्क रहा, 3-4 बार स्टेनोग्राफर रहा, 2 साल डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर रहा, फिर 2 साल बेकार भी रहा। पेट पालने के लिए, अपनी भूख शांत करने के लिए कभी पान बीड़ी भी बेची सड़क पर बैठकर, गंगा जमुना में डूब डूब कर खूब पैसे बटोरे, रिक्शा भी चलाया, क्योंकि मैंने श्रम को कभी भी छोटा नहीं समझा। श्रम का बड़ा मूल्य है। अगर आप पान बीड़ी बेचे तो क्या बुरा करते हैं, अगर आप रिक्शा चलाते हैं पर इसमें बेईमानी नहीं करते। मैंने ट्यूशन भी किया और कोर्ट में बैठ करके टाइपिंग भी की।
1: नीरज को लोकप्रियता का मानो दैवी वरदान मिला था। स्वयं इस बात को स्वीकारते हुए वे कहते हैं,
0: मैंने कवि सम्मेलनों में गाना शुरू किया, लोकप्रिय होने लगा, लोकप्रियता मेरे पीछे पीछे भागती रही, ज्योतिष में भी मेरी रुचि रही। मैंने जब अपनी जन्म कुंडली पढ़ी तो उसमें लिखा था विश्वख्यात ऐरावत पर सवारी करें। मुझे लगा कि जो बच्चा गरीब घर में पैदा हुआ है, खाने तक को नहीं था, वो विश्वख्यात कैसे हो सकता है। लेकिन यह हुआ और मैं अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिसस, लंदन, जहां भी मैं गया मुझे मेरी कविता सुनने वाले मिले और मेरा नाम हिंदुस्तान से बाहर पहुंच गया फिल्मों के द्वारा। मैं मानता हूं किसी भी व्यक्ति या कवि को विदेश तक पहुंचने का श्रेय सिर्फ फिल्मों के पास है। कारवा गुजर गया गीत मैंने एक बार 1954 में लखनऊ रेडियो से पढ़ा। उस समय पूरे देश में हिंदी कवि सम्मेलन बड़े प्रेम से लोग सुनते थे। मैं ओवरनाइट सारे देश में लोकप्रिय हो गया क्योंकि पहली बार हिंदी वालों ने नया फ्रेज सुना था कि हिंदी का कोई कवि अपनी कविता में कारवां गुजर गया जैसा शब्द बांध दे। और बाद में इसकी लोकप्रियता को भी बनाने के लिए एक पिक्चर भी बनी 1960 में, नई उम्र की नई फसल। वे बोले हमें इसके लिए आपका ये गीत चाहिए। मैंने कहा भाई मैं फिल्मों के लिए लिखता नहीं, आपको चाहिए तो ले लीजिए। वे बोले आप फिल्मों के लिए गीत लिखिए। मैंने कहा मैं सर्विस में हूं इधर, सो आ नहीं सकता हूं, आपको मेरी कविता लेनी हो तो ले लीजिए। उन्होंने मेरी कविता लेकर के फिल्म बना दी। सौभाग्य से वो फिल्म हिट भी हो गई और कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे मोहम्मद रफी साहब ने उसे गाया और वो विश्व विख्यात हो गया। जहां भी मैं गया मेरा परिचय कारवा गुजर गया कवि के रूप में ही दिया गया।
1: श्रोताओं, एसडी बर्मन उनके पसंदीदा संगीतकार रहे। उन्हें याद करते हुए वे कहते हैं,
0: बर्मन साहब ने जैसे मेरे गीत बनाए वैसे किसी और ने नहीं किया ये काम। मुझे लगता नहीं कि वे नए नए प्रयोग करते थे और मैंने भी नए नए प्रयोग किए भाषा के साथ।
1: श्रोताओं, मेरा नाम जोकर फिल्म पहले प्रदर्शन में फ्लॉप साबित हुई। राज कपूर साहब को दिवालिया कर दिया इस फिल्म ने, लेकिन इसके गीत अपनी दार्शनिकता के कारण सुपरहिट रहे। इन्हें नीरज ने लिखा था। उस दौर को याद करते हुए वो कहते हैं,
0: फिल्मी दुनिया में लेखक और म्यूजिक डायरेक्टर का एक आपस में सामंजस्य हो जाता है। अब क्या हुआ, जब मेरी पिक्चर सिल्वर जुबली कर रही थी शर्मिली और मेरा नाम जोकर सुपर फ्लॉप रही, पर इसमें मेरा लिखा गीत ए भाई जरा देख के चलो सुपरहिट हुआ। ये मेरी नई बनाई हुई

0: प्रेम भी क्या चीज है श्रोताओं, सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक लगातार चली आ रही है।
1: बिल्कुल,
0: सभ्यताएं बदली, संस्कृतियां बदली, मिट्टी पानी समाज सब बदलते रहे, पर प्रेम प्रेम नहीं बदला। बदले भी कैसे, इसके बिना जीने का कोई मतलब भी तो नहीं रह जाता। नीरज साहब का एक गीत देखिए, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। दोबारा सुनिए इसे गौर से, जी हाँ, नए अर्थ मिलेंगे आपको।
2: बस

0: श्रोताओ एक बात और बताएं आपको, जब से कान्हा ने राधा के लिए बंसी बचाई, लगता है तभी से प्रेम में बंसी की महिमा बढ़ गई है और तभी से मुहावरा भी बन गया प्रेम की बंसी बजाना। श्रोता हम आपको बता दें, प्रेम का हारमोनियम, प्रेम का सितार, प्रेम का गिटार, ये सब कोई नहीं बजाता।
1: बिल्कुल, प्रेम की बंसी बजती है।
0: हाँ, और इसके पीछे नीरज साहब का ये गीत सुनिए।

श्रोताओं, प्रेम एक नशा है, जो चढ़े तो हर नशा फीका लगता है, फिर चाहे प्रेम आध्यात्मिक हो या लौकिक। ये चढ़े तो खुमारी बराबर की होती है, गोपालदास नीरज भी गाते हैं।

तो देखा श्रोताओं, कली, लहर, नदी, किरण सब के सब से अपील है कि हाथ बढ़ाओ, मुझे पिया से मिलना है। लेकिन प्रेम में विछोह भी तो सहना पड़ता है। सच कहें तो मिलन और वियोग दिन रात की तरह हैं, इनका क्रम चलता ही रहता है। फिर विरह के बिना मिलन का आनंद भी तो नहीं। प्रेम की परीक्षा भी विरह में ही होती है। उसी समय समझ में आता है कि प्रेम कितना गहरा है। अब नीरज के नायक का हाल देखिए, जिसने प्यार में खत लिखे तो क्या क्या नजारे बन गए।

0: तो श्रोताओं, इसी तरह हमारे शब्दों का कारवा भी गुजरता जा रहा है। ये थी हमारी आज की प्रस्तुति गोपाल दास नीरज के ऊपर शब्दों के शिल्पकार कार्यक्रम में। अब हमें इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: रॉल्फ कॉर्टराइट का अनैतिक व्यवहार और ढहता हुआ व्यापारिक साम्राज्य 1633। क्या आप जानते हैं कि 1633 में रॉल्फ कॉर्टराइट नामक एक अंग्रेजी व्यापारी मसूलीपट्टनम से एक ऐसे मिशन पर निकला था जो बंगाल और उड़ीसा की उपजाऊ भूमि में ईस्ट इंडिया कंपनी का भाग्य निर्धारित करने वाला था। जहां इतिहास इस यात्रा को इसके व्यावसायिक महत्व के लिए याद रखता है, वहीं डच अभिलेखागार में इस घटना का एक कहीं अधिक अपमानजनक संस्करण सुरक्षित है, जिसे एमोरस मिस एडवेंचर अर्थात प्रेमपूर्ण दुस्साहस के रूप में जाना जाता है। कॉर्टराइट का गंतव्य कटक में उड़ीसा के नवाब का दरबार था। आगरा के मुगल शाही केंद्र की कठोर और पूर्व निर्धारित औपचारिकताओं के विपरीत यह प्रांतीय कूटनीति की दुनिया थी। कटक के भव्य महल में कॉर्टराइट ने खुद को एक बेहद आदमीय माहौल में पाया, जहां वो नवाब से कुछ ही फिट की दूरी पर दरबार के फर्श पर पालथी मारकर बैठा था। व्यापारिक अधिकार सुरक्षित करने के लिए कॉर्टराइट ने आवश्यक रस्में निभाईं। उसने नवाब के पैर चूमे और उपहारों का एक मामूली संग्रह भेंट किया, जिसमें लौंग, जायफल, एक सुनहरा दर्पण और एक दोनाली पिस्तौल शामिल थी। ये मिशन एक बड़ी जीत जैसा लगा। नवाब कॉर्टराइट से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उसे खिलअत यानी सम्मान की पोशाक पहनाई, जिसने प्रतीकात्मक रूप से अंग्रेज को नवाब के सामने सेवा और वफादारी के नेटवर्क में शामिल कर लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कॉर्टराइट एक परवाना हासिल करने में सफल रहा, जिसने अंग्रेजों को शुल्क मुक्त व्यापार करने और हरिहरपुर के बंदरगाह में एक फैक्ट्री बनाने का अधिकार दे दिया। हालांकि बटाविया कैसल में डच द्वारा एकत्र की गई खुफिया जानकारी के अनुसार ये सफलता कॉर्टराइट के निजी आचरण के कारण नाटकीय रूप से बर्बाद हो गई। जैसे ही हरिहरपुर में अंग्रेजी लॉज का निर्माण पूरा होने वाला था, नवाब ने अचानक पूरी संरचना को नष्ट करने और गिरा देने का आदेश दे दिया। बंगाल की खाड़ी के बंदरगाहों में ये फुसफुसाहट थी कि कॉर्टराइट को फैक्ट्री में अनैतिक व्यवहार के लिए गिरफ्तार किया गया था। इसका परिणाम त्वरित और गंभीर था। कॉर्टराइट को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और 1,000 रुपए का जुर्माना भरने के बाद ही उसे अपनी आजादी वापस मिली। जहां अंग्रेजी कंपनी के रिकॉर्ड इस विशिष्ट शर्मिंदगी के बारे में चुप्पी साधे हुए हैं, वहीं डच प्रशासकों ने इस कहानी को पूरी तरह से विश्वसनीय माना। कॉर्टराइट की ये घटना 17वीं सदी की कंपनी राज्य की एक बुनियादी सच्चाई को दर्शाती है। वैश्विक वाणिज्य अंतर व्यक्तिक संबंधों की नाजुक नींव पर टिका था। प्रांतीय कूटनीति की उस दुनिया में जहां एक व्यापारी की सामाजिक प्रतिष्ठा उसकी पूंजी जितनी ही महत्वपूर्ण थी, एक अनैतिक व्यवहार एक उभरते व्यापारिक साम्राज्य को घुटनों पर ला सकती थी।
2: अगर आपको 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें, ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जाँच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
3: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस, वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
2: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: नमस्कार, मैं हूं सोनाली राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। जय हिंद।
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 मेगाहर्ट्ज़, रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: आपने अब तक जाना कि स्वामी जी इतिहास के बहुत बड़े ज्ञाता थे। केवल अपने देश का ही नहीं बल्कि उन्हें विश्व इतिहास का अच्छा ज्ञान था। राजनीतिक इतिहास के साथ साथ वे सामाजिक बदलाव का इतिहास भी बयान करते थे।
1: भारत के सिवाय अन्यत्र सभी देशों के धर्मों का यही मत था कि समस्त संसार टुकड़ा टुकड़ा अलग है, ईश्वर भी अलग है, प्रकृति भी अलग है, मनुष्य अलग है, इसी प्रकार पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पत्ता मिट्टी पत्थर धातु आदि सब अलग है। भगवान ने इसी प्रकार सब अलग करके सृष्टि की है।
2: स्वामी जी ने सभ्यता का इतिहास अपनी रोचक शैली में बताया। उन्होंने सृष्टि की शुरुआत से प्रारंभ किया।
1: हम पहले ही कह आए हैं कि हमारी विद्या बुद्धि और चिंता सभी आध्यात्मिक हैं। सभी का विकास धर्म के भीतर है और पाश्चात्यों में ये सारे विकास बाहर शरीर और समाज में है। भारत के चिंतनशील मनीषी क्रमशः समझ गए थे कि इन चीजों को अलग अलग मानना भूल है। अलग होते हुए भी उन सब में एक संबंध है। मिट्टी पत्थर पेड़ पत्ता जीव जंतु मनुष्य देवता यहां तक कि स्वयं ईश्वर भी एक है। अद्वैतवादी इसकी चरम सीमा पर पहुंच गए। उन्होंने कहा, यह सब कुछ उसी का एक विकास है। सचमुच यह अध्यात्म और अधिभूत जगत एक ही है, उसी का नाम ब्रह्म है, और जो अलग अलग मालूम पड़ता है वो भूल है, वही माया अविद्या अर्थात अज्ञान है, यही ज्ञान की चरम सीमा है।
0: पाश्चात्य मत से समाज का क्रम विकास हुआ, धीरे धीरे मनुष्य सभ्य हुआ।
1: इसलिए तो इस देश के प्रायः सभी लोग परिणामवादी बने हुए हैं। जैसे छोटा पशु कालांतर में बदलकर बड़ा पशु हो जाता है, कभी बड़ा जानवर छोटा भी हो जाता है, कभी लुप्त भी हो जाता है, इसी प्रकार मनुष्य का भी हुआ होगा, उसका भी क्रमशः विकास हुआ होगा। मनुष्य सभ्य अवस्था में एकाएक पैदा हुआ, इस बात पर अब कोई विश्वास नहीं करता। कारण, इनके बाप दादा थोड़े ही दिन पहले असभ्य जंगली थे, अब इतने कम दिनों में ही वे लोग सभ्य हो गए हैं। इसलिए वे लोग कहते हैं कि सभी मनुष्य क्रमशः असभ्य अवस्था से सभ्य हुए हैं और हो रहे हैं।
2: आदिम मनुष्य प्रकृति के साथ एकात्म होकर गुजर बसर करते थे, धीरे धीरे वे प्रकृति पर विजय पाने लगे।
1: आदिम मनुष्य काठ पत्थर के औजारों से काम चलाता था, चमड़ा या पत्ता पहनकर दिन बिताते थे, पहाड़ की गुफाओं में या चिड़ियों के घोंसलों की तरह झोपड़ियों में गुजर करते थे। इसका प्रमाण सभी देशों में मिलता है और कहीं तो अभी भी मनुष्य उसी अवस्था में मौजूद है। क्रमशः मनुष्य ने धातु का व्यवहार करना सीखा, उन नरम धातुओं का जैसे टीन और तांबा। प्राचीन यूनानी बेबीलोन और मिश्र निवासी भी बहुत दिनों तक लोहे का व्यवहार नहीं जानते थे। जब वे पहले की अपेक्षा सभ्य हो गए तो पुस्तक आदि लिखने लगे, सोने चांदी का व्यवहार करने लगे, परंतु तब तक वे लोहे का व्यवहार नहीं जानते थे। अमेरिका महाद्वीप के आदिम निवासियों में मैक्सिको पेरू माया आदि जातियां दूसरों से सभ्य थीं। वे बड़े बड़े मंदिर बनाती थीं, सोने चांदी का उनमें खूब व्यवहार था। यहां तक कि सोने चांदी के लालच से स्पेन वालों ने उनका नाश कर डाला, किंतु वे सब काम चकमक पत्थर के औजारों द्वारा बड़े परिश्रम से किए जाते थे। लोहे का कहीं नामो निशान भी नहीं था।
0: शिकार, फिर पशुपालन, फिर खेती किसानी, ये रहा मनुष्य विकास का इतिहास।
1: आदिम अवस्था में मनुष्य तीर धनुष या जाल आदि के द्वारा पशु पक्षी या मछली मारकर खाता था। क्रमशः उसने खेती बाड़ी करना और पशु पालना सीखा, जंगली जानवरों को अपने अधिकार में लाकर अपना काम कराने लगा। गाय बैल घोड़ा सुअर हाथी ऊंट भेड़ बकरी मुर्गी आदि मनुष्य के घर में पाले जाने लगे। इनमें कुत्ते मनुष्य के आदिम दोस्त थे। इसके बाद खेती बाड़ी आरंभ हुई। जो फल फूल साग सब्जी गेहूं चावल मनुष्य आजकल खाता है, उन चीजों की आदिम जंगली अवस्था बहुत भिन्न थी। बाद में मनुष्यों के अध्यावसाय से ही वे वस्तुएं अनेक सुखदायक पदार्थ बन गई। प्रकृति में तो दिन रात परिवर्तन होता ही रहता है। नाना प्रकार के पेड़ पौधे पैदा होते रहते हैं। पशु पक्षियों के शरीर संसर्ग में देश काल के परिवर्तन से नई नई जातियों की सृष्टि होती रहती है। इस प्रकार प्रकृति मनुष्य की सृष्टि करती थी, पर मनुष्य की सृष्टि के पूर्व प्रकृति धीरे धीरे पेड़ पौधों तथा दूसरे पशुओं में परिवर्तन करती थी, पर मनुष्य की सृष्टि होते ही उसने जोर से परिवर्तन आरंभ कर दिया। मनुष्य एक देश के पौधे और जीव जंतुओं को दूसरे देश में ले जाने लगा और उनके परस्पर मिश्रण से कई प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधों की जातियां मनुष्य द्वारा उत्पन्न की जाने लगी।
2: समाज की सृष्टि हुई, सभ्य लोग देवता और जंगली लोग असुर कहलाए।
1: समाज की सृष्टि होने लगी, देश भेद से ही समाज की सृष्टि हुई। समुद्र के किनारे जो लोग रहते थे वे अधिकांश मछली पकड़कर अपना जीवन निर्वाह करते थे। जो समतल जमीन पर रहते थे वे खेती बाड़ी करते थे। जो पर्वतों पर रहते थे वे भेड़ चराते थे। जो बालू के मैदानों में रहते थे वे बकरी और ऊंट चराते थे। कितने ही लोग जंगलों में रहकर शिकार करने लगे। जिन्होंने समतल जमीन पाकर खेती बाड़ी करना सीखा वे पेट की ज्वाला से बहुत कुछ निश्चिंत होकर विचार करने का अवकाश पाकर अधिकतर सभ्य होने लगे। किंतु सभ्यता आने के साथ शरीर दुर्बल होने लगा। जो दिन रात खुली हवा में रहकर अधिकतर मांस खाते थे उनमें और घर के भीतर रहकर अधिकतर अनाज खाते थे बहुत अंतर होने लगा। शिकारी पशु पालने वालों या मछली खाने वालों को जब कभी भोजन की कठिनाई पड़ती तभी वे समतल भूमि निवासी कृषकों को लूटने लगते। समतल निवासी आत्मरक्षा के लिए आपस में दल बांधने लगे और इस प्रकार छोटे छोटे राज्यों की सृष्टि होने लगी। देवताओं का भोजन अनाज होता था, वे सभ्य होते थे तथा ग्राम नगरों अथवा उद्यानों में निवास करते थे और बुने हुए कपड़े पहनते थे। असुरों का वास पहाड़ पर्वत मरुभूमि या समुद्र तट पर होता था। उनका भोजन जंगली जानवरों का मांस तथा जंगली फल मूल था और कपड़े थे बकरी के चमड़े अथवा अन्य कोई चीज से बने, जो इन चीजों के बदले में वे देवताओं से पा जाते थे।
0: देव और असुरों में संघात शुरू हुआ। देव बुद्धि बल से जीतने लगे।
1: असुरों को भोजन का अभाव होते ही वे लोग दल बांधकर पहाड़ से उतरकर या समुद्र के किनारे से आकर गांव नगरों को लूटते थे। वे कभी कभी धन धान्य के लोभ से देवताओं पर भी आक्रमण कर बैठते थे। यदि बहुत से देवता एकत्रित ना हो सकते थे तो उनकी असुरों के हाथ से मृत्यु हो जाती थी। देवताओं की बुद्धि तेज थी, इसलिए वे कई तरह के अस्त्र शस्त्र तैयार करने लगे। ब्रह्मास्त्र गरुणास्त्र वैष्णवास्त्र ये सब देवताओं के अस्त्र थे। असुरों के अस्त्र तो साधारण थे पर उनके शरीर में बल बहुत था। बारंबार देवताओं को असुरों ने हरा दिया, पर वे सभ्य होना नहीं जानते थे। वे खेती बाड़ी भी नहीं कर सकते थे और ना बुद्धि का प्रयोग ही कर सकते थे।
2: जनसंख्या धीरे धीरे फैलने लगी, कुछ वीर जाति बने और कुछ कमजोर।
1: उपलब्ध इतिहास से मालूम होता है कि जम्बू द्वीप के मध्य भाग और अरब की मरुभूमि में असुरों का प्रधान अड्डा था। इन स्थानों में इकट्ठे होकर असुरों ने अपनी संतानों को चरवाहों में फैला दिया। यूरोप खंड के आदिम निवासियों की एक विशेष जाति अवश्य पहले से ही थी। पर्वत की गुफाओं में इस जाति का निवास था और इस जाति के जो लोग अधिक बुद्धिमान थे वे थोड़े जल वाले तालाबों में मचान बांधकर उन्हीं पर रहते और घर द्वार निर्माण करते थे। ये लोग अपने सारे काम चकमक पत्थर से बने तीर भाले चाकू कुल्हाड़ी आदि से ही चलाते थे। क्रमशः जम्बू द्वीप का नर स्त्रोत यूरोप में आने लगा। कहीं कहीं अपेक्षाकृत सभ्य जातियों का अभ्युदय हुआ। रूस देश की किसी जाति की भाषा भारत की दक्षिणी भाषा से मिलती है, किंतु ये जातियां बहुत दिनों तक अत्यंत बर्बर अवस्था में रही। एशिया माइनर के सभ्य लोगों का एक दल समीपवर्ती द्वीपों में जा पहुंचा। उन लोगों को हम यवन कहते हैं और यूरोपीय उन्हें ग्रीक नाम से पुकारते हैं।
0: जातियों के सम्मिश्रण से यूरोपियन जाति का जन्म हुआ। भारत और ग्रीस सभ्यता में अग्रणी थे।
1: हिंदुओं का सा काला रंग, उत्तरी देशों का दूध की ही तरह सफेद रंग, काले भूरे अथवा सफेद केश, काली भूरी नीली आंखें, खास हिंदुओं की तरह नाक मुंह और आंखें तथा चीनियों की तरह चपटे मुंह, इन सब आकृतियों से युक्त बर्बर यूरोपीय जाति की उत्पत्ति हो गई। कुछ दिनों तक वे आपस में ही मारकाट करते रहे। उत्तर के डाकू मौका पाने पर अपने से जो सभ्य थे उनका नाश करने लगे। बीच में ईसाई धर्म के दो गुरु, इटली के पोप और पश्चिम में कॉन्स्टेंटिनोपल शहर के पेट्रियार्क इस पशुप्राय बर्बर जाति और उसके राजा रानी के ऊपर शासन करने लगे। इस ओर अरब की मरुभूमि में मुसलमानी धर्म की उत्पत्ति हुई। जंगली पशु के तुल्य अरबों ने एक महापुरुष की प्रेरणा से अदम्य तेज और अनाहत बल से पृथ्वी के ऊपर आघात किया। पश्चिम पूर्व के दो प्रांतों के उस तरंग ने यूरोप में प्रवेश किया। उसी प्रवाह में भारत और प्राचीन ग्रीक की विद्या बुद्धि यूरोप में प्रवेश करने लगी। कई शताब्दियों के पश्चात जब तुर्क आदि जातियां बौद्ध धर्म छोड़कर मुसलमान बन गईं, तो उस समय इन तुर्कों ने संभाव से हिंदू पारसी आदि सबको दास बना दिया। भारत वर्ष को जीतने वाले मुसलमान विजेताओं में एक दल भी अरबी या पारसी नहीं है, सभी तुर्की या तातारी हैं। सभी आगंतुक मुसलमानों को राजपूताना तुर्क कहते हैं। यही सत्य और ऐतिहासिक तथ्य है। कुतुबुद्दीन से लेकर मुगल बादशाहों तक सब तातार लोग ही थे, अर्थात जिस जाति के तिब्बती थे उसी जाति के, सिर्फ वे मुसलमान हो गए। हिंदू पारसियों से विवाह करके उनका चपटा मुंह बदल गया।
0: मूर जाति ने यूरोप में सभ्यता का सूत्रपात किया। स्वामी जी ने कहा,
1: इधर मूर नामक एक मुसलमान जाति ने स्पेन देश में एक अत्यंत सभ्य राज्य की स्थापना की और वहां अनेक प्रकार की विद्याओं की चर्चा आरंभ कर दी। फलतः पहले पहल यूरोप में यूनिवर्सिटियों की सृष्टि हुई। इटली फ्रांस और सुदूर इंग्लैंड से वहां विद्यार्थी पढ़ने आने लगे। राजा रजवाड़ों के लड़के युद्ध विद्या आचार कायदा सभ्यता आदि सीखने के लिए वहां आने लगे और घर द्वार महल मंदिर तब नए ढंग से बनने लगे। यूरोपीय नामक वस्त्र के ये सब उपकरण हुए। एक शीतोष्ण पहाड़ी समुद्र तटमय प्रदेश उसका करघा बना और सर्वदा युद्ध प्रिय बलिष्ठ अनेक जातियों की समष्टि से पैदा हुई एक सम्मिश्र जाति इसकी रूई हुई। इसका ताना हुआ आत्मरक्षा और धर्मरक्षा के लिए सर्वदा युद्ध करना।
2: यूरोप में जमीन उर्वरक नहीं थी, इसीलिए अन्न की खोज में वे दूसरे देशों पर चढ़ाई करते रहे।
1: यूरोपियनों को जिस देश में मौका मिलता है वहां के आदिम निवासियों का नाश करके स्वयं मौज से रहने लगते हैं। इसलिए उनका कहना है कि आर्य लोगों ने भी वैसा ही किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस धारणा का आधार क्या है? सिर्फ अंदाज ही? तुम लोग अपना अंदाज अनुमान अपने घर में रखो। किस वेद अथवा सूक्त में अथवा अन्यान्य और कहीं तुमने देखा है कि आर्य दूसरे देशों से भारतवर्ष में आए? इस बात का प्रमाण तुम्हें कहां मिला है कि उन लोगों ने जंगली जातियों को मार काट कर यहां निवास किया? इस व्यर्थ अहमकपन की क्या जरूरत है? तुमने तो रामायण पढ़ी ही नहीं, फिर व्यर्थ ही रामायण के आधार पर ये सफेद झूठ क्यों गढ़ रहे हो?
0: पर भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। रामायण आर्य जाति द्वारा अनार्य विजय का उपाख्यान नहीं है।
1: रामायण क्या है? आर्यों के द्वारा दक्षिणी जंगली जातियों की विजय। हां, यह ठीक है कि रामचंद्र सुसभ्य आर्य राजा थे, पर उन्होंने किसके साथ लड़ाई की थी? लंका के राजा रावण के साथ। जरा रामायण पढ़कर तो देखो, वो रावण सभ्यता में रामचंद्र के देश से बढ़ा चढ़ा था कम नहीं। लंका की सभ्यता अयोध्या की सभ्यता से अधिक थी कम नहीं। इसके अलावा वानरादि दक्षिणी जातियां कहां जीत ली गईं? वे सब तो श्री रामचंद्र जी के दोस्त बन गए थे। किसी के ग्रह का या किस बाली नामक राजा का राज्य श्री रामचंद्र ने छीन लिया? तुम कहो तो सही।
2: दूसरों का नाश कर खुद जीना, यूरोप का हमेशा यही रवैया रहा।
1: यूरोपीय लोगों, तुमने कब किसी देश का भला किया है? अपने से अवनत जाति को ऊपर उठाने की तुम में शक्ति कहां है? जहां कहीं तुमने दुर्बल जाति को पाया, नेस्त नाबूद कर दिया और उसकी निवास भूमि में तुम खुद बस गए और वे जातियां एकदम मटिया मेट हो गईं। वे सब जंगली जातियां आज कहां हैं? एकदम सत्यानाश। जंगली पशुओं की तरह उन्हें तुम लोगों ने मार डाला। जहां तुम्हारी शक्ति काम नहीं कर सकी, सिर्फ वहीं अन्य जातियां जीवित हैं।
0: स्वामी जी ने भारत और यूरोप की तुलना करते हुए कहा,
1: भारत वर्ष ने तो ऐसा कभी भी नहीं किया। आर्य लोग बड़े दयालु थे। उनकी अखंड समुद्रवत विशाल हृदय में, दैवी प्रतिभा संपन्न मस्तिष्क में, उन सब आकर्षक प्रतीत होने वाली पाश्विक प्रणालियों ने किसी समय भी स्थान नहीं पाया। विदेशी अहमकों, यदि आर्य लोग जंगली लोगों को मार पीट कर यहां वास करते तो क्या वर्णाश्रम की सृष्टि होती? यूरोप का उद्देश्य है सबको नाश करके स्वयं अपने को बचाए रखना। आर्यों का उद्देश्य था सबको अपने समान करके अथवा अपने से भी बड़ा करना। यूरोपीय सभ्यता का साधन तलवार है और आर्यों की सभ्यता का उपाय वर्ण विभाग। शिक्षा और अधिकार के तारतम्य के अनुसार सभ्यता सीखने की सीढ़ी थी वर्ण विभाग। यूरोप में बलवानों की जय और निर्बलों की मृत्यु होती है। भारत में प्रत्येक सामाजिक नियम दुर्बलों की रक्षा करने के लिए ही बनाया गया है। आर्य लोग शांति प्रिय हैं, खेती बाड़ी करते हैं और शांति से अनाज पैदा करते हैं। अपने परिवार का पालन पोषण मात्र कर देने से खुश हो जाते थे। उनके लिए सांस लेने का अवकाश यथेष्ट था, इसलिए चिंताशील तथा सभ्य होने का अवकाश अधिक था। हमारे जनक राजा अपने हाथों से हल भी चलाते थे और उस समय के सर्वश्रेष्ठ आत्मविद भी थे। यहां आरंभ से ही ऋषि मुनियों और योगियों आदि का अभ्युदय था। वे लोग आरंभ से ही जानते थे कि संसार मिथ्या है, लड़ना झगड़ना बेकार है। जो आनंद के नाम से पुकारा जाता है उसकी प्राप्ति शांति में है और शांति है शारीरिक भोग के विसर्जन में। सच्चा आनंद है मानसिक उन्नति में और बौद्धिक विकास में, ना कि शारीरिक भोगों में। जंगलों को आबाद करना उनका काम था।
2: अंत में स्वामी जी आधुनिक यूरोप की तारीफ करते हैं।
1: पाश्चात्य देशों में इस समय एक साथ ही लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की कृपा हो गई है। केवल भोग की चीजों को ही एकत्रित करने पे वे शांत नहीं होते, वरन सभी कामों में एक सुंदरता देखना चाहते हैं। खान पान, घर द्वार, सभी में सुंदरता की खोज है। जब धन था तो हमारे देश में भी एक दिन यही भाव था। इस समय एक दरिद्रता के कारण ही हम लोग इतो नष्ट स्ततो भ्रष्ट होते जा रहे हैं। जाति के जो गुण थे वे मिटते चले जा रहे हैं और पाश्चात्य देश के लिए हम एक नियम को अपनाने में भी असमर्थ हैं। पूजा पाठ प्रवृत्ति आदि जो कुछ था उसे तो हम लोग जल में प्रवाहित किए दे रहे हैं, पर समय उपयोगी किसी नवीन नियम का अभी भी निर्माण नहीं हो रहा है।
0: भारत ने प्राचीन गौरव खो दिया है, हर तरफ अवनति ही नजर आती है।
1: यहां सबसे अधिक दुर्दशा कलाओं की हुई है। पहले सभी वृद्धाएं दीवारों को रंग बिरंगा करती थी, आंगन को फूल पत्तों के चित्रों से सजाती थी, खाने पीने की चीजों को भी कला की चातुरी से सजाती थी। वो सब या तो चूल्हे में चला गया है या शीघ्र ही जा रहा है। नई चीजें अवश्य सीखनी होंगी और करनी भी होंगी, पर क्या पुरानी चीजों को जल में डुबाकर? नई बातें तो तुमने खाक सीखी हैं, केवल बकवास करना जानते हो। काम की विद्या तुमने कौन से सीखी है? आज भी दूर के गांव में लकड़ी के और ईंटों के पुराने काम देखाओ। कलकत्ते के बढ़ई एक जोड़ा दरवाजा तक तैयार नहीं कर सकते। दरवाजा क्या सिटकनी तक नहीं बना सकते। बढ़ई पना तो अब केवल अंग्रेजी औजारों को खरीदने में ही रह गया है। यही अवस्था सब चीजों में उपस्थित हो गई है। हमारा जो कुछ था ये सब तो जा रहा है और विदेशों से भी सीखी है केवल बकवास।
2: पश्चिम में सफाई का बहुत महत्व है, स्वामी जी ने जब देखा तो कहा,
1: साफ सुथरा बनने ठनने में इस देश का इतना अधिक अभ्यास हो गया है कि गरीब से गरीब आदमी की भी इस ओर दृष्टि रहती है। दृष्टि भी किसी मतलब से ही रहती है, कारण साफ सुथरा कपड़ा लत्ता ना पहनने से कोई उन्हें काम काज ही ना देगा। नौकर मजदूरिन रसोईया सबका कपड़ा दिन रात लकालक रहता है, घर द्वार झाड़ झूड़ धो पोंछ कर साफ सुथरा किया रहता है। इनकी प्रधान विशेषता यह है कि इधर उधर कभी कोई चीज नहीं फेंकेंगे। रसोई घर झका झक कूड़ा करकट जो कुछ फेंकना है बर्तन में फेंकेंगे, फिर उस स्थान से दूर ले जाकर फेंकेंगे, ना आंगन में और ना रास्ते में ही फेंकेंगे।
0: स्वामी यूरोप और अमेरिका में खूब घूमे, उनकी कला की तारीफ की।
1: जिनके पास धन है उनका घर देखने की चीज होती है, रात दिन सब झकाझक रहता है। इसके बाद देश विदेशों की नाना प्रकार की कारीगरी की चीजों को एकत्रित करते हैं। इस समय हमें उनकी तरह कारीगरी की चीजें एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु जो चीजें नष्ट हो रही हैं उनके लिए तो थोड़ा यत्न करना पड़ेगा या नहीं। उनकी तरह का चित्रकार या शिल्पकार स्वयं होने के लिए अभी भी बहुत देरी है। इन दोनों कामों में हम लोग बहुत दिनों से ही अपटु हैं। हमारे ठाकुर जी तक कितने सुंदर होते हैं या तो जगन्नाथ जी को ही देखने से पता लग जाता है। बहुत प्रयत्न से उसकी नकल करने पर कहीं एक आध रवि वर्मा पैदा होते हैं। उसकी अपेक्षा देशी ढंग के चित्र बनाना अधिक अच्छा है। उनके कामों में फिर झकाझक रंग हैं, पर उनकी अपेक्षा जयपुर के सुनहले चित्र और दुर्गा जी के चित्र आदि देखने में अधिक सुंदर हैं।
2: आपने स्वामी जी के विश्व सभ्यता का संक्षिप्त इतिहास सुना। वे जहां भी जाते थे वहां के इतिहास और समाज को भली भांति जानने का प्रयास करते थे और अपने ढंग से परिभाषित करते थे।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: वायदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

तो ये था कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। आपने ट्यून किया अपने रेडियो सेट पर 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। एक शाही दहेज, सात द्वीपों और चाय की प्याली से बना साम्राज्य। साल 1662 में राजा चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा से विवाह किया। ये एक ऐसा मिलन था जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। उस समय के दरबारियों के लिए राजकुमारी का दहेज वस्तुओं का एक अजीब संग्रह था। चाय का एक संदूक और सात चट्टानी मच्छरों से भरे द्वीपों का एक समूह जिसे बम्बई के नाम से जाना जाता था। लंदन के सबसे प्रसिद्ध डायरी लेखक और गपशप के शौकीन सैमुअल पेपिस इससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने बम्बई को एक बेचारा छोटा सा द्वीप कहकर खारिज कर दिया और कड़वाहट के साथ भविष्यवाणी की कि यह राजा के लिए दुख के सिवा कुछ नहीं लाएगा। उस समय इन द्वीपों की कीमत इतनी कम आंकी गई थी कि क्राउन ने अंततः इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 10 पाउंड प्रति वर्ष के मामूली किराए पर पट्टे पर दे दिया। हालांकि यही बेचारा छोटा सा द्वीप ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक रणनीतिक केंद्र बना। इसने डच और पुर्तगाली प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए एक आदर्श आधार प्रदान किया और अंततः अफीम और चाय के व्यापार के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य किया, जिसने औद्योगिक क्रांति को गति दी। इस बीच चाय के उस एक संदूक ने एक सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत कर दी। कैथरीन से पहले चाय एक रहस्यमयी चीनी पेय थी जो केवल विशेष कॉफी हाउसों में बेची जाती थी। उनके आने के बाद यह एक राष्ट्रीय जुनून बन गई। 1666 तक 1 पाउंड चाय की कीमत बम्बई के पूरे वार्षिक किराए के बराबर हो गई थी। इतिहास ने साबित किया कि पेप्स गलत थे, जिसे उन्होंने एक बोझ समझा था। वे वास्तव में एक वैश्विक महाशक्ति का जन्म था। इस शाही दहेज के बिना लंदन में शायद कभी चाय का स्वाद विकसित नहीं होता और बम्बई के वे मछली पकड़ने वाले गांव कभी ब्रिटिश राज के मुकुट का रत्न नहीं बन पाते।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: तो श्रोताओं, हमारी सुबह की सभा यहीं संपन्न होती है। आप बने रहिए हमारे साथ और आनंद लीजिए दोपहर की सभा का। सुनते रहिए एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवाएंगे पराग चौधरी का गायन और उसके बाद प्रस्तुत किया जाएगा बांसुरी वादन अजय प्रसन्ना का। तो सबसे पहले लीजिए पेश है गायन पराग चौधरी का।

श्रोताओं, कार्यक्रम भारत भारती में अभी आपने सुना गायन पराग चौधरी का, और उसके बाद लीजिए अब प्रस्तुत है अजय प्रसन्ना का बांसुरी वादन।

तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत भारती, जिसमें आज हमने आपको सुनवाया पराग चौधरी का गायन। उसके बाद आपने आनंद लिया बांसुरी वादन का, जिसे पेश किया अजय प्रसन्ना ने। अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: मैं हूँ हरि प्रसाद चौरासिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
1: मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों को नाज़ मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी प्यार कर ले।

0: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश। आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: रेडियो आज़ाद हिंद प्रस्तुत करता है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास से कुछ रोमांचक प्रसंग श्रृंखला आजादी के मुकदमे। आज सुनिए 9 अगस्त सन 1925 की घटना पर केंद्रित काकोरी कांड की दूसरी कड़ी।

0: चाय तो अच्छी थी। हाँ तो तसद्दुक हुसैन साहब
1: जी सर,
0: कितने मुलजिमों की शिनाख्त कराने वाले हैं आप?
1: सर फिलहाल तो यहाँ 6 मुलजिमान हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहड़ी, मनमत नाथ, राम किशन खत्री और प्रेम किशन खन्ना।
0: अच्छा अच्छा, उन 3 लोगों का कोई सुराग मिला? अशफाक उल्ला, चंद्रशेखर आजाद और बख्शी, शचिंदर बख्शी।
1: नहीं सर, तीनों ही फरार हैं अब तक। सर अशफाक उल्ला खां के दूल्हा भाई तो आपके बड़े पुराने कलीग रह चुके हैं।
0: ना सिर्फ वो, बल्कि इस पूरे खानदान से मैं खूब वाकिफ हूँ, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद कुछ बात नहीं बनी और खुद उन्हें भी कुछ मालूमात नहीं है। वैसे अशफाक उल्ला खां, जहां तक मैं समझ पाया हूँ, बेहद संजीदा और शरीफ तबीयत का लड़का है
1: जी।
0: जाने कैसे इन गलत लोगों की सोहबत में पड़ गया। मुझे तो उम्मीद है कभी इत्तफाक हुआ तो उसे समझा बुझाकर सरकारी गवाह बनने पर राजी कर लूं।
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अगर ऐसा हो जाए तो समझिए झंडे गड़ जाएंगे आपके।
0: हमार सर मेरे क्यों, सिला तो आपको भी मिलेगा।
2: हुजूर ऐसे में इस नाचीज को भी याद रखिएगा।
0: क्यों नहीं क्यों नहीं, अमां जब गंगा बहेगी तो आप भी हाथ धो लीजिएगा। हाँ तो जनाब, शनाख्त परेड की तैयारी है?
2: जी हाँ हुजूर, मुलजिमान समेत यही कोई 10 लोग रहेंगे।
0: सिर्फ 10? अमां 6 तो मुलजिमान ही हैं, कम से कम 12 तो खड़े कर देते। और जनाब गवाह कितने?
1: 4 हैं सर, एक तो रेलवे के डॉक्टर हैं जो उस दिन सेकंड क्लास में बैठे थे।
0: तब तो अगर ये कर सकें तो राजेंद्र लाहिरी की शिनाख्त कर पाएंगे। भाई बनवारी लाल के मुताबिक उस डिब्बे में 3 लोग थे, अशफाक उल्ला, शचिंदर नाथ सान्याल और ये राजेंद्र लाहिरी
1: जी।
0: पहले 2 तो फरार हैं। खैर और कौन कौन है?
1: सर दूसरा ट्रेन का सोडा पानी वेंडर है, जो कह देगा कि डकैती के वक्त ट्रेन में था। और एक कोई कल्लन इक्के वाला है जो वारदात से पहले लखनऊ स्टेशन के बाहर मिला था, और किसी धर्मशाला का मैनेजर है सर।
0: इनसे किस किस की शिनाख्त करवाएंगे?
1: तीनों राम प्रसाद बिस्मिल की शिनाख्त कर लेंगे सर।
0: कसम खुदा की, वही वाह।
1: शायद कुछ और भी मुलजिम की।
0: अमा छोड़िए मुलजिमान को, आप तो सिर्फ राम प्रसाद पे कंसंट्रेट कीजिए और समझिए कि गंगोत्री का मुंह खुलने को है, गंगा बहने को है।
1: जी सर।
0: चलिए जनाब ये काम निपटा लिया जाए।
1: जी सर।
3: ये काम इस तरह निपटाया गया कि डॉक्टर को छोड़कर बाकी 3 गवाहों को शिनाख्त से पहले ही राम प्रसाद बिस्मिल अच्छी तरह दिखा दिए गए। 3 गवाह पूरी शिनाख्त परेड के दौरान गैर वाजिब तरीके के साथ बैठाए गए। इसके बावजूद सोडा वेंडर अब्दुल वदूद बिस्मिल को पहचानने में 3 बार गड़बड़ाया। उसने खड़े किए गए लोगों में से 8 लोगों को पहचाना, जबकि मुलजिम कुल 6 थे। वो राजेंद्र लहड़ी की शक्ल से मिलते जुलते एक कैदी को पकड़कर खड़ा हो गया। आउट एंड आउट एक प्लांटेड विटनेस था वो, और बावजूद शिनाख्त में इतने घपलों के ये मान लिया गया कि उसने राम प्रसाद बिस्मिल और मनमथनाथ की शिनाख्त कर ली है। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में पुलिस अब तक कोई चश्मदीद गवाह नहीं जुटा पाई थी। अपना मुकदमा साबित करने के लिए पुलिस को ऐसे क्रांतिकारियों की सख्त जरूरत थी जिन्होंने उस डकैती में सक्रिय हिस्सा लिया हो और जो अदालत में उस घटना का पूरा पूरा ब्यौरा बता सकें। पुलिस का इरादा इन्हें मुखबिर या वादा माफ गवाह बनाने का था और जल्द ही इसकी कवायद शुरू हो गई। इसी बीच क्रांतिकारी दल का एक खास सदस्य बनारसी लाल गिरफ्तार किया गया। बनारसी लाल को दल के कई राज मालूम थे, लिहाजा पुलिस उसे किसी भी तरह तोड़ने और डीमोरलाइज करने में जुट गई।

0: देखो बनारसी लाल, तुम्हारी पार्टी के ज्यादातर लोग तो पकड़े जा चुके, बचे कुछ हैं वो भी 4 दिन में धर लिए जाएंगे। बचने वाला कोई नहीं है। ज्यादातर लोगों को फांसी की सजा तय है। जिन्हें फांसी नहीं तो उन्हें काला पानी में ताउम्र सड़ना ही पड़ेगा। अब तुम सोच लो, इनमें से तुम्हें क्या पसंद है? यूं तो तुम्हारे साथियों में आजकल होड़सी लगी है, कौन ज्यादा से ज्यादा राज उगल कर मुखबिर बन जाए, वादा माफ गवाह बनकर अपने ही साथियों को फांसी के तख्ते पर पहुंचा दे। हैरत की बात तो यह है कि उन साथियों में सबसे पहला नाम तुम्हारा ही तो है। कैद खाने में पड़े तुम कर ही कह सकते हो, ये बताओ। सुनो, मजिस्ट्रेट के सामने अपने सारे जुर्म कबूल कर लो, कन्फेशन, होल हार्टेड कन्फेशन, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, एक एक राज उजागर कर दो। तुम्हें मुखबिरी डिक्लेयर करवाना, इस मुकदमे से आजाद करवा देना मेरा जिम्मा है।
1: और इस तरह बनारसी लाल मुखबिर बन गया। उसी के बयान और निशानदेही पर पुलिस बिस्मिल समेत कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही, लेकिन बनारसी लाल ट्रेन डकैती वाले एक्शन में शामिल नहीं किया गया था, लिहाजा बतौर मुखबिर उसका दिया बयान भी अदालत में बहुत कारगर साबित नहीं होने वाला था। गिरफ्तार क्रांतिकारियों को ना तो एक ही जगह पर साथ साथ रखा गया था और ना ही उनमें आपसी संपर्क की कोई गुंजाइश छोड़ी गई थी। इन हालात में एक दूसरे के बारे में मनगढ़ंत बातें कहकर उनमें आपसी भ्रम या शक शुबहा पैदा करना बहुत आसान था, और पुलिस ने इन हालात का भरपूर फायदा उठाकर उनका मनोबल तोड़ने और उन्हें मुखबिर बना लेने की जी तोड़ कोशिशें शुरू कर दी। हद तो यह थी कि पुलिस अपने हथकंडे राम प्रसाद बिस्मिल जैसे जांबाज पर आजमाने में भी नहीं चूकी।
2: सर, ये राम प्रसाद बिस्मिल तो इन रेवोल्यूशनरी का सरगना है, अगर इसे किसी तरह मुखबिर बना लिया जाए तो समझिए मैदान साफ है।
3: वो तो है, लेकिन बिस्मिल टूट सके इसके इम्कानात कम ही हैं।
2: जनाब तसद्दुक हुसैन साहब के होते ये तो क्या, ऐसा कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, समझ गए आप
3: जी।
2: काबुल में तो बड़े सख्तजान बागी थे, पर स्पेशल मिशन पर जब साहब को भेजा गया तो वहाँ का नक्शा ही बदल दिया साहब ने।
3: बेशक, वहाँ तो वाकई आपने कमाल कर दिया था,
2: और यहाँ भी कमाल कर दिखलाएंगे, आप मुतमईन रहें। फिर ये राम प्रसाद, एक तो पूजा पाठ वाला आदमी, ऊपर से शायर, ऐसों को टेकल करना साहब के लिए बाएं हाथ का खेल है।

0: अच्छा, तो वो कनखल के पोस्ट ऑफिस पर और वो इलाहाबाद में एक बैंक पर डकैती का प्लान किसी और ने बनाया होगा। आपकी हैरानी तो वाजिब है कि हमें किसने बता दी। अब भाई जगह जगह आपके संगी साथी बंद पड़े हुए हैं, कहीं कोई राज उगल देता है, कहीं कोई। हमें जान किसे प्यारी नहीं होती। फिर उनमें कुछ तो नई उम्र के बच्चे हैं, पूरी जिंदगी पड़ी है उनके सामने, भला क्यों जानबूझकर उसे बर्बाद करने लगे, वो भी ऐसे मिशन के लिए जिसका पूरा कभी होना मुमकिन ही नहीं।
1: खान साहब, ये आपका ख्याल है।
0: जी नहीं, आपके उन साथियों को भी अब कमोवेश महसूस होने लगा है कि चंद पिस्तौल तमंचों के बूते पर इतनी अजीम और ताकतवर हुकूमत से टकराने का ख्याल महज एक पागलपन है। बस एक जुनून जो उन्हें कैद खाने के अंधेरे में गर्क तो कर सकता है, फांसी के तख्ते तक तो पहुंचा सकता है, लेकिन इस मजबूत और पायदार हुकूमत का बाल भी बांका नहीं कर सकता। तभी तो कोई बयान दे रहा है, कोई कन्फेशन कर रहा है, कोई मुखबरी की पेशकश कर रहा है, तो कोई वायदा माफ गवाह बनने को बेताब है।
1: नहीं नहीं नहीं, अपने साथियों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते।
0: आपका ये यकीन आपको कहीं और नहीं सीधा फांसी के तख्ते पर ले जाएगा, और एक नामुमकिन मकसद के लिए अपनी जान झोंकने वाले आप अकेले ही होंगे। बिस्मिल साहब, यकीनन आपकी नियत एक अजीम मिशन को अंजाम देना है, लेकिन अफसोस वो कतई पॉसिबल नहीं, हिंदुस्तान में तो किसी सूरत में नहीं। 1857 की बगावत देख लीजिए, वो दूर क्यों जाते हैं, खुद आपके साथी सचिन सान्याल ने तो बर्मा से काबुल तक फौजी छावनियों में बगावत का जाल बुन ही दिया था, पर हुआ क्या, नाकामी, जेल और फांसियां। बस हुकूमत बरतानिया का सूरज ना कभी गुरूब हुआ और ना कभी होगा। काबुल में मैंने जो तजुर्बा हासिल किया उसी की बिना पर मेरा नेक मशविरा है आपको, इस खाम ख्याली से बाहर आइए। अरे माशाल्लाह जवान हैं, जहीन हैं, अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से संवारिए, गवर्नमेंट आपको हर मुमकिन मदद देने को तैयार है।
1: मसलन
0: कम से कम सजा 15,000 रुपये नकद और इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई, वहां रिहाइश वगैरह का इंतजाम अलग। क्या ख्याल है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते पंडित।
1: मुझे क्या करना होगा?
0: अमा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बस बंगाल के क्रांतिकारियों के बारे में सारी इत्तिलाएं दे दो और
1: मुखबिर बनकर अपने साथियों को फांसी चढ़वा दो। अपनी पार्टी, अपने मिशन, अपने साथियों और अपने वतन से गद्दारी करके ऐशो आराम की जिंदगी बिताओ, यही ना?
0: देखो मिस्टर बिस्मिल, इन जज्बाती बातों में कुछ नहीं रखा। आज एक मौका मिल रहा है आपको आजाद और खुशहाल जिंदगी जीने का, तो मेरी मानो इसे हाथ से मत जाने दो। आखिर आपकी भी कुछ ख्वाहिशें होंगी, अर्ज होगी, तमन्ना होगी।
1: जी हाँ, तमन्ना तो है।
0: बताओ बताओ, क्या है, क्या है वो?
1: बता दूं?
0: बताइए।
1: तो सुनिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
0: लाहौल विला कुव्वत, मेरी हिम्मत मारी गई थी जो तुम जैसे पागल से मिलने चला आया, जिसे ना जिंदगी की परवाह है ना मौत का खौफ।
1: शायद आपको मालूम नहीं, मेरा तो नाम ही

0: बिस्मिल तो बिस्मिल ठहरे, ना बड़े से बड़ा लालच उन्हें लुभा सकता था, ना बड़े से बड़ा खौफ डिगा सकता था। दूसरे क्रांतिकारी भी पुलिस के बहकावे में भला कहां आने वाले थे। इसी बीच रायबरेली में बनवारी लाल गिरफ्तार हो गए। बनवारी लाल ने काकोरी ट्रेन डकैती में हिस्सा लिया था। पुलिस अपने तौर तरीकों से बनवारी लाल के दिल में गलत फहमियां पैदा करने और उसे पार्डन का झांसा देकर डिगाने में कामयाब हो गई। फिर भी बनवारी लाल पार्डन मिलने के बारे में पूरी तरह मुतमईन नहीं थे।
1: आप कन्फेशन रिकॉर्ड कराना चाहते हैं?
2: जी हाँ, क्योंकि मुझे बताया गया है वादा माफी पाने के लिए मुझे सबसे पहले आपके सामने अपना इकबाले जुर्म दर्ज कराना पड़ेगा।
1: सही है। कुछ दिन पहले ही तो आपके एक साथी मिस्टर बनारसी दास खासा लंबा चौड़ा इकबालिया बयान दर्ज करा गए हैं। आप भी करा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात। जाहिर है आप भी बिना किसी जोर दबाव या लालच के अपनी मर्जी से इकबाले जुर्म कर रहे हैं।
2: अब आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरा ताल्लुक है, इस केस में सजा से माफी पाने की खातिर ही मैं ये बयान दे रहा हूं।
1: वेरी वेल, तसद्दुक हुसैन साहब, अच्छा है आप मौजूद हैं। इन्हें इत्मीनान करा दीजिए।
2: जी हाँ, मुझे इत्मीनान करना भी है। मैं खान बहादुर जैसे अफसर से आप सरीखे मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पूरी तरह मुतमईन हो जाना चाहता हूँ कि कन्फेशन रिकॉर्ड कराने के पीछे मेरी मंशा और सजा माफी की शर्त को पुलिस और गवर्नमेंट ने मान लिया है।
1: कहिए जनाब, पार्डन मिलने की शर्त पर ही ये हजरत कन्फेस करेंगे, बता दीजिए ने?
3: ये वादा तो हम कर ही चुके हैं, इन्हें वादा माफी जरूर मिलेगी।
2: एक बात और, मुझे ये भी बताया गया है पार्डन अगर दफा 337 या 494 जाब्ता फौजदारी में दी जाती है तो वो एक तरह से माफी की पक्की गारंटी होती है।
3: हाँ जरूर, आपको दफा 494 में ही पार्डन दी जाएगी।
2: देखिए हुजूर, मैं कानून ज्यादा नहीं जानता, अलबत्ता इतनी सी मालूमात कर पाया हूँ कि दफा 494 में भी एक सब पैरा ए होता है और दूसरा सब पैरा बी, और दोनों में बहुत फर्क होता है। अब आप ये साफ कर दीजिए कि मुझे किस ज़ेर दफा पार्डन दी जा रही है और क्या वो मेरी सजा माफी की पक्की गारंटी होगी।
1: देखिए, कानूनी सलाह तो बेहतर होता आप अपने वकील से लेते, इस स्टेज पर कोई भी सलाह दे पाना मेरे लिए नामुमकिन। वैसे ऑफ द रिकॉर्ड मैं यही कह सकता हूं कि दफाओं की बारीकियों में मत उलझिए, पार्डन मिल रही है तो ये मौका मत गंवाइए, आपको फायदा ही होगा।
2: ठीक है, आप मजिस्ट्रेट हैं और मुझे आप पर पूरा पूरा एतमाद है, मेरा कन्फेशन दर्ज कर लीजिए। मिस्टर अनुद्दीन, बनवारी लाल ने तो गजब का बयान दे डाला। कोर्ट में अगर वो ठिका रहा तो इस एक गवाह के बयान पर ही आधे से ज्यादा रिवोल्यूशनरीज फांसी पर लटकते नजर आएंगे।
1: बेशक बेशक, वैसे बयान तो इसके पहले बनारसी लाल ने भी दिया था, लेकिन इस शख्स बनवारी लाल के बयान की बात ही और है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बड़ा कीमती बयान है, इसे जाया नहीं होना चाहिए।
3: तो सर आप ही बताइए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं?
1: इंडिपेंडेंट विटनेसेस तैयार रखिए जो कोर्ट में बनवारी लाल के बयान को सपोर्ट कर सके।
2: बट तैयार कहां से रखेंगे? ट्रेन रॉबरी को 15 दिन से ज्यादा बीत गया, अब तक एक भी ऐसा आई विटनेस नहीं मिला हमारे ऑफिसर्स को जो हमारे मतलब का हो,
1: सिवा गार्ड जगन्नाथ प्रसाद या डॉक्टर गुप्ता के। इन दोनों ने भी बमुश्किल एक एक मुलजिम की शक्ल देखना बतलाया है। अच्छा एक बात तो बतलाइए, वो जो बयानात रेलवे पुलिस ने लिए थे,
2: फॉरगेट इट, भूल जाइए उन्हें, वरना अपना पूरा केस ही बैठ जाएगा। जानते हैं उनमें से दो गवाह अहमद अली के पोस्टमार्टम के हैं, और पोस्टमार्टम का मतलब है मर्डर का चार्ज ही गायब। हमें केस बनाना है डेकोइटी विथ मर्डर का, और अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आड़े आ गई तो मामूली से लूट या डकैती का केस बनकर रह जाएगा। नो नो नो, मुझे तो वो गवाह चाहिए जो बिस्मिल को इम्प्लिकेट करे, अशफाक को खड़े, सान्याल और चटर्जी को खड़े, वरना क्या फायदा?
1: समझा समझा, तभी आपने रेलवे पुलिस की सारी इंक्वायरी गायब करवा दी।
2: एक वही क्या, पिछली तीनों डकैतियों के रिकॉर्ड मई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऐसे डफन खड़ाए हैं कि किसी को खानोकान खबर नहीं। अब तो आप नई लाइन ऑफ एक्शन बनाइए।
1: तो इसके लिए बनवारी लाल के स्टेटमेंट पर ही लाइन बनाई जानी चाहिए। उसके बयान के मुताबिक ही पॉइंट वाइज गवाह इकट्ठे कीजिए। मसलन ट्रेन रॉबरी के ऐसे गवाह लाइए जिन्होंने बिस्मिल वगैरह को गोलियां चलाते देखा हो, अशफाक उल्ला को आयरन बॉक्स तोड़ते देखा हो।
4: ऐसी गवाही तो उन मुसाफिरों में से ही कोई दे सकता है।
1: अमा ये जरूरी नहीं है, ट्रेन में मुसाफिरों के अलावा और भी कई लोग सफर करते हैं। भिखारी, फकीर, साधु, बैरागी, छोटी छोटी चीजें बेचने वाले, चाय वाले, चने मूंगफली वाले, सोडा लेमन बेचने वाले, इस तरह के लोगों को भी तो ट्राई कीजिए।
2: वेरी गुड सजेशन, वाओ वेरी गुड सजेशन। इसी तरह के लोगों में हमें पक्के गवाह मिल सकते हैं।
4: ठीक है सर, उस ट्रेन में ऐसे जो लोग भी मौजूद थे उनका फौरन पता लगाता हूँ।
1: अम्मा आप हमारा इशारा नहीं समझे। मियां तसद्दुक हुसैन साहब आप ही समझा दीजिए ने।
3: बात दरअसल ये है कि इस तरह के लोगों में कुछ ऐसे चतुर चालाक लोग देखिए जो कोर्ट में टिके रह सके, जम कर बयान दे।
1: और ये कतई जरूरी नहीं कि वो उस रात उसी ट्रेन में मौजूद रहे हों। समझ रहे हैं आप?
4: जी समझा, मतलब उनको
3: सीधा हमारे पास लाइए, बयान भी सिखा देंगे उन्हें
1: और शनाख्तियां भी करवा देंगे।
0: और इस तरह रेलवे पुलिस की तफ्तीश, उस दौरान दर्ज गवाहों के बयानात, अहमद अली की लाश का पंचनामा, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह वगैरह, सब जाने किस गड्ढे में दफन कर दी गई। और नए सिरे से सोडा वेंडर अब्दुल वदूद और दूसरे फर्जी गवाह जुटाने की कवायद चल पड़ी।

0: अभी आप आजादी की मुकदमे श्रृंखला में काकोरी कांड पर केंद्रित कार्यक्रम की दूसरी कड़ी सुन रहे थे। प्रस्तुति सुधा अनुपम। ये कार्यक्रम रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किया गया।
1: संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है

नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आजादी दिलाई। रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर। मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार आदाब, मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद।
3: दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों को नाज़ मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी। प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
2: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
3: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन। जो

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। कार्यक्रम सुनो कहानी लेकर मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र भारती, और आज हमने चुनी है कहानी मुक्तिधन। तो आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी मुक्तिधन। भारतवर्ष में जितने व्यवसाय हैं, उन सब में लेन देन का व्यवसाय सबसे ज्यादा लाभदायक है। आमतौर पर सूद की दर 25 रुपए सैकड़ा सालाना है। प्रचुर स्थावर या जंगम संपत्ति पर 12 रुपए सैकड़े सालाना सूद लिया जाता है। इससे कम ब्याज पर रुपया मिलना असंभव है। बहुत कम ऐसे व्यवसाय हैं जिसमें 15 रुपए सैकड़े से अधिक लाभ हो, और वो भी बिना किसी झंझट के। उस पर नजराने की रकम अलग, लिखाई दलाली अलग, अदालत का खर्चा अलग, ये सब रकमें भी किसी न किसी तरह महाजन की ही जेब में जाती हैं। यही कारण है कि यहाँ लेन देन का धंधा इतनी तरक्की पर है। वकील, डॉक्टर, सरकारी कर्मचारी, जमींदार, कोई भी हो जिसके पास कुछ फालतू धन हो, वो ये व्यवसाय कर सकता है। अपनी पूंजी के सदुपयोग का ये सर्वोत्तम साधन है। लाला दाऊदयाल इसी श्रेणी के महाजन थे। वो कचहरी में मुक्तारगिरी करते थे, और जो कुछ बचत होती थी उसे 25-30 रुपए सैकड़ा वार्षिक ब्याज पर उठा देते थे। उनका व्यवहार अधिकतर निम्न श्रेणी के मनुष्यों से होता था। उच्च वर्ण वालों से वो चौकन्ने रहते थे। उनका कहना था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और कायस्थ को रुपए देने से कहीं अच्छा है कि रुपया कुएं में डाल दिया जाए। लेते समय तो उनके पास बहुत संपत्ति होती है, लेकिन रुपए हाथ में आते ही वो सारी संपत्ति गायब हो जाती है। पत्नी, पुत्र या भाई का उसमें अधिकार हो जाता है, और उस संपत्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। इनकी कानूनी व्यवस्थाओं के सामने बड़े बड़े नीतिशास्त्र विद्वान भी मुगी खाते थे। लाला दाऊदयाल एक दिन कचहरी से घर आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक विचित्र घटना देखी। एक मुस्लिम अपनी गाय बेच रहा था, और कई आदमी उसे घेर के खड़े थे। कोई उसके हाथ में रुपए रख देता, कोई उसके हाथ से गाय की पगहिया छीन लेता था। किंतु वो गरीब एक बार उन ग्राहकों के मुंह की ओर देखता था, कुछ सोचकर पगहिया को और भी मजबूती से पकड़ लेता। गऊ मोहनी रूप थी, छोटी सी गर्दन, भारी पुट्ठे और दूध से भरे थन। पास ही एक सुंदर बलिष्ठ बछड़ा गऊ की गर्दन से लगा हुआ खड़ा था। वो व्यक्ति क्षुब्ध और दुखी दिख रहा था। करुण नेत्रों से गऊ को देखता और दिल महसूस कर रह जाता। दाऊदयाल गऊ को देखकर रीझ गए और पूछ बैठे, क्यों जी, ये गऊ बेचते हो? क्या नाम है तुम्हारा? उस मुस्लिम युवक ने दाऊदयाल को देखा तो खुश होकर उनके समीप चला गया। हाँ हुजूर, बेचता हूँ। कहाँ से लाए हो और तुम्हारा नाम क्या है? दाऊदयाल ने पूछा। तब उस मुस्लिम युवक ने अपना नाम बताया। नाम तो रहमान है, और मैं पचोली में रहता हूँ। दूध देती है तुम्हारी गाय? दाऊदयाल ने पूछा। हाँ हुजूर, एक बेला में 3 सेर दोह लीजिए। अभी दूसरी ही तो बेत है, इतनी सीधी है कि बच्चा भी दोहले। बच्चे पैर के पास खेलते हैं, क्या मजाल कि सिर भी हिला दे। दाऊदयाल ने पूछा, कोई तुम्हें यहाँ पहचानता है? मुख्तार साहब को शुबा हुआ कि कहीं चोरी का माल तो ना हो। तब उस युवक ने जवाब दिया, नहीं हुजूर, गरीब आदमी हूँ, मेरी किसी से जान पहचान नहीं। क्या दाम मांगते हो? दाऊदयाल ने पूछ लिया। रहमान ने 50 रुपए बतलाए। मुख्तार साहब को 30 रुपए का माल जच गया। कुछ देर तक दोनों ओर से मोल भाव होता रहा। एक को रुपयों की गरज थी और दूसरे को गऊ की चाह। सौदा पटने में कोई कठिनाई नहीं हुई, और 35 रुपए पर सौदा आखिरकार तय हो गया। रहमान ने सौदा तो चुका दिया, पर अब भी वो मोह के बंधन में पड़ा था। कुछ देर तक सोच में डूबा रहा, फिर गऊ को मंद गति से दाऊदयाल के पीछे पीछे ले चला। तब एक आदमी ने कहा, अरे हम 36 रुपए दे रहे थे, हमारे साथ चलो। तब रहमान ने कहा, नहीं देते तुम्हें, क्या कुछ जबरदस्ती है? तब दूसरे ने कहा, हमसे 40 रुपए ले लो,
अब तो खुश हो? ये कहकर उसने रहमान के हाथ से गाय को लेना चाहा, मगर रहमान ने हामी नहीं भरी। आखिर उन सब ने निराश होकर अपनी अपनी राह ले ली। रहमान जब जरा दूर निकल गया तो दाऊ दयाल से बोला, हुजूर आप हिंदू हैं, इसे लेकर आप पालेंगे, इसकी सेवा करेंगे, और ये बाकी सब कसाई हैं। इनके हाथ में 50 रुपए में भी नहीं बेचता मैं इसे। आप बड़े मौके में आ गए, नहीं तो ये सब जबरदस्ती से गऊ को छीन ले जाते। बड़ी विपत में पड़ गया हूँ सरकार, तब ये गाय बेचने निकला हूँ, नहीं तो इस घर की लक्ष्मी को मैं कभी नहीं बेचता। इसे अपने हाथों से पाला है मैंने, कैसे बेच दूं कसाईयों के हाथ? सरकार इसे जितनी ही खली देंगे उतना ही ये दूध देगी, और भैंस का दूध भी इतना मीठा और गाढ़ा नहीं होगा हुजूर। एक अरज और है, अपने चरवाहे को डांट देना, इसे मारे ना। दाऊ दयाल ने चकित होकर रहमान की ओर देखा। इस श्रेणी के मनुष्य में भी इतना सौजन्य? यहाँ तो बड़े बड़े तिलक त्रिपुंडधारी महात्मा कसाईयों के हाथ गऊएं बेचते हैं, एक पैसे का घाटा भी नहीं उठाना चाहते वो तो, और ये गरीब 5 रुपए का घाटा सहकर मेरे हाथ गऊ बेच रहा है कि किसी कसाई के हाथ में न पड़े। वाह, गरीबों में भी इतनी समझ है। उन्होंने घर आकर रहमान को रुपए दे दिए। रहमान ने रुपए गांठ में बांधे, एक बार फिर गऊ को प्रेम भरी आंखों से देखा और दाऊ दयाल को सलाम करके चला गया। रहमान एक गरीब किसान था, और गरीब के तो सभी दुश्मन होते हैं। जमींदार ने इजाफा लगान का दावा दायर किया, उसी की जवाबदेही करने के लिए रुपयों की जरूरत थी। घर में बैलों के सिवा और कोई संपत्ति नहीं थी। वो इस गऊ को प्राणों से भी प्रिय समझता था, और उपाय नहीं था, इसलिए विवश होकर गाय बेचनी पड़ी। पचौरी में मुस्लिम कई परिवार थे। अब की कई साल के बाद हज का रास्ता खुला था। पाश्चात्य महासमर के दिनों में राह बंद थी। गांव के कितने ही स्त्री पुरुष हज करने चले थे। रहमान की बूढ़ी माँ भी हज के लिए तैयार हो गई, और उसने रहमान से कहा, बेटा इतना सबाब करो, बस मेरे दिल में यही एक अरमान बाकी है। इस अरमान के लिए हुए क्यों दुनिया से जाऊं? खुदा तुमको फल देगा। मातृभक्ति तो वैसे भी ग्रामीणों का विशिष्ट गुण होता है। रहमान के पास इतने रुपए कहाँ थे, और माता की आज्ञा भी नहीं टाल सकता था। सोचने लगा, किसी से उधार ले लूं, कुछ अब की ईख पेर कर दे दूंगा, कुछ अगले साल चुका दूंगा। अल्लाह के फजल से ईख ऐसी हुई कि कभी ना हुई थी। ये माँ की दुआ का फल था, मगर किससे लूं? कम से कम 200 रुपए तो हो, तब काम बनेगा। उसने सारे उपाय सोच लिए। जब उसका बस नहीं चला तो वो दाऊ दयाल के पास चला गया कर्ज लेने। दाऊ दयाल ने देखते ही बोला, तुम्ही ने तो मेरे हाथ गऊ बेची थी ना? हाँ हुजूर, बेची थी, रहमान ने जवाब दिया। रुपए तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मैं वादे पर रुपए लेता हूँ। अगर वादा पूरा ना किया तो तुम जानो मैं जरा भी रियायत नहीं करूंगा। बताओ कब दोगे? रहमान ने मन में हिसाब लगाया और बोला, सरकार 2 साल की मियाद रख लें। दाऊ दयाल ने कहा, अगर 2 साल में ना दोगे तो ब्याज की दर 35 रुपए सैकड़ा हो जाएगी। तुम्हारे साथ इतनी मुरव्वत करूंगा कि नालिश नहीं करूंगा, बस। रहमान ने कहा, जो चाहे कीजिए हुजूर, आपके ही हाथ में हूँ। रहमान को 200 रुपए के 180 रुपए मिले। कुछ लिखाई कट गई, कुछ नजराना निकल गया, कुछ दलाली में आ गया। घर आया तो थोड़ा सा गुड़ रखा था, उसे बेचा और स्त्री को समझा बुझा कर माँ के साथ हज को चला गया। मियाद

माँ ने बेटे को एक बार वात्सल्य से देखा, आशीर्वाद दिया और परलोक से धार गई। रहमान अब तक गर्दन तक पानी में था और अब पानी सिर पर आ गया। इस वक्त पड़ोसियों से कुछ उधार लेकर दफन कफन का प्रबंध किया, किंतु मृत आत्मा की शांति और परितोष के लिए जकात और फातिहे की जरूरत थी। कब्र बनवानी जरूरी थी, बिरादरी का खाना, गरीबों को खैरात, कुरान की तलावत, ऐसे कितने ही संस्कार थे जो जरूरी थे। पैसों की परेशानी थी, उसको मालूम था कि लाला दाऊ दयाल पैसे नहीं देंगे, लेकिन फिर भी वो दाऊ दयाल के पास चला गया। रास्ते में एक एक कदम उसके लिए मुश्किल था। लाला दाऊ दयाल कचहरी से आकर बैठे ही थे और वो नौकरों पर बिगड़ रहे थे। लाला दाऊ दयाल ने रहमान को देखा तो रुष्ट होकर बोले, क्यों आए हो तुम यहाँ? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? इस वक्त मुझे बातचीत करने की फुर्सत नहीं है। रहमान कुछ नहीं बोला। वो डांट सुनकर इतना हताश हुआ कि उल्टे पैरों लौट पड़ा। लेकिन दाऊ दयाल को कुछ दया आ गई। जब रहमान बरामदे के नीचे उतर गया तो उसे दोबारा बुला लिया और नम्र होकर बोले, कैसे आए थे? क्या काम था? तब रहमान ने कहा, नहीं सरकार, बस सलाम करने आया था। दाऊ दयाल ने कहा, एक कहावत है, सलामे रोस्ताई बेगरज नेस्त। किसान बिना मतलब के सलाम नहीं करता, क्या मतलब है कहो। अब तो रहमान फूट फूट कर रोने लगा। दाऊ दयाल ने अटकल से समझ लिया कि इसकी माँ अब नहीं रही। क्यों रहमान, तुम्हारी माँ सिधार गई? रहमान ने हाँ कहा। हुजूर, आज तीसरा दिन है। अरे रे रे रे, ना रो भैया, सब्र करो। ईश्वर को जो मंजूर था वो हो गया। ऐसी मौत पर गम नहीं करना चाहिए। तुम्हारे हाथों उनकी मिट्टी ठिकाने लग गई, और अब क्या चाहिए? रहमान ने भी धीरे से कहा, हुजूर, कुछ अरज करने आया हूँ, हिम्मत नहीं है। पिछला भी पड़ा है, अब किस मुँह से मांगूं? लेकिन अल्लाह जानता है कि कहीं से एक पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है, और काम ऐसा है कि ना करूँगा तो जिंदगी भर पछताऊँगा। आगे आप मालिक हैं, कुछ समझ कर दे दीजिए, कुएं में डाल रहा हूँ। जिंदा रहूँगा तो एक एक कौड़ी मैं सूद के अदा कर दूँगा, मगर हुजूर इस घड़ी मना ना कीजिए। रहमान लगातार रो रहा था। दाऊ दयाल को दया आ गई। ओ भाई, 300 तो हो गए, 200 फिर मांगते हो, 2 साल में कोई 700 रुपए हो जाएंगे, खबर है इसकी? रहमान ने कहा, गरीब परवर, अल्लाह दे तो बीघे ईग में 500 आ सकते हैं। अल्लाह ने चाहा तो मियाद के अंदर आपकी कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा। दाऊ दयाल ने 200 रुपए फिर दे दिए। जो लोग उनके व्यवहार से परिचित थे उन्हें उनकी इस रियायत पर बड़ा आश्चर्य था। खेती की हालत अनाथ बालक की तरह होती है। जल और वायु अनुकूल हुई तो अनाज के ढेर लग जाते हैं, लेकिन अगर जरा भी नुकसान हुआ तो सब बिगड़ जाता है। रहमान ने कलेजा तोड़कर मेहनत की, दिन को दिन, रात को रात नहीं समझा। बीवी बच्चे दिलो जान से निपट गए। ऐसी ईख लगी कि हाथी घुसे तो समा जाए। सारा गांव दांतों तले उंगली दबाता था। सब उसकी ईख देखकर बहुत खुश होते थे, मगर भाग्य के लिखे को कौन मिटा सकता है। अगहन का महीना था। रहमान खेत की मेड़ पर बैठा रखवाली कर रहा था। ओढ़ने के लिए केवल एक पुरानी चादर थी, इसलिए ईख के पत्ते जला लिए थे। तभी हवा का झोंका आया, जलते हुए पत्ते उड़कर खेत में जा पहुंच गए और देखते ही देखते आग लग गई। गांव के लोग आग बुझाने दौड़े, मगर आग की लपटें टूटते तारों की तरह एक के ऊपर एक गिर रही थीं। सारे उपाय व्यर्थ हो गए। सारा खेत जलकर राख हो गया। अब तो रहमान का दिल बैठ गया, हाथ पांव ढीले हो गए। परोसी हुई थाली सामने से छिन गई। उसे तो चिंता सिर्फ दाऊ दयाल की थी कि दाऊ दयाल का आदमी आएगा तो वो क्या बोलेगा। अब तो इज्जत खुदा के हाथ में है। सुबह का वक्त था। वो अपने खेत की मेड़ पर खड़ा अपनी तबाही देख रहा था और देखा कि दाऊ दयाल का चपरासी कंधे पर लठ रखे आ रहा है। प्राण सूख गए। बड़ी मुश्किल से अपने आप को उसने बचा पाया, लेकिन छिपता तो कहाँ छिपता। चपरासी ने समीप आकर कहा, रुपए लेकर देना नहीं चाहते? मियाद कल गुजर गई,
जानते हो ना सरकार की बात, एक दिन की भी देरी हुई तो नालिश ठोक देंगे, बेभाव की पड़ेगी तुम्हें। तब रहमान ने कांपते हुए कहा, यहाँ का हाल तो देख रहे हो ना भैया। तब चपरासी ने कहा, यहाँ हाल हवाल सुनने का काम नहीं है, ये चकमे किसी और को देना, 700 रुपए देना है तुम्हें। भैया सारी ईख जल गई, अल्लाह जानता है कि अब की कौड़ी कौड़ी बेबाक कर देता। तब चपरासी ने कहा, मैं ये कुछ नहीं जानता, तुम्हारी ईख का किसी ने ठेका नहीं लिया, अभी चलो सरकार बुला रहे हैं। और चपरासी ने उसका हाथ पकड़ा और घसीटते हुए दाऊ दयाल के घर ले गया। गरीब को घर में जाकर पगड़ी बांधने तक का मौका नहीं दिया गया। 5 कोस का रास्ता कट गया और रहमान ने एक बार भी सिर नहीं उठाया। बस वह अपने मुंह से कह रहा था, या अली मुश्किल कुशा, उसके मुंह से ही निकल रहा था। उसे अब इस नाम का भरोसा था, यही जब हिम्मत को संभाले हुए था, नहीं तो शायद वो गिर जाता या बेहोश हो जाता। दाऊ दयाल द्वार पर टहल रहे थे, रहमान जाकर उनके कदमों पे गिर गया। खुदाबंद बड़ी विपत्ति है, अल्लाह जानता है मैं कहीं का नहीं हूँ। दाऊ दयाल ने कहा, क्या सब ईख जल गई? हुजूर सुन तो चुके हैं आप, तो अब मैं क्या करूं, नालिश कर दूं? दाऊ दयाल ने कठोर स्वर में कहा। तब रहमान ने कहा, हुजूर मालिक है, जो चाहे करे, मैं तो इतना जानता हूँ हुजूर के रुपए सिर पर हैं और मुझे कौड़ी कौड़ी देनी है, अपनी सोची नहीं होती, 2 बार वादे किए थे, दोनों बार झूठा हो गया, अब जो कुछ भी मिलेगा लाकर हुजूर के कदमों पर रख दूंगा, मेहनत मजूरी से पेट और तन काट कर जिस तरह हो सकेगा हुजूर आपके पैसे दूंगा। दाऊ दयाल मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने कहा, तुम्हारे मन में इस वक्त सबसे बड़ी कौन सी आरजू है बताओ। हुजूर बस यही आरजू है कि आपके रुपए अदा हो जाएं। अच्छा तो समझ लो कि मेरे रुपए अदा हो गए, दाऊ दयाल ने कहा। अरे हुजूर ये कैसे समझ लूं, यहां ना दूंगा तो वहां तो देने पड़ेंगे, रहमान ने आश्चर्य से कहा। नहीं रहमान अब इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आजमाता था, दाऊ दयाल ने कहा। सरकार ऐसा ना कहें, इतना बोझ सिर पर लेकर नहीं मर सकता मैं, रहमान ने हाथ जोड़ लिए। तब दाऊ दयाल ने कहा, कैसा जी, मेरा तुम्हारे ऊपर कुछ आता ही नहीं, अगर कुछ आता भी हो तो मैंने माफ कर दिया, यहां भी और वहां भी, अब तुम मेरे एक भी पैसे के देनदार नहीं हो, असल में मैंने तुमसे जो कर्ज लिया था वही अदा कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम मेरे कर्जदार नहीं हो। तुम्हारी गऊ अब तक मेरे पास है, उसने मुझे कम से कम 800 रुपए का दूध दिया है, 2 बछड़े नफे में अलग मिले, अगर तुमने ये गऊ कसाई को दे दी होती तो मुझे इतना बड़ा फायदा कैसे होता बताओ भला, तुमने उस वक्त 5 रुपए का नुकसान उठाकर गऊ मेरे हाथ बेची थी, वो शराफत मुझे याद है, उस एहसान का बदला चुकाना मेरी ताकत से बाहर है। जब तुम इतने गरीब और नादान होकर एक गऊ की जान के लिए 5 रुपए का नुकसान उठा सकते हो रहमान, तो मैं तुम्हारी 100 गुनी हैसियत रखकर अगर 400-500 रुपए माफ कर देता हूँ तो कोई बड़ा काम नहीं भैया। तुमने भले ही जानकर मेरे ऊपर कोई एहसान ना किया हो, पर असल में किया है, हम तुम दोनों अब बराबर हैं, तुम्हारे दोनों बछड़े मेरे यहाँ हैं, जी चाहे लेते जाओ, तुम्हारी खेती में काम आएंगे, तुम सच्चे और शरीफ आदमी हो, मैं तुम्हारी मदद करने को हमेशा तैयार रहूंगा, इस वक्त भी तुम्हें रुपयों की जरूरत हो तो जितने चाहे उतने ले लो। रहमान को ऐसा मालूम हुआ कि उसके सामने कोई फरिश्ता बैठा हुआ है, मनुष्य उदार हो तो फरिश्ता है और निम्न हो जाए तो शैतान, ये दोनों मानवीय वृत्तियों के ही नाम हैं। रहमान के मुंह से धन्यवाद के शब्द भी ना निकल पड़े, बहुत मुश्किल से उसने आंसुओं को रोका, रुंधे हुए स्वर में कहा, हुजूर इस नेकी का बदला खुदा आपको देगा, मैं तो आज से का गुलाम समझूंगा। दाऊ दयाल ने रहमान को उठा लिया और कहा, नहीं जी
तुम मेरे दोस्त हो, रहमान रुंधे स्वर में बोले जा रहा था। नहीं हुजूर, मैं आपका गुलाम। और दाऊदयाल ने रहमान को गले लगा लिया। गुलाम छुटकारा पाने के लिए जो रुपए देता है उसे मुक्ति धन कहते हैं। तुम बहुत पहले ही मुझे मुक्ति धन अदा कर चुके हो, अब भूलकर भी ये शब्द नहीं निकालना दोस्त।

तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

आप, मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों को नाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी प्यार कर ले।

0: प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले, घड़ी दो घड़ी।
1: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
2: संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं,

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: गली में मार फेरे, पास आने को मेरे।
2: मैं हूं सोना महापात्रा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन। जो

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मैं हूं हरिप्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
2: ये दुनिया 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर, मैं हूं कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
3: ये मेरा इंडिया,
2: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद। देश का चैनल, देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है। तो सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।
1: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं मोहन वीणा वादन, जिसे पेश करेंगे मनीष पिंगले और साथी, और उसके बाद सुनिएगा कबीर गायन, जिसके कलाकार होंगे भैरू सिंह चौहान और साथी। तो आइए सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मोहन वीणा वादन, प्रस्तुति मनीष पिंगले और साथियों की।

देखिए हमारी सबकी ये शरीर रूपी चुनरी को सदगुरु ने सराबोर ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान रूपी रंग के माध्यम से लाल लाल कर दीनी है। आगे मोरे सदगुरु जी ने दीनी है ज्ञान जड़ी। पद प्रस्तुत हैं।

0: तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: कुछ याद उन्हें भी कर लो।
2: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जो लौट के घर न आए,
3: संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है।

नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन। जो

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मैं हूं हरि प्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। शाम के 5 बजे ही हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। इस सभा में आप सभी का स्वागत है। शुभ संध्या। आइए सभा की शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि।
3: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 168 से वाचन। ऋषि हैं अगस्त्य मैत्रा वरुणि, देवता हैं मरुद्गण, छंद है जगति और त्रिष्टुप।
4: यज्ञा यज्ञा वह समना तुतुर वणिर धियन धियम वो देवया उ ददिध्वे आवोर्वाचः सुविताय रोदस्योर महे ववृत्यामवसे सुवृक्ति भी। हे मरुद्गण, प्रत्येक यज्ञीय कर्म में आपके मन की अनुकूलता ही कार्य को तत्परता से संपन्न करा लेती है। आपका चिंतन देवत्व की ओर ही उन्मुख होता है। हम आकाश और पृथ्वी की सुस्थिरता तथा संरक्षण की कामना से श्रेष्ठ स्तुतियों द्वारा आपको यहां आवाहित करते हैं। वव्रासो न ये स्वजाः स्वतवस इशम स्वरभिजायन्त धूतयः सहस्रियासो अपाम नोर्मय आसा गावो वंद्यासो नोक्षणः। हे मरुद्गण, आप अपनी सामर्थ्य से अत्यधिक पौष्टिक अन्न की प्राप्ति के लिए स्वयं प्रकट हुए हैं। आप जल की लहरों के समान हजारों लोगों द्वारा प्रशंसित हैं। आप पूज्य गौ आदि पशुधन के समान सदैव हमारे समीप रहें। सोमासो न ये सुतास्तृप्तांशवो हृत्सु पीतासो दुवसो नासते एषा मनसेषु रम्हिणीव रारभे हस्तेषु खादिश्च कृतिश्च समदधे। सोमरस पान करने से जिस प्रकार तृप्ति होती है, उसी प्रकार इन मरुद्गणों के कंधों पर सुशोभित आयुधों का आश्रय प्राप्त कर सेना प्रसन्न एवं निर्भय होती है। इन मरुद्गणों के हाथों में अलंकृत तलवारें भी सुशोभित हैं। अवस्वयुक्ता दिव आवृथा ययुर्मर्त्याः केशया चोदतः त्मना अरेण वस्तु विजाता अचुच्यवुर दृढ़हानि चिन्मरुतो भ्राज दृष्टयः। अपनी ही इच्छा से कर्मरत ये मरुद्गण दिव्य लोक से अनायासी अंतरिक्ष में आए हैं। हे अविनाशी मरुतो, आप अपनी शक्तियों से प्रेरणा प्रदान करें। प्रखर एवं तेजस्वी शक्तियों से हथियारों को धारण करने वाले ये वीर मरुद्गण प्रबलतम शत्रुओं को भी परास्त कर देते हैं। को वोंतर मरुत रिष्टि विद्युतो रेजतित मना हन्वेव जिह्वया धनवच्युत इशाम न यामनि पुरुप्रैषा अहन्यो नैतशः। हे आयुधों से सुशोभित वीर मरुतों, आप अन्न वृद्धि के लिए विशेष प्रेरणाएं प्रदान करते हैं। धनुष से छोड़े गए बाण के समान, प्रशिक्षित अश्वों के समान तथा जीभ के साथ स्वतः चलायमान हनु अर्थात ठुड्ढी की तरह कौन आपको गतिशील करता है? क्व स्विदस्य रजसो महस्परम क्वावरम मरुतो यस्मिन् नायय यच्यावायथ विथुरेव संहितम् व्यद्रिणा पतथ त्वे शमर्णवम्। हे वीर मरुद्गण, आप जिस महान तथा असीम अंतरिक्ष से आते हैं उसका आदि अंत कौन सा है? जब आप सघन बादलों को हिलाते हैं उस समय वज्र प्रहार से आश्रयहीन होने के समान वे तेजस्वी बादल जल वृष्टि करने लगते हैं। सातिर न वोमवती स्वरवती त्वेषा विपाका मरुतः पिपिष्वती भद्रा वो रातिहि प्रणतो न दक्षिणा पृथुज्रयी असुर्येव जंजति। हे वीर मरुद्गण, आपके अनुदानों की तरह ही आपकी संपदा भी है। वह सामर्थ्यवान सुखप्रद तेज संपन्न विशिष्ट फलदायक शत्रुदल संहारक और कल्याणकारी है। आपकी कृपा दक्षिणा के समान ही विजय प्रदान करने वाली तथा दैवी शक्ति के समान शत्रु को परास्त करने वाली है। प्रतिष्ठो भन्ति सिंधवः पविभ्यो यदभ्रियां वाच मुदीरयन्ति अवस्मयन्त विद्युतः पृथिव्यां यदि घृतं मरुतः प्रश्नुवन्ति। जब इन वीर मरुद्गणों के रथ के पहियों से मेघों के गर्जन के समान प्रतिध्वनि सुनाई देती है तब नदियों के जल प्रवाह में भारी खलबली मच जाती है। वीर मरुद्गण जब जल वृष्टि करते हैं तब पृथ्वी पर विद्युत तरंगे मानो हास्य कर रही प्रतीत होती हैं। असूत प्रश्निर महते रणाय त्वेष मयासाम मरुता मनीकम ते सप्सरासो जनयन्ताभ्व मादित्स्व धामिशिराम परियपश्यन। मातृभूमि की प्रेरणा से महासंग्राम के लिए गतिशील वीर मरुतों की प्रखर तेजस्वी सेना अस्तित्व में आई। संगठित होकर शत्रुओं पर प्रहार करने वाले इन वीरों ने संग्राम में प्रखर तेजस्विता का परिचय दिया। उसके बाद सभी ने अन्न उत्पादक एवं धारक क्षमताओं को भी चारों ओर फैले हुए अनुभव किया। एषवः स्तोमो मरुत इयम् गीर्मान्दार्यस्य मान्यस्य कारोः एषा यासीष्ट तन्वे वयाम् विद्यामेषम् व्रजनम् जीरदानुम्। हे वीर मरुतो, सम्माननीय कवियों द्वारा आपको प्रसन्न करने के लिए उनके द्वारा की गई काव्य रचना आपके निमित्त समर्पित है। ये स्तुतियां आपको परिपुष्ट बनाएं, हमें भी अन्न बल तथा विजय प्राप्त कराएं।
3: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 168 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम पुत्रपाठी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

कुछ नेकियां और कुछ अच्छाइयां हमें अपने जीवन में ऐसी भी करनी चाहिए जिनका ईश्वर के सिवा कोई और गवाह ना हो।

संध्या केवल दिन का अंत नहीं बल्कि मन की शांति और आत्मा के जागरण का पावन क्षण है। ये वो बेला है जब थका हुआ मन प्रभु के चरणों में विश्राम पाता है, चिंताएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: और हमारा आज का ये भक्ति संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है बटुकेश्वर दत्त पर केंद्रित कार्यक्रम वतन का राग।

क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त का जन्म 18 नवंबर 1910 को बंगाली कायस्थ परिवार में ग्राम औरी जिला नानी बेदवान बंगाल में हुआ था। उनके पिता गोष्ठ बिहारी दत्त कानपुर में नौकरी करते थे। बटुकेश्वर ने 1925 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसी दौरान उनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया। इस बात का उन्हें गहरा आघात लगा। उन्हीं दिनों वे सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के संपर्क में आए और क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य बन गए। सुखदेव और राजगुरु के साथ भी उन्होंने कई जगहों पर काम किया। इसी दौरान उन्होंने बम बनाना भी सीखा। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली स्थित केंद्रीय असेंबली में, जिसे वर्तमान का संसद भवन कहा जाता है, भगत सिंह के साथ बम विस्फोट करके उन्होंने ब्रिटिश राज्य के आधिपत्य का विरोध किया। दरअसल बम विस्फोट बिना किसी को हानि पहुंचाए असेंबली में पर्चे फेंक कर उनके माध्यम से अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए किया गया था। उस दिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को दबाने के लिए ब्रिटिश शासन की ओर से पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाया गया था, जो इन लोगों के विरोध के कारण एक वोट से पारित नहीं हो सका। इस घटना के बाद बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को बंदी बना लिया गया। 12 जून 1929 को इन दोनों को आजीवन कारावास का दंड सुनाया गया। सजा सुनाने के उपरांत इनको लाहौर फोर्ट कारागृह में भेजा गया। इसी दौरान साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन करते हुए लाहौर में लाला लाजपत राय को अंग्रेजों के आदेश पर अंग्रेजी राज के सिपाहियों द्वारा इतना पीटा गया कि उनकी मृत्यु हो गई। इसके लिए उत्तरदायी पुलिस अधिकारी को मारकर लाला लाजपत राय की मृत्यु का प्रतिशोध लेने का निर्णय क्रांतिकारियों ने लिया था। इस कार्यवाही को अंजाम देने के परिणाम स्वरूप लाहौर षड्यंत्र का अभियोग चलाया गया और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उन्हें काला पानी भेज दिया गया।

कारागृह में सजा के दौरान बटुकेश्वर दत्त ने 1933 और 1937 में ऐतिहासिक भूख हड़ताल की। उन्हें सेल्यूलर कारागृह से 1937 में बांकीपुर केंद्रीय कारागृह पटना भेज दिया गया और 1938 में उन्हें आजाद कर दिया गया। काला पानी से गंभीर बीमारी लेकर लौटे दत्त पुनः बंदी बनाए गए और 4 सालों के बाद 1945 में आजाद किए गए। इसके बाद जीवन यापन के लिए उन्होंने बिस्किट और डबल रोटी का एक छोटा सा कारखाना खोला, परंतु उसमें बहुत नुकसान होने के कारण उसे बंद करना पड़ा। कुछ समय तक उन्होंने टूरिस्ट प्रतिनिधि और बस परिवहन का काम भी किया, लेकिन इसमें भी उन्हें असफलता ही हाथ लगी। 1964 में अचानक व्याधिग्रस्त होने के कारण उन्हें गंभीर स्थिति में पटना के शासकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। पटना मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर मुखोपाध्याय ने दत्त का उपचार शुरू किया, परंतु उनकी स्थिति बिगड़ती गई क्योंकि समय पर उन्हें उपचार नहीं मिल सका था। 22 नवंबर 1964 को उन्हें दिल्ली लाया गया। दिल्ली पहुंचने पर उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मैं उस दिल्ली में जहां मैंने बम फेंका था एक अपाहिज बनकर स्ट्रेचर पर लाया जाऊंगा। उन्हें सफदरजंग चिकित्सालय में भर्ती किया गया। पीठ में असहनीय पीड़ा के उपचार के लिए किए जाने वाले कोबाल्ट ट्रीटमेंट की व्यवस्था केवल एम्स में थी। 23 नवंबर को पहली बार उन्हें कोबाल्ट ट्रीटमेंट दिया गया। इस दौरान पता चला कि दत्त बाबू को कैंसर है और उनके जीवन के चंद दिन ही शेष बचे हैं।

भीषण पीड़ा झेल रहे दत्त अपने मुख पर वो पीड़ा कभी भी नहीं आने देते थे। पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री रामकिशन जब दत्त से मिलने पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि हम आपको कुछ देना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो मांग लीजिए। छल छलाए नेत्र और मंद मुस्कान के साथ दत्त ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी यही अंतिम इच्छा है कि मेरा दाह संस्कार मेरे मित्र भगत सिंह की समाधि के पास किया जाए। लाहौर षड्यंत्र अभियोग के किशोरीलाल अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें उन्होंने पहचाना था। उनकी बिगड़ती स्थिति को देखकर भगत सिंह की मां विद्यावती को पंजाब से सरकार ने कार के द्वारा बुलवाया था। 17 जुलाई को बटुकेश्वर दत्त कोमा में चले गए और 20 जुलाई 1965 की रात 1:50 पर उन्होंने इस संसार से विदा ले ली। उनका अंतिम संस्कार उनकी इच्छा के अनुरूप भारत पाक सीमा के पास हुसैनीवाला में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि के पास किया गया। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। MHz पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम में आपको सुना रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी गुप्त धन।

बाबू हरिदास का ईंटों का पजावा यानी भट्टा शहर से मिला हुआ था। आसपास के देहातों से सैकड़ों स्त्री पुरुष लड़के नित्य आते और पजावे से ईंट सिर पर उठाकर ऊपर कतारों से सजाते। एक आदमी पजावे के पास एक टोकरी में कौड़ियां लिए बैठा रहता था। मजदूरों को ईंटों की संख्या के हिसाब से कौड़ियां बांटता। ईंटें जितनी ही ज्यादा होती उतनी ही ज्यादा कौड़ियां मिलती। इस लोभ में बहुत से मजदूर बूते के बाहर काम करते। वृद्धों और बालकों को ईंट के बोझ में अकड़े हुए देखना बहुत करुणाजनक दृश्य था। कभी कभी बाबू हरिदास स्वयं आकर कौड़ी वाले के पास बैठ जाते और ईंट लादने को प्रोत्साहित करते। ये दृश्य तब और भी दारुण हो जाता था जब ईंटों की कोई असाधारण आवश्यकता पड़ती। उसमें मजूरी दूनी कर दी जाती और मजूर लोग अपनी सामर्थ्य से दूनी ईंटें लेकर चलते। एक एक पग उठाना कठिन हो जाता। उन्हें सिर से पैर तक पसीने में डूबे पजावे की राख चढ़ाए ईंटों का एक पहाड़ सिर पर रखे बोझ से दबे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो लोभ का भूत उन्हें जमीन पर पटक कर उनके सिर पर सवार हो गया है। सबसे करुण दशा एक छोटे लड़के की थी जो सदैव अपनी अवस्था के लड़कों से दुगनी ईंटें उठाता और सारे दिन अविश्रांत परिश्रम और धैर्य के साथ अपने काम में लगा रहता। उसके मुख पर ऐसी दीनता छाई रहती थी। उसका शरीर इतना क्रश और दुर्बल था कि उसे देखकर दया आ जाती थी। और लड़के बनिए की दुकान से गुड़ लाकर खाते और कोई व्यक्तिगत संग्राम में अपनी जिह्वा और बाहू के जौहर दिखाता। लेकिन इस गरीब लड़के को अपने काम से काम था। उसमें ना लड़कपन की चंचलता थी, न शरारत, न खिलंदड़पन। यहां तक कि उसके होठों पर कभी हंसी तक ना आती थी। बाबू हरिदास को उसकी दशा पर दया आती। कभी कभी कौड़ी वाले को इशारा करते कि उस हिसाब से अधिक कौड़ियां दे दो। कभी कभी वे उसे कुछ खाने को भी दे देते। एक दिन उन्होंने उस लड़के को बुलाकर अपने पास बिठाया और उसके समाचार पूछने लगे। ज्ञात हुआ कि उसका घर पास ही के गांव में है। घर में एक वृद्धा माता के सिवाय कोई नहीं है और वृद्धा भी किसी पुराने रोग से ग्रस्त रहती है। घर का सारा भार इसी लड़के के सिर पर था। कोई उसे रोटियां बनाकर देने वाला भी न था। शाम को जाता तो अपने हाथों से रोटियां बनाता और अपनी मां को खिलाता था। जाति का ठाकुर था। किसी समय उसका कुल धन धान्य से संपन्न था। लेन देन होता था और शक्कर का कारखाना चलता था। कुछ जमीन भी थी, किंतु भाइयों की स्पर्धा और विद्वेष ने उसे इतनी हीनावस्था तक पहुंचा दिया था कि अब रोटियों के लाले पड़े थे। लड़के का नाम मगन सिंह था। हरिदास ने पूछा, गांव वाले तुम्हारी कुछ मदद नहीं करते? मगन ने कहा, वाह, उनका वश चले तो मुझे मार डालें। सब समझते हैं कि मेरे घर में रुपए गड़े हैं। हरिदास ने उत्सुकता से पूछा, पुराना घराना है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तुम्हारी मां ने इस विषय में तुमसे कुछ नहीं कहा? मगन बोला, बाबूजी नहीं, एक भी पैसा नहीं। रुपए होते तो अम्मा इतनी तकलीफ क्यों उठाती। बाबू हरिदास मगन सिंह से इतने प्रसन्न हुए कि मजूरों की श्रेणी से उठाकर अपने नौकरों में रख लिया। उसे कौड़ियां बांटने का काम दिया और पजावे में मुंशी जी को ताकीद कर दी कि इसे कुछ पढ़ना लिखना सिखाइए। अनाथ के भाग्य जाग उठे। मगन सिंह बड़ा कर्तव्यशील और चतुर लड़का था। उसे कभी देर ना होती, कभी नागा ना होता। थोड़े ही दिनों में उसने बाबू साहब का विश्वास प्राप्त कर लिया। लिखने पढ़ने में भी कुशल हो गया। बरसात के दिन थे, पजावे में पानी भरा हुआ था, कारोबार बंद था। मगन सिंह 3 दिनों से गैर हाजिर था। हरिदास को चिंता हुई, क्या बात है, कहीं बीमार तो नहीं हो गया, कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई? कई आदमियों से पूछताछ की पर कुछ पता ना चला। 4th दिन पूछते पूछते मगन सिंह के घर पहुंचे। घर क्या था, पुरानी समृद्धि का ध्वंसावशेष मात्र था। उनकी आवाज सुनते ही मगन सिंह बाहर निकल आया। हरिदास ने पूछा, कई दिन से आई नहीं, माता का क्या हाल है? मगन सिंह ने अवरुद्ध कंठ से उत्तर दिया, अम्मा आजकल बहुत बीमार हैं, कहती हैं अब ना बचूंगी। कई बार आपको बुलाने के लिए मुझसे कह चुकी हैं, पर मैं संकोच के मारे आपके पास ना आता था। अब आप सौभाग्य से आ गए हैं तो जरा चलकर उसे देख लीजिए, आपकी लालसा भी पूरी हो जाए। हरिदास भीतर गए। सारा घर भौतिक निस्सारता का परिचायक था। सुर्खी, कंकड़ और ईंटों के ढेर चारों ओर पड़े हुए थे। विनाश का प्रत्यक्ष स्वरूप था। केवल 2 कोठरियां गुजरने लायक थीं। मगन सिंह ने एक कोठरी की ओर उन्हें इशारे से बताया। हरिदास भीतर गए तो देखा
कि वृद्धा एक सड़े हुए काठ के टुकड़े पर पड़ी कराह रही है। उनकी आहट पाते ही आंखें खोली और अनुमान से पहचान गई। बोली, आप आ गए, बड़ी दया की, आपके दर्शनों की बड़ी अभिलाषा थी। मेरा नाथ बालक के नाथ अब आप ही हैं। जैसे आपने अब तक उसकी रक्षा की है, वो निगाह उस पर सदैव बनाए रखिएगा। मेरी विपत्ति के दिन पूरे हो गए, इस मिट्टी को पार लगा दीजिएगा। एक दिन घर में लक्ष्मी का वास था, हदिन आए तो उन्होंने भी आंखें फेर ली। पुरखों ने इसी दिन के लिए कुछ थाती धरती माता को सौंप दी थी। उसका बीजक बड़े यत्न से रखा था, पर बहुत दिन से उसका कहीं पता नहीं। मगन के पिता ने बहुत खोजा पर न पा सके, नहीं तो हमारी इतनी दशा हीन न होती। आज 3 दिन हुए वो मुझे बीजक आप ही आप रद्दी कागजों में मिल गया। तब से उसे छिपा कर रखे हूं, मगन बाहर है। अब मेरे सिरहाने जो संदूक रखी है उसी में वो बीजक है, उसमें सब बातें लिखी हैं, उसी से ठिकाने का भी पता चलेगा। अवसर मिले तो उसे खुदवा डालिए, मगन को दे दीजिएगा। यही कहने के लिए आपको बार बार बुलवाती थी, आपके सिवा मुझे किसी पर विश्वास न था। संसार से धर्म उठ गया, किसकी नियत पर भरोसा किया जाए। हरिदास ने बीजक का समाचार किसी से न कहा, नियत बिगड़ गई, दूध में मक्खी पड़ गई। बीजक से ज्ञात हुआ कि धन उस घर से 500 डग पश्चिम की ओर एक मंदिर के चबूतरे के नीचे है। हरिदास धन को भोगना चाहते थे, पर इस तरह कि किसी को कानो कान खबर ना हो। काम कष्ट साध्य था, नाम पर धब्बा लगने की प्रबल आशंका थी, जो संसार में सबसे बड़ी यंत्रणा है। कितनी घोर निष्ठा थी, जिस अनाथ की रक्षा की, जिसे बच्चे की भांति पाला, उसके साथ विश्वासघात। कई दिनों तक आत्मवेदना की पीड़ा सहते रहे, अंत में कुतर्कों ने विवेक को परास्त कर दिया। मैंने कभी धर्म का परित्याग नहीं किया और ना कभी करूंगा, क्या कोई ऐसा प्राणी भी है जो मनुष्य में एक बार भी विचलित ना हुआ हो? यदि है तो वो मनुष्य नहीं, देवता है। मैं मनुष्य हूं, मुझे देवताओं की पंक्ति में बैठने का दावा नहीं है। मन को समझाना, बच्चे को फुसलाना है। हरिदास सांझ को सैर करने के लिए घर से निकल जाते। जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता तो मंदिर के चबूतरे पर आ बैठते और एक कुदाली से उसे खोदते। दिन में 2-1 बार इधर उधर ताक झांक करते कि कोई चबूतरे के पास खड़ा तो नहीं है। रात की निस्तब्धता में उन्हें अकेले बैठे ईंटों को हटाते उतना ही भय होता था जितना किसी भ्रष्ट वैष्णव को आमिष भोजन से होता है। चबूतरा लंबा चौड़ा था, उसे खोदते 1 महीना लग गया और अभी आधी मंजिल भी तय न हुई। इन दिनों उनकी दशा उस पुरुष की सी थी जो कोई मंत्र जगा रहा हो। चित्त पर चंचलता छाई रहती, आंखों की ज्योति तीव्र हो गई थी, बहुत गुमसुम रहते, मानो ध्यान में हो। किसी से बातचीत न करते, अगर कोई छेड़कर बात करता तो झुंझला पड़ते, पजावे की ओर बहुत कम जाते। विचारशील पुरुष थे, आत्मा बार बार इस कुटिल व्यापार से भागती। निश्चय करते कि अब चबूतरे की ओर न जाऊंगा, पर संध्या होते ही उन पर एक नशा सा छा जाता, बुद्धि विवेक का अपहरण हो जाता। जैसे कुत्ता मार खाकर थोड़ी देर के बाद टुकड़े के लालच में जा बैठता है, वही दशा उनकी थी। यहां तक कि 2रा मास भी व्यतीत हुआ। अमावस की रात थी, हरिदास मलिन हृदय में बैठी कालिमा की भांति चबूतरे पर बैठे हुए थे। आज चबूतरा खुद जाएगा, जरा देर तक और मेहनत करनी पड़ेगी, कोई चिंता नहीं। घर में लोग चिंतित हो रहे होंगे, पर अभी निश्चित हुआ जाता है कि चबूतरे के नीचे क्या है। पत्थर का तहखाना निकल आया तो समझ जाऊंगा कि धन अवश्य होगा, तहखाना ना मिले तो मालूम हो जाएगा कि सब धोखा ही धोखा है। कहीं सचमुच तहखाना ना मिले तो बड़ी दिल लगी हो, मुफ्त में उल्लू बनूं, पर नहीं, कुदाली खटखट बोल रही है। हाँ, पत्थर की चट्टान है, उन्होंने टटोल कर देखा, भ्रम दूर हो गया, चट्टान थी। तहखाना मिल गया, पर हरिदास खुशी से उछले कूदे नहीं। आज वे लौटे तो सिर में दर्द था, समझे थकान है, लेकिन ये थकान नींद से न गई। रात को ही उन्हें जोर से बुखार हो गया, 3 दिन तक ज्वर में पड़े रहे, किसी दवा से फायदा ना हुआ। इसी रुग्णावस्था में हरिदास को बार बार भ्रम होता था, कहीं ये मेरी तृष्णा का दंड तो नहीं है। जी में आता था मगन सिंह को बीजक दे दूं और क्षमा की याचना करूं, पर भंडा फोड़ होने का भय मुंह बंद कर देता था। न जाने ईसा के अनुयायी अपने पादरियों के सम्मुख कैसे अपने जीवन भर के पापों की कथा सुनाया करते थे।
हरिदास की मृत्यु के पीछे ये बीजक उनके सुपुत्र प्रभुदास के हाथ लगा। बीजक मगन सिंह के पुरखों का लिखा है, इसमें लेश मात्र भी संदेह न था। लेकिन उन्होंने सोचा, पिताजी ने कुछ सोचकर ही इस मार्ग पर पग रखा होगा। वे कितने नीति परायण, कितने सत्यवादी पुरुष थे, उनकी नियत पर कभी किसी को संदेह नहीं हुआ। जब उन्होंने इस आचार को घृणित नहीं समझा तो मेरी क्या गिनती, कहीं ये धन हाथ आ जाए तो कितने सुख से जीवन व्यतीत हो। शहर के रईसों को दिखा दूं कि धन का सदुपयोग क्यों कर होना चाहिए, बड़ों बड़ों का सिर नीचा कर दूं कोई आंख ना मिला सके, इरादा पक्का हो गया। शाम होते ही वे घर से बाहर निकले, वही समय था, वही चौकन्नी आंखें थीं और वही तेज कुदाली थी। ऐसा ज्ञात होता था मानो हरिदास की आत्मा इस नए भेष में अपना काम कर रही है। चबूतरे का धरातल पहले ही खुद चुका था, अब संगीन तहखाना था, जोड़ों को हटाना कठिन था, पुराने जमाने का पक्का मसाला था। कुल्हाड़ी उचट उचट कर लौट आती थी, कई दिनों में ऊपर की दरारें खुली लेकिन चट्टाने जरा भी ना हिली। तब वो लोहे की छड़ से काम लेने लगे, लेकिन कई दिनों तक जोर लगाने पर भी चट्टाने न खिसकी। सब कुछ अपने ही हाथों करना था, किसी से सहायता न मिल सकती थी। यहां तक कि फिर वही अमावस्या की रात आ गई। प्रभुदास को जोर लगाते 12 बज गए और चट्टाने भाग्य रेखाओं की भांति अटल थी। पर आज इस समस्या को हल करना आवश्यक था, कहीं तहखाने पर किसी की निगाह पड़ जाए तो मेरे मन की लालसा मन में ही रह जाए। वो चट्टान पर बैठकर सोचने लगे, क्या करूं, बुद्धि कुछ काम नहीं करती। सहसा उन्हें युक्ति सूझी, क्यों ना बारूद से काम लूं। इतने अधीर हो रहे थे कि कल पर इस काम को न छोड़ सके, सीधे बाजार की तरफ चले। 2 मील का रास्ता हवा की तरह तय किया, पर वहां पहुंचे तो दुकानें बंद हो चुकी थी। आतिशबाज हीले करने लगा, बारूद इस समय नहीं मिल सकती, सरकारी हुक्म नहीं है। तुम कौन हो, इस वक्त बारूद लेकर क्या करोगे? ना भैया, कोई वारदात हो जाए तो मुफ्त में बंधा बंधा फिरूं, तुम्हें कौन पूछेगा। प्रभुदास की शांत वृत्ति कभी इतनी कठिन परीक्षा में न पड़ी थी। वे अंत तक अनुनय विनय ही करते रहे, यहां तक कि मुद्राओं की सुरीली झनकार ने उसे वशीभूत कर दिया। प्रभुदास यहां से चले तो धरती पर पांव न पड़ते थे। रात के 2 बजे थे, प्रभुदास मंदिर के पास पहुंचे, चट्टानों की दराजों में बारूद रख पलीता लगा दिया और दूर भागे। एक क्षण में जोर का धमाका हुआ, चट्टान उड़ गई, अंधेरा गार सामने था, मानो कोई पिशाच उन्हें निगल जाने के लिए मुंह खोले हुए है। प्रभात का समय था, प्रभुदास अपने कमरे में लेटे हुए थे। सामने लोहे के संदूक में 10,000 पुरानी मोहरे रखी हुई थी। उनकी माता सिरहाने बैठी पंखा जल रही थी। प्रभुदास ज्वर की ज्वाला से जल रहे थे, करवटें बदलते थे, कराहते थे, हाथ पांव पटकते थे, पर आंखें लोहे के संदूक की ओर लगी हुई थी। इसी में उनके जीवन की आशाएं बंद थी। मगन सिंह अब पजावे का मुंशी था, इसी घर में रहता था, आकर बोला, पजावे चलिएगा, गाड़ी तैयार कराऊं। प्रभुदास ने उसके मुख की ओर क्षमा याचना की दृष्टि से देखा और बोले, नहीं, आज मैं न चलूंगा, तबीयत अच्छी नहीं है, तुम भी मत जाओ। मगन सिंह उनकी दशा देखकर डॉक्टर को बुलाने चला। 10 बजते बजते प्रभुदास का मुख पीला पड़ गया, आंखें लाल हो गईं। माता ने उनकी ओर देखा तो शोक से विवल हो गईं। बाबू हरिदास की अंतिम दशा उनकी आंखों में फिर गई। जान पड़ता था ये उसी शोक घटना की पुनरावृत्ति है। वो देवताओं की मनौतियां मना रही थी, किंतु प्रभुदास की आंखें उसी लोहे के संदूक की ओर लगी हुई थी जिस पर उन्होंने अपनी आत्मा अर्पण कर दी थी। उनकी स्त्री आकर उनके पैताने बैठ गई और बिलख बिलख कर रोने लगी। प्रभुदास की आंखों से भी आंसू बह रहे थे, पर वे आंखें उसी लोहे के संदूक की ओर निराशापूर्ण भाव से देख रही थी। डॉक्टर ने आकर देखा, दवा दी और चला गया, पर दवा का असर उल्टा हुआ। प्रभुदास के हाथ पांव सर्द हो गए, मुख निस्तेज हो गया, हृदय की गति मंद पड़ गई, पर आंखें संदूक की ओर से न हटी। मोहल्ले के लोग जमा हो गए, पिता और पुत्र के स्वभाव और चरित्र पर टिप्पणियां होने लगी। दोनों शील और विनय के पुतले थे, किसी को भूल कर भी कड़ी बात न कही। प्रभुदास का संपूर्ण शरीर ठंडा हो गया था, प्राण थे तो केवल आंखों में। वे अब भी उसी लोहे के संदूक की ओर सतृष्ण भाव से देख रही थी। घर में कोहराम मचा हुआ था, दोनों महिलाएं पछाड़े खा खा कर गिरती थी। मोहल्ले की स्त्रियां उन्हें समझाती थी। अन्य मित्रगण
आंखों पर रुमाल जमाए हुए थे। जवानी की मौत संसार का सबसे करुण, सबसे अस्वाभाविक और भयंकर दृश्य है। ये वज्राघात है, विधाता की निर्दय लीला है। प्रभुदास का सारा शरीर प्राणहीन हो गया था, पर आंखें जीवित थीं। वे अब भी उसी संदूक की ओर लगी थी। जीवन ने तृष्णा का रूप धारण कर लिया था। सांस निकलती है पर आस नहीं निकलती। इतने में मगन सिंह आकर खड़ा हो गया। प्रभुदास की निगाह उस पर पड़ी। ऐसा जान पड़ा मानो उसके शरीर में फिर रक्त का संचार हुआ, अंगों में स्फूर्ति के चिन्ह दिखाई दिए। इशारे से अपने मुंह के निकट बुलाया, उसके कान में कुछ कहा, एक बार लोहे के संदूक की ओर इशारा किया और आंखें उलट गईं, प्राण निकल गए।

0: श्रोताओं, ये थी मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी गुप्तधन। फिर अपने अगले अंक में एक और कहानी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो मित्र, अपने किस्सा को संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: सुनो कहानी में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी गुप्तदान। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं सत्यदेव दुबे पर केंद्रित कार्यक्रम कला कला।

नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलनी।

0: कला कल्लोलिनी, जहां कला लहर बनकर बहती है और कलाकारों की आवाज वक्त की बंदिशों को तोड़कर सदियों तक गूंजती रहती है। आज की कड़ी में हम बात करेंगे एक ऐसे महानायक की जिसने रंगमंच को सिर्फ जिया नहीं बल्कि उसे एक नई परिभाषा दी। आइए मिलकर रुख करते हैं इस कलात्मक सफर की ओर। बहती है जो अनवरत सदियों का इतिहास लिए, रंगों की सुरों की लफ्जों की प्यास लिए, ये भावों की सरिता है, ये सुरमई रागनी है, कला के अनंत समंदर से उठी ये कला कल्लोलिनी है। कुछ अनकहे किस्से हैं, कुछ जाने पहचाने हैं, कुछ अनकहे किस्से हैं, कुछ जाने पहचाने हैं, ये कभी घुंघरू बनकर छनकती है, कभी चित्र बनकर सजती है, ये कभी नाटक के मंच पर जीवन की हकीकत बनकर गरजती है। समय का पर्दा अब धीरे धीरे सरकने वाला है, इतिहास के पन्नों से एक सितारा मंच पर उतरने वाला है।
1: और आज कला कल्लोलिनी की लहरें हमें बहाकर ले जा रही हैं एक ऐसे समंदर की तरफ जिसने भारतीय रंगमंच को अपनी शर्तों पर जीना सिखाया। एक ऐसा शख्स जिसने नाटक को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा का आत्म साक्षात्कार बना दिया। जी हाँ, आज बात हो रही है पद्म भूषण से सम्मानित आधुनिक भारतीय रंगमंच के कबीर, अक्खड़ फक्कड़ और अद्वितीय नाटककार निर्देशक सत्यदेव दुबे की। आइए शुरू करते हैं उनकी जीवन यात्रा। दोस्तों, समय का पहिया पीछे घूमता है। सन 1936 की 13 जुलाई को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की शांत वादियों में एक बालक ने आंखें खोली। नाम रखा गया सत्यदेव दुबे।
0: घर में कला और संस्कृति का एक अनूठा माहौल पहले से मौजूद था। एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे सत्यदेव के पिता का बिलासपुर में अपना एक स्थानीय सिनेमा हॉल था। उस दौर में जहां आम बच्चों के लिए सिनेमा देखना किसी सपने जैसा होता था, वहीं छोटे सत्यदेव के लिए वह जादुई पर्दा उनका अपना घर था। वो अक्सर अंधेरे हॉल के किसी कोने में बैठ जाते और पर्दे पर चलने वाली कहानियों, लाइव परफॉर्मेंस और इंसानी जज्बातों को बड़े कौतूहल से निहारते। फिल्मों के उन किरदारों को देखकर उनके बाल मन में कहानी कहने और दृश्यों को रचने की समझ अनजाने में ही अपनी जड़ें जमाने लगी थी। लेकिन नियति का खेल भी बड़ा निराला होता है। जिस लड़के को आगे चलकर भारतीय रंगमंच का सबसे बड़ा कप्तान बनना था, उस समय उसका दिल थिएटर के विंग्स में नहीं बल्कि क्रिकेट के हरे मैदान पर धड़कता था। बचपन और शुरुआती लड़कपन के दिनों में सत्यदेव के सिर पर क्रिकेट का भूत सवार था। धूप में तपते हुए हाथ में बल्ला थामे वो गेंद की हर हरकत को वैसे ही भापते थे जैसे आगे चलकर उन्होंने अभिनेताओं के हाव भाव को भापा। वो एक पेशेवर क्रिकेटर बनने का ख्वाब देखते थे। खेल के मैदान की वो एकाग्रता, अनुशासन और कुछ कर गुजरने की जिद, शायद ये सब उन्होंने क्रिकेट की पिच से ही सीखा था, जिसे उन्होंने बाद में थिएटर के तख्ते पर उतार दिया। किसे पता था कि बिलासपुर के मैदानों पर चौके छक्के लगाने का सपना देखने वाला ये लड़का एक दिन माया नगरी मुंबई की पिच पर उतरकर भारतीय नाटक और सिनेमा की पूरी कप्तानी ही बदल देगा।
1: पिता के सिनेमा हॉल के प्रोजेक्टर से निकलती रोशनी की वो चमकीली लकीर, सिल्वर स्क्रीन पर नाचते हुए किरदार और बिलासपुर की तपती दोपहरी में चमचमाता क्रिकेट का बल्ला, सत्यदेव दुबे का बचपन इन्हीं दिलचस्प रंगों से बुना गया था। बिलासपुर की उस माटी में कुछ अजीब सी कशिश थी। अरपा नदी के किनारे खेलते हुए इस बालक के भीतर शब्दों की एक नदी बहने लगी थी। पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर कोई सरकारी ओहदा संभाले, पर नियति ने तो इस बालक के हाथों में रंगमंच की चाबी सौंप रखी थी। दुबे जी का बचपन कोई बहुत ठाट बाट का नहीं था, एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, एक ऐसी खोज जो उन्हें शांत नहीं बैठने देती थी। वो किताबों में खो जाते, कहानियों के पात्रों को अपने आसपास ढूंढने लगते।
0: बिलासपुर की शांत हवाओं को पीछे छोड़, जब 16-17 साल का वह दुबला पतला लड़का बंबई के खचाखच भरे वीटी स्टेशन पर उतरा, तो उसके पास ना तो कोई बड़ा सूटकेस था और ना ही जेब में पैसों की खनक थी, तो बस आंखों में एक अजनबी सी चमक और दिल में कुछ बड़ा कर गुजरने की बेचैनी। सेंट जेवियर्स कॉलेज की ऐतिहासिक इमारत के ऊंचे मेहराबों के नीचे अंग्रेजी साहित्य के पन्नों को पलटते हुए सत्यदेव दुबे के विचारों को नए पंख मिल रहे थे। कॉलेज उनके लिए सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं, बल्कि एक जादुई प्रयोगशाला बन गया था। वहां वह रोज नए विचार गढ़ते थे, लेकिन इस वैचारिक उड़ान के पीछे एक कड़वी हकीकत भी थी, पेट की भूख और खाली जेब। माया नगरी की चमचमाती रोशनियों के बीच इस नौजवान के संघर्ष की कहानी बड़ी बेदर्द मगर बेहद खूबसूरत थी। जब रात को पूरी मुंबई सो जाती, तब सत्यदेव के पास सिर छुपाने की कोई छत नहीं होती थी। कई रातें उन्होंने रेलवे स्टेशनों के ठंडे बेंचों पर या फुटपाथ के सन्नाटे में आसमान को चादर बनाकर गुजारी।
1: श्रोताओं, कहते हैं ना कि जौहरी की नजर में हीरा कभी नहीं छुप सकता। कॉलेज के इन्हीं कई दिनों के बीच नियति ने उनका हाथ थाम लिया। उनकी मुलाकात रंगमंच के उस दौर के सबसे बड़े पारखी और थिएटर यूनिट के मसीहा इब्राहिम अलकाजी से हुई। अलकाजी साहब ने भीड़ में खड़े इस अखड़ स्वाभिमानी और बेहद प्रतिभाशाली लड़के की भीतर सुलगती कला की चिंगारी को पहली ही नजर में पहचान लिया। उन्होंने सत्यदेव को तराशना शुरू किया और बस यहीं से फुटपाथ के उस फकीर का भारतीय रंगमंच के सुल्तान बनने का आधिकारिक सफर शुरू हो गया। कहते हैं, जब दो समंदर आपस में मिलते हैं तो कोई शोर नहीं होता, बस एक गहरी अनंत खामोशी छा जाती है। मुंबई की उस उमस भरी शाम को भी शायद समय कुछ पल के लिए ठहर गया था। ये सिर्फ दो इंसानों की मुलाकात नहीं थी, ये रंगमंच के अतीत और भविष्य का एक ऐतिहासिक आलिंगन था। एक तरफ थे इब्राहिम अलकाजी, अनुशासन का दूसरा नाम, सलीका, संजीदगी और थिएटर का वो कड़क पैमाना जिसे छूना हर किसी के बस की बात नहीं थी, और दूसरी तरफ बिलासपुर की धूल से उठकर आया वो अल्हड़ नौजवान सत्यदेव दुबे।
0: अलकाजी का अनुशासन और दुबे का अनगणनपन, इन दोनों का मिलन ऐसा था जैसे बहती हुई उफनती नदी को एक मजबूत बांध मिल गया हो। अलकाजी ने सत्यदेव को शब्दों का सलीका सिखाया और सत्यदेव ने अलकाजी के रंगमंच को अपनी मिट्टी की सौंधी खुशबू दी। इब्राहिम अलकाजी 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली भारतीय थिएटर निर्देशकों में से एक थे। रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से प्रशिक्षित, उन्होंने भारतीय रंगमंच में भारी आधुनिकता और पेशेवर रवैया पेश किया। उन्होंने मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन और गिरीश कर्नाट के तुगलक जैसे 50 से अधिक नाटकों का निर्देशन किया। 1962 से 1977 तक एनएसडी के प्रमुख के रूप में उन्होंने भारत में अभिनय और रंगमंच की शिक्षा को एक नई दिशा दी। सत्यदेव दुबे एक बहुमुखी रंगकर्मी, अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे। 1950 के दशक के मध्य में मुंबई आकर वे इब्राहिम अलकाजी की थिएटर यूनिट में शामिल हो गए। अब अलकाजी एनएसडी के लिए दिल्ली चले गए तो दुबे ने थिएटर यूनिट की बागडोर संभाली। उन्होंने गिरीश कर्नाड, बादल सरकार और विजय तेंदुलकर जैसे नाटककारों के प्रमुख नाटकों का निर्माण किया। 1971 में उन्होंने फिल्म शांतता कोर्ट चालू आहे का निर्देशन किया, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अलकाजी और दुबे के बीच का संबंध सत्यदेव दुबे के रंगमंच करियर की शुरुआत इब्राहिम अलकाजी के सानिध्य में ही हुई थी। दुबे ने थिएटर यूनिट में अलकाजी के मार्गदर्शन में काम किया और बाद में उनके द्वारा छोड़े गए समूह का नेतृत्व भी किया। इसके अलावा दुबे ने ही धर्मवीर भारती के अंधायुग की क्षमता को पहचाना था और उसे अलकाजी के पास भेजा था। अलकाजी ने 1962 में एनएसडी में इस नाटक का मंचन किया, जिसने भारतीय रंगमंच के इतिहास में एक नया प्रतिमान स्थापित किया। ये मुलाकात महज एक इत्तेफाक नहीं थी, ये नियति का वो गुप्त समझौता था जिसने फुटपाथ पर सोने वाले एक भूखे फकीर को भारतीय रंगमंच का शहंशाह बनाने की पहली इबारत लिखी थी।
1: सत्यदेव दुबे ने जब महसूस किया कि हिंदी रंगमंच अपने मूल लेखन की कमी से जूझ रहा है, तो उन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने मराठी, कन्नड़, बंगाली भाषा के सर्वश्रेष्ठ समकालीन नाटकों को चुना और उन्हें हिंदी में इस तरह ढाला कि वे नाटक हिंदी भाषी दर्शकों की अपनी रूह का हिस्सा बन गए। गिरीश कर्नाड के हैवदन और ययाति जैसे कन्नड़ नाटकों को हिंदी मंच पर लाकर उन्होंने पौराणिक कथाओं को आधुनिक संदर्भ दिए, तो वहीं बादल सरकार के बंगाली नाटक एवं इंद्रजीत के जरिए उन्होंने उस दौर के युवाओं के भीतर की सामाजिक छटपटाहट और अकेलेपन को आवाज दी। वे सही मायने में भारतीय भाषाओं के बीच एक मजबूत और जीवंत सांस्कृतिक सेतु बन गए थे। दुबे जी का ये दृढ़ विश्वास था कि नाटक भव्य सेट, कीमती पर्दों या भारी भरकम साजो सामान का मोहताज नहीं होता, बल्कि रंगमंच की असली ताकत तो अभिनेता, शब्द और दर्शकों के बीच का सीधा संवाद है। उन्होंने बेहद कम खर्चे में सिर्फ कुछ कर्टन्स, एक दो कुर्सियां और बेहतरीन लाइट अरेंजमेंट के दम पर ऐसे नाटक तैयार किए जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखते थे। उनके इस मिनिमलिस्टिक प्रयोग का सबसे बड़ा उदाहरण अंधायुग का मंचन था, जहां उन्होंने किसी बंद ऑडिटोरियम में भारी भरकम खर्चों के बजाय बाण गंगा के खुले खंडहरों को अपना सेट बनाया और प्रकृति तथा माहौल को ही अपने नाटक का एक जीवंत हिस्सा बना दिया।
0: गुरु इब्राहिम अलकाजी के जाने के बाद दुबे जी ने थिएटर यूनिट को देश की सबसे जीवंत रंग कार्यशाला में तब्दील कर दिया, जहां नाटक सिर्फ शाम को मंच पर दिखाने के लिए नहीं होते थे, बल्कि रोज अभिनय, आवाज के उतार चढ़ाव और शब्दों के उच्चारण पर कड़ा विमर्श होता था। दुबे जी भाषा और संवाद अदायगी को लेकर बेहद सख्त थे और यदि कोई अभिनेता किसी शब्द का उच्चारण गलत करता तो वे पूरे नाटक का रिहर्सल तब तक रोक देते थे जब तक वह शब्द बिल्कुल शुद्ध ना निकले। उनका यह अक्खड़पन और गुस्सा किसी दुर्भावना से नहीं, बल्कि कला के प्रति उनके अगाध समर्पण से पैदा होता था और यही वजह थी कि उनका कड़ा अनुशासन कलाकारों को मांझकर हीरा बना देता था। सत्यदेव दुबे के लिए रंगमंच कोई व्यवसाय या मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि वह एक गहरी दार्शनिक साधना और आत्मखोज का माध्यम था। उन्होंने विजय तेंदुलकर के नाटक गिधारे और सखाराम बाइंडर जैसे नाटकों का निर्देशन किया, जो समाज के पाखंड, मानवीय क्रूरता और दबी हुई कुंठाओं पर बेहद तीखा प्रहार करते थे। इन प्रयोगधर्मी नाटकों को लेकर उस दौर में बड़े विवाद भी हुए और सेंसरशिप की तलवारें भी चली, लेकिन दुबे जी कभी अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं हुए। उनका मानना था कि नाटक का काम दर्शक को केवल सुलाना या बहलाना नहीं, बल्कि उसकी सोई हुई चेतना को झकझोर कर जगाना है। इसलिए वे रंगमंच और कलाकारों की आत्मनिर्भरता के बहुत बड़े पैरोकार थे। वे हमेशा लोगों से इस बात का आग्रह करते थे कि नाटक को कभी मुफ्त या पास पर नहीं, बल्कि हमेशा टिकट खरीद कर ही देखना चाहिए। उनका मानना था कि जब एक दर्शक टिकट खरीदता है तो वह न केवल कला का सम्मान करता है, बल्कि उस नाटक और कलाकार की आजादी को भी जिंदा रखता है।
1: श्रोताओं, सत्यदेव दुबे सिर्फ पर्दे के पीछे से धागे हिलाने वाले सूत्रधार नहीं थे, उनके भीतर एक ऐसा अभिनेता भी छुपा था जो मंच की खुशबू पाते ही जाग उठता था। अक्सर जब थिएटर की रिहर्सल खत्म होती या शाम को दोस्तों और शागिर्दों की महफिल जमती तो लोग उनसे कुछ सुनाने की जिद कर बैठते। दुबे जी मुस्कुराते, उनके चेहरे की कड़कड़ाहट पल भर में गायब हो जाती और उनकी आंखें किसी गहरे दार्शनिक सोच में डूब जाती। वे हमेशा धर्मवीर भारती के अंधा युग के उस पात्र की पंक्तियां सुनाते जो उनके दिल के सबसे करीब था, अश्वत्थामा। एक ऐसा पात्र जो भटक चुका था, जो कुंठित था, लेकिन जिसके भीतर सत्य को जानने की छटपटाहट थी। जब दुबे जी अपनी बुलंद और भारी आवाज में हाथों को हवा में लहराते हुए ये संवाद बोलते तो कमरे में बैठा हर शख्स अपनी सुध-बुध खो बैठता था।
0: यह मेरा नहीं, यह उस युग का अंधापन है जिसमें हम सब जीते हैं, जिसमें हम सब मरते हैं। मैंने तो सिर्फ उस प्रतिशोध को चुना जो इस समूचे ब्रह्मांड के माथे पर लिखा था। अब न कोई न्याय है, न कोई धर्म है, सिर्फ एक अंतहीन रात है और मैं हूं। इन पंक्तियों को बोलते हुए उनकी आवाज में जो दर्द, जो गुस्सा और जो दार्शनिक ठहराव होता था वह सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देता था। उन्हें ऐसे जटिल पात्र बहुत पसंद थे जो सफेद या काले नहीं होते थे, बल्कि इंसानी स्वभाव के भूरे रंगों को दर्शाते थे। वह कहते थे कि नाटक का असली मजा तब है जब वह आपको अंदर से बेचैन कर दे। आज भी जब थिएटर की पुरानी गलियों में अंधा युग का जिक्र होता है तो लोगों के कानों में अश्वत्थामा के रूप में गूंजती सत्यदेव दुबे की वह बुलंद आवाज आज भी सजीव हो उठती है।
1: इसी वैचारिक आजादी और कड़े अनुशासन की पाठशाला से दुबे जी ने अभिनेताओं की एक ऐसी अद्वितीय पौध तैयार की जो आगे चलकर न केवल थिएटर के स्तंभ बने बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और दिग्गज अभिनेता कहलाए। उनके तराशे हुए हीरो में अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, रत्ना पाठक शाह, अमोल पालेकर और सतीश कौशिक जैसे नाम शामिल थे जिन्होंने अभिनय की परिभाषा ही बदल दी। रंगमंच की इसी धुरी पर काम करते हुए 70 के दशक में सत्यदेव दुबे की मुलाकात मशहूर फिल्मकार श्याम बेनेगल से हुई। ये मुलाकात भारतीय समानांतर सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुई। दोनों की कलात्मक ट्यूनिंग इतनी बेहतरीन थी कि श्याम बेनेगल के शुरुआती और सबसे प्रभावशाली फिल्मों की आत्मा दुबे जी के शब्द ही बने। दुबे जी ने बेनेगल की कालजयी त्रयी, अंकुर, निशांत और मंथन के संवाद और पटकथा लिखी जिन्होंने भारतीय सिनेमा को यथार्थवाद का एक नया चेहरा दिया। इसके बाद 1977 में आई फिल्म भूमिका के लिए तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ पटकथा का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। उन्होंने बेनेगल की फिल्म कलयुग की पटकथा पर भी काम किया था।
0: शब्दों का जादू बिखेरने के साथ साथ दुबे जी ने पर्दे पर अपनी अदाकारी का हुनर भी दिखाया। उन्होंने श्याम बेनेगल की ही फिल्म निशांत में एक पुजारी की बेहद जीवंत और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा उन्होंने गोविंद निहलानी की मशहूर फिल्म आक्रोश में भी अभिनय किया। इतना ही नहीं, कला सिनेमा से इतर उन्होंने मुख्य धारा के सिनेमा में भी अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने साई पराजपे की बेहद लोकप्रिय फिल्म चश्मे बद्दूर के तीखे और मजेदार संवाद लिखे और निर्देशक उमेश मेहरा की फिल्म हमारे तुम्हारे की पटकथा भी तैयार की। सत्यदेव दुबे ने श्याम बेनेगल की टीवी सीरियल भारत एक खोज में चाणक्य और फिल्म निशांत में पुजारी की भूमिका निभाई। पटकथा लेखन से लेकर कैमरे के सामने अभिनय करने तक सिनेमा का ये पूरा सफर उनके बहुमुखी और अक्खड़ कलाकार होने का सबसे बड़ा प्रमाण था। मशहूर फिल्मकार श्याम बेनेगल सत्यदेव दुबे को भारतीय कला जगत का एक अद्वितीय और अपरिहार्य स्तंभ मानते थे। वे अक्सर दुबे जी के बारे में कुछ बेहद खास बातें कहा करते थे। बेनेगल अक्सर तारीफ करते थे कि दुबे जी के पास अभिनेताओं को तराशने की एक जादुई कला थी। अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी जैसे दिग्गज कलाकारों को बेनेगल ने अपनी फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं दी। वे सब दुबे जी की थिएटर वर्कशॉप की ही देन थे। बेनेगल मानते थे कि दुबे जी जिस अभिनेता पर हाथ रख देते थे वे सोना बन जाता था। श्याम बेनेगल दुबे जी के अक्खड़पन और उनकी फकीरी के मुरीद थे। वे कहते थे कि दुबे एक ऐसे विरल कलाकार थे जिन्होंने कभी पैसों या शोहरत के लिए अपनी कला से समझौता नहीं किया। वे सिनेमा में काम जरूर करते थे लेकिन उनका दिल हमेशा थिएटर के लिए ही धड़कता था। सीधे शब्दों में कहें तो श्याम बेनेगल के लिए सत्यदेव दुबे सिर्फ एक सह लेखक या दोस्त नहीं थे बल्कि वे उन्हें एक ऐसा क्रिएटिव पार्टनर और थिएटर गुरु मानते थे जिसने भारतीय सिनेमा और रंगमंच को सच बोलना सिखाया।
1: श्रोताओं, वो पूरी तरह से एक फकीर और सन्यासी की तरह जिए जिनका एकमात्र धर्म और परिवार सिर्फ और सिर्फ रंगमंच ही था। दुबे जी ने जीवन के आखिरी पड़ाव तक नए लड़कों और लड़कियों को तलाशने और उन्हें तराशने का काम कभी बंद नहीं किया। मुंबई का प्रसिद्ध पृथ्वी थिएटर उनका दूसरा घर बन चुका था। वे घंटों वहां के कैफे में ही बैठे रहते थे जहां कोई भी नया लड़का स्क्रिप्ट लेकर उनके पास आ सकता था। वो बिना किसी फीस के सिर्फ चाय की चुस्कियों पर नए निर्देशकों को नाटक की बारीकियां सिखाते थे। उन्होंने हमेशा नए और युवा नाटककारों को मंच दिया क्योंकि उनका मानना था कि थिएटर को जिंदा रखने के लिए नए खून और नए विचार का आना बेहद जरूरी है।
0: थिएटर और फिल्मों के अलावा दुबे जी ने जन माध्यमों की ताकत को भी बहुत पहले पहचान लिया था। उन्होंने धर्मवीर भारती के अंधा युग को न केवल मंच पर उतारा बल्कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी उसके कई प्रयोग किए। उन्होंने ध्वनि और संवाद के उतार चढ़ाव का ऐसा ताना बाना बुना कि बिना दृश्यों के भी सिर्फ आवाज के दम पर दर्शकों के सामने महाभारत के युद्ध का सन्नाटा सजीव हो उठता था। रेडियो नाटक के शिल्प को आधुनिक बनाने में भी उनका यह योगदान अतुलनीय है। वे कभी विवादों से डरे नहीं बल्कि वे मानते थे कि अगर कला समाज में हलचल ना पैदा करे तो वो कला ही नहीं है।
1: श्रोताओं, भारतीय रंगमंच और कला जगत में सत्यदेव दुबे के अद्वितीय क्रांतिकारी और युगांतकारी योगदान के लिए उन्हें समय समय पर देश के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया। उनकी इस अनूठी नाट्य साधना और कला के प्रति अटूट समर्पण को सर्वोच्च सम्मान देते हुए साल 1971 में देश की सर्वोच्च कला संस्था द्वारा उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद भारतीय समानांतर सिनेमा को अपनी लेखनी और संवादों से एक नया और यथार्थवादी धरातल देने के लिए साल 1977 में आई उनकी प्रसिद्ध फिल्म भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पटकथा का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनके जीवन भर के संघर्ष, अमूल्य योगदान और एक महान मेंटोर के रूप में उनके कद को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें बेहद प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान से भी विभूषित किया। आखिरकार उनके इसी फकीराना जज्बे और कलात्मक महानता को सलाम करते हुए साल 2011 में भारत सरकार ने उन्हें देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से अलंकृत किया जो उनके जीवन की कला यात्रा पर राष्ट्र की ओर से एक गौरवशाली मोहर थी।
0: दुबे जी मुंबई के एक बेहद साधारण से किराए के कमरे में किताबों और नाटकों की स्क्रिप्ट के बीच अपनी फकीरी में मस्त थे। वे अक्सर अकेले ही मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करते या पृथ्वी थिएटर के बाहर एक कप चाय हाथ में थामे घंटों बैठे रहते। उनके जीवन में ना तो पैसों का लालच था और न ही किसी सांसारिक सुख की चाह। उनका कोई पारंपरिक परिवार नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी कला को ही अपनी संतान और अपना संसार मान लिया था। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आपको अकेलेपन से डर नहीं लगता, तो उन्होंने हंसकर कहा था, जिसके पास शब्दों का मेला हो और मंच की रोशनी हो, वो भला अकेला कैसे हो सकता है। उनका ये निश्चल समर्पण दिखाता है कि वे सिर्फ नाटक करते नहीं थे, वे खुद में एक जीवंत नाटक थे। सत्यदेव दुबे ने जीवन के अंतिम क्षणों तक अपनी कलात्मक ऊर्जा और जीवंतता को बनाए रखा, लेकिन उम्र के आखिरी पड़ाव पर उनका शरीर थकने लगा था। साल 2011 के सितंबर महीने में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ, जिसके बाद वे कोमा में चले गए। इसके बाद अगले कुछ महीनों तक मुंबई के एक अस्पताल में उनका इलाज चलता रहा। आखिरकार अपनी बीमारी से एक लंबा और संजीदा संघर्ष लड़ने के बाद 25 दिसंबर 2011 को 75 वर्ष की आयु में मुंबई के टोपीवाला राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज और BYL नायर चैरिटेबल अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन का कारण लंबे समय से चल रही बीमारी और दिल का दौरा पड़ना था। उनके जाने से

0: जगत के दिग्गज सत्यदेव दुबे का देहांत हो गया। साथ साथ घूमने फिरने के दिनों की प्यारी यादें मुझे घेर लेती हैं। अलविदा दुबे जी, ढेर सारा प्यार। निर्देशक केन घोष ने कहा, सत्यदेव दुबे के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। उन्होंने बड़ी विनम्रता से इश्क विश्क की नई कास्ट के साथ एक एक्टिंग वर्कशॉप आयोजित की थी। शांता गोखले उन्हें याद करते हुए कहती हैं
1: कि सत्यदेव दुबे को बहस छेड़ना बहुत पसंद था और उन्हें सबसे ज्यादा खुशी तब होती थी जब वो युवा रंगमंच कलाकारों को अपने विचारों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करने के बजाय प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित कर पाते थे। आधी सदी से भी अधिक समय में उन्होंने हिंदी, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी में 100 से अधिक नाटकों का निर्देशन किया, युवा नाटककारों की खोज की और उन्हें अपनी रचनाओं को फिर से लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही अभिनेताओं की कई पीढ़ियों को प्रशिक्षित भी किया। आप हमेशा कलाकारों और अभिनेताओं के दिलों में मशाल बनकर जलते रहेंगे। दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने सत्यदेव दुबे को अपना थिएटर गुरु माना है। वो अक्सर याद करते हैं कि कैसे दुबे जी ने उन्हें मंच पर बिना डरे संवाद बोलना और अपनी ऊर्जा को सही जगह इस्तेमाल करना सिखाया। उन्होंने दुबे जी को एक निडर, स्पष्टवादी और रंगमंच के प्रति जुनूनी व्यक्ति बताया।
0: सत्यदेव दुबे अक्सर कहा करते थे कि एक सच्चे अभिनेता का काम केवल संवाद बोलना या चेहरे पर मुखौटा लगाना नहीं है। उनके लिए अभिनय एक आत्मसमर्पण था। वे कहते थे, एक अच्छा अभिनेता वह नहीं है जो मंच पर आकर खुद को दिखाए, बल्कि वह है जो मंच पर आकर अपने अहंकार को पूरी तरह मिटा दे और उस पात्र को अपने भीतर जीने दे। अभिनेता का शरीर और उसकी आवाज सिर्फ एक माध्यम है, असली खेल तो उसकी आत्मा की ईमानदारी का है। सत्यदेव दुबे आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन भारतीय कला जगत उनके जिक्र के बिना हमेशा अधूरा रहेगा। वे एक ऐसे फकीर थे जिन्होंने कभी महलों की चाह नहीं की, क्योंकि उनके हिस्से में मंच की वो जादुई रोशनी थी जो इतिहास बदल देती है। उन्होंने सिनेमा को दिग्गज अभिनेता और कालजयी शब्द दिए और हमें सिखाया कि कला कभी मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि समाज को झकझोरने के लिए होती है। तो श्रोताओं, कला कल्लोलिनी में आज इतना ही। अगले भाग में हम आपको फिर ऐसे ही महान शख्सियत से रूबरू कराएंगे। रंगमंच के कबीर फिल्मकार और नाटककार सत्यदेव दुबे जी पर चर्चा आपको पसंद आई होगी। अब समय है आपसे विदा लेने का। जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया था संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी और मैं था दानिश, और लेखन दीपक नेमा।
1: आपके लिए इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया मैंने यानी मनीषा,
0: और मैं दानिश। नमस्कार।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। आइए अब सुनते हैं कलापिनी कोमकली का भक्ति गीत, हमारा विशेष कार्यक्रम।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त है विशेष कार्यक्रम का। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं भक्ति पदों का गायन। कलाकार हैं कलापिनी कोमकली।

0: ये प्रस्तुति हुई भारत भवन में आयोजित संतवाणी समारोह में। ये इस कार्यक्रम का पहला भाग है।
1: संगीत को पूरी निष्ठा और निरंतर साधना से उत्कर्ष की नई दिशाएं देने वाली सुश्री कलापिनी हमारे संगीत समय की यशस्वी गान प्रतिभा है। मूर्धन्य गायक पंडित कुमार गंधर्व और संगीत विदुषी श्रीमती वसुंधरा कोमकली की बेटी और उनकी इस शिष्या ने कठिन उत्तराधिकार को पारंपरिक गरिमा और मौलिक संज्ञान से अपने कला व्यक्तित्व में अंगीकार किया है। आध्यात्मिक आनंद, रंजनकारी तत्वों का समावेश और राग रस का भावात्मक विस्तार उनके गायन की वे खूबियां हैं जो श्रोताओं से एक सहज आत्मीयता का सेतु तैयार करती हैं। उनके अनेक रिकॉर्ड जारी हो चुके हैं जिनमें उनकी गायकी के बेशुमार पोशीदा पहलुओं को परखा जा सकता है। पहली और देवी अहिल्या उन फिल्मों के नाम हैं जिनमें कलापिनी जी ने पार्श्व गायन भी किया है। इन दिनों देवास में स्थापित पंडित कुमार गंधर्व संगीत अकादमी रियाज के अनेक रचनात्मक प्रकल्पों में अपना सक्रिय योगदान दे रही है। सुश्री कलापिनी को अनेक सम्मानों से विभूषित किया जा चुका है जिसमें संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली का पुरस्कार विशेष उल्लेखनीय है।
2: सबको नमस्कार। आज की संतवाणी के इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं एक चंद्र सखी के पद से करने जा रही हूँ। एक तरह का मंगलाचरण है ये और कुछ अप्राप्य चंद्र सखी के पदों में से एक है। कल्याण में निबद्ध है।

अब मैं आपके सम्मुख एक अभंग प्रस्तुत करने जा रही हूं। तुकाराम का पद है, मेरे पूज्य पिता और गुरु पंडित कुमार गंधर्व ने इसे स्वरबद्ध किया।

आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे भक्ति पदों का गायन। कलाकार थीं कलापिनी कोमकली। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं रेडियो रिपोर्ट।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त रेडियो रिपोर्ट का है। आपके साथ

0: रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं रविंद्र भवन के अंजनी सभागार में, जहां शनिवार की शाम मंचन हुआ नाटक आखिरी बस का।
1: बहाना क्यों भाई, हम कह देंगे कि हमारी आखिरी बस छूट गई है
2: और वो हमारी बात पर यकीन कर लेंगे।
0: इस नाटक का निर्देशन किया संतोष सुमन ने।

0: अच्छा आज अब काम पर नहीं गए क्या जी?
1: क्या कहा? कौन से काम पर?
0: मेरा मतलब नया धंधा, हमको बहुत पसंद आया जी।
1: अरे लेकिन मेरे भाई तुम इतनी रात के कहाँ जा रहे हो?
0: अब आपको मालूम ना हम ब्लड प्रेशर का मरीज, तो हम कान के पास में फ्रेश एयर लेने निकल जाता जी।
1: अच्छा, फ्रेश एयर?

0: 6 बजे बस मिलेगी।
1: लेकिन सब लोग है कहाँ, कोई दिखाई क्यों नहीं देता?
2: अरे बेटा होश में आओ, ये वाशी है जू नहीं। रात के 12:30 बज रहे हैं, सब सो गए होंगे।
1: फिर हम लोग क्या करें?
2: अरे
0: तुम्हारा नाम क्या है यार? वो डिनर लेते वक्त तुमने मुझे बताया था, लेकिन मैं
1: फर्स्ट इंट्रोडक्शन में ऐसा ही होता है। अब देखो ना, मुझे भी तो तुम्हारा नाम याद नहीं।
0: चलो पहले एक दूसरे को अपना अपना परिचय दे दे।
1: हाँ, मैं रवि सिन्हा।
0: मैं मदन सहगल उर्फ छोटू।
3: मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है।
1: हाँ। लेकिन कहाँ देखा है मुझे याद नहीं आ रहा।
0: शायद पृथ्वी थिएटर। मैं अक्सर शाम को वहां जाया करता हूँ।
1: काम क्या करते हो?
0: स्ट्रगलर।
3: यार मैंने डॉक्टर सुना था, इंजीनियर सुना था, ये स्ट्रगलर कौन सा प्रोफेशन है?
0: तुम नहीं समझोगे। दरअसल और जब तक फिल्म दुनिया में एक्टर को कोई मुकाम नहीं मिल जाता, उसे स्ट्रगलर कहते।
3: अच्छा।
0: तुम क्या करते?
1: मैं डॉक्टर हूँ, MBBS MD कर रहा हूँ।
0: और मैं तब तो हम लोगों की खूब पड़ेगी, क्योंकि तुम डॉक्टर, मैं एक्टर, तुम डॉक्टर। आज का दिन इतना बढ़िया बीता था, मुझे नहीं पता था कि आज की रात इतनी घटिया बीतेगी।
3: लगता है बारिश होगी।
0: हाँ, बस वही एक कसर बाकी रह गई है।
3: भाई तूफान आने के भी आसार नजर आ रहे हैं।
1: अरे
0: एक मिनट, तुम कहाँ रहते?
3: मैं हॉस्टल बॉम्बे सेंट्रल के पास।
1: हाँ भाई भाई
3: कितने मच्छर हैं यार।
1: अबे यहाँ के लोग सोते कैसे होंगे? अगर हम लोग थोड़ी देर तक और बाहर रहे तो मच्छर मुझे उठाकर ले जाएंगे।
3: नहीं, भैया ऐसा नहीं हो पाएगा, मच्छर ना उठा पाएंगे।
1: क्यों?
3: अरे भाई यहाँ फटमल भी बहुत सारे, वो तो मैं नीचे से ही।
0: इस घर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल? ये दरवाजा खटखटा जाए तो?
1: ये घर?
0: हाँ, देख।

0: मैं इस घर में घुसने की कोशिश करता हूँ।
1: हाँ तो वही तो कह रहा था कि तुम इस घर में ट्राई करो, मैं कहीं और देखता हूँ।
0: ठीक है।

0: छूट गई है और यहाँ पर जो है मच्छर बहुत काट रहे हैं।
1: तो हम क्या करेगा, वैसे भी इस घर में अकेला रहता है।
0: नहीं, मैं कह रहा था कि आपके ऊपर और भी कमरे होंगे ना।
1: हम तुमको जानता तक नहीं है।
0: इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरा नाम रवि है, मैं एक डॉक्टर हूँ।
1: तो
0: हो गई ना जान पहचान।
1: तो तुमको क्या लगता है, इतना जानना काफी है?
0: और क्या जानना चाहती है? देखिए, मैं इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता। नहीं, मैं कह रहा था कि आपके यहाँ पर और भी कमरे खाली होंगे ना।
1: क्या?
0: नहीं मतलब कमरे तो खाली होंगे ना आपके यहाँ पर।
1: क्या बोला?
0: अरे मैं कह रहा हूँ मतलब आप इस घर में अकेली करती क्या है?
2: कोई आदमी इतना परेशान है और इन लोगों ने इतनी तबीयत नहीं। मेरा सर तीन घरों के दरवाजे खटखटा
0: है,
2: किसी ने नहीं खोला, सब डर गए।
0: अरे भाई हमारी नाव जो है ना बीच मजदार में फंसी है।
2: यार मुझे इसने कितना पता है कि थोड़ी देर और बाहर रहे तो ये मच्छर हमें उठाकर ले जाएंगे।
0: हे, क्यों ना हम वो शॉपिंग सेंटर के बरामदे में चल के लेट जाए।
2: तुम्हें क्या लगता है वहां सब कुछ ठीक होगा? वहां और भी बुरा हाल होगा, लोगों के घरों के दरवाजे खटखटाओ तो अंदर से पूछेंगे
3: कौन है।
2: बस एक बार और कोशिश करता हूँ।
0: बहाना क्या

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है मीरा बहन पर।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महाकाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: मीराबेन का असली नाम मैडलिन स्लेट था। उनका जन्म 22 नवंबर 1892 को एक अंग्रेज परिवार में हुआ था। महात्मा गांधी पर लिखी एक पुस्तक पढ़ने के बाद वे उससे इतना प्रभावित हुईं कि उन्होंने बापू की विचारधारा को न सिर्फ आत्मसात किया बल्कि उनके साथ रहने हिंदुस्तान चली आईं। गांधी जी ने उन्हें अपनी पुत्री माना और नाम दिया मीराबेन। बापू के सानिध्य में उन्होंने धुनना और बुनना सीखा। खादी के उत्थान के लिए उन्होंने कई प्रांतों का दौरा किया। 1932 में गांधी जी के जेल प्रवास और कांग्रेस कार्यकारिणी पर प्रतिबंध के दौरान उन्होंने सराहनीय भूमिका निभाई थी। अंग्रेज सरकार की क्रूरता की सूचनाएं एकत्रित करके वे दुनिया के कोने कोने में भेजने लगी। उन्होंने विश्व के तमाम नेताओं से मिलकर गांधी जी के दृष्टिकोण को स्पष्ट करने का प्रयास किया। आजादी के पहले और आजादी के बाद उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा था। 20 जुलाई 1982 को उनका देहांत हो गया। भारतवासी उन्हें हमेशा याद रखेंगे।
3: मैडलिन स्लेट एक ब्रिटिश एडमिरल की वो बेटी जिनकी आत्मा भारत में बसती थी। 7 समंदर पार रहते हुए भी मैडलिन का गांधी जी से जुड़ाव आध्यात्मिक था और उनके इस अभूतपूर्व आध्यात्मिक आत्मिक सफर की शुरुआत हुई स्विट्जरलैंड से, जहां वो महान लेखक रोमा रोला से जीवन के उद्देश्य को जानने के लिए मिली और उसके बाद मैडलिन स्लेड बन गई मीरा बेन।
4: I really don't know what to do, where to go. I'm very much influenced by the greatest musician, Beethoven. But he's no more to guide me.
3: महान संगीतकार बीथोवन के जीवन दर्शन से प्रभावित मैडलिन ने जब रोमा रोला से अपने जीवन के उद्देश्यों के बारे में जानना चाहा, तो उन्होंने जवाब में गांधी जी की जीवनी पढ़ने को देते हुए कहा,
5: He's second Jesus Christ.
3: इस किताब को पढ़ने से पहले मैडलिन गांधी जी के बारे में कुछ नहीं जानती थी और इसके बाद तो जैसे सब कुछ उन्हें ही मानती थी। मैडलिन को लगा कि गांधी जी के विचारों का अनुसरण ही उनका जीवन उद्देश्य है और इसी के लिए वो छटपटा रही थी। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने गांधी जी को पत्र लिखकर आश्रम आने की अनुमति मांगी।
6: बापू, इंग्लैंड से पत्र आया है।
7: किसका है?
6: मिस मैडलिन स्लेट का।
7: दिखाओ मुझे।
6: क्या हुआ बापू?
7: ये लड़की एक ब्रिटिश एडमिरल की बेटी है। कहती है कि मेरे विचारों को अपने जीवन में उतारना चाहती है। लिखती है, मेरे विचार उसे जीवन का उद्देश्य जान पड़ते हैं और इसलिए वो यहाँ आकर अपना जीवन आश्रम को समर्पित करना चाहती है।
6: लेकिन एक अंग्रेज लड़की अपने ही देश वालों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में हमारा साथ कैसे दे सकेगी?
7: उससे भी ज्यादा मुश्किल उसके लिए आश्रम की परिस्थितियों से तालमेल बिठाना होगा।
6: तो इसका मतलब यही ना बापू कि हम उन्हें यहाँ आने की अनुमति नहीं दे सकते?
7: अरे नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है। लाओ वो पोस्टकार्ड मुझे दो।
6: लीजिए।
7: प्रिय मित्र, याद रखना, यहाँ का जीवन सुखमय नहीं है, ये बहुत कठिन है। यहाँ हर एक को शारीरिक श्रम करना पड़ता है। इस देश की जलवायु भी ऐसी नहीं जिसके बारे में न सोचो। मैंने ये बातें तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि चेतावनी के लिए लिखी है।
3: गांधी जी के जवाब के बाद तो जैसे मेडलिन की इच्छा दृढ़ निश्चय में बदल गई। उन्होंने विदेश में रहकर ही एक साल तक खुद को भारत और आश्रम के माहौल में ढालने की कोशिशें शुरू कर दी। वो उर्दू और हिंदी सीखने लगी, महान ग्रंथों के अनुवादित संस्करण भी पढ़े। एक ब्रिटिश एडमिरल की बेटी भारतीयता के रंग में रंगने लगी। उन्होंने महल में रहकर भी जमीन पर सोने का अभ्यास किया, चरखा चलाने लगी और शराब और मांस का भी त्याग कर दिया। घर वालों को अपने फैसले से अवगत कराने के बाद मेडलिन ने फिर एक बार गांधी जी को पत्र लिखा।
6: बापू, ये पत्र कई दिन पहले आया था।
7: लाओ।
6: उन्हीं मिस मेडलिन का है। इस बार 20 पाउंड भी भेजे हैं।
7: जिसका निश्चय इतना दृढ़ हो उसे कोई नहीं रोक सकता। इन्हें तो जवाब लिखना ही होगा। प्रिय मित्र, सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि पत्र का जवाब जल्दी ना दे पाया। मैं निरंतर यात्रा पर था। आपने जो 20 पाउंड भेजे हैं उसके लिए मेरा शुक्रिया कबूल करें। ये पैसा चरखे को लोकप्रिय बनाने के काम में खर्च किया जाएगा। मुझे खुशी है कि आपने अपने पहले आवेग में काम करने की जगह खुद को यहाँ के जीवन के लिए तैयार करने और समय लेने का फैसला किया। अगर एक साल की
0: परीक्षा भी आपको यहाँ आने की प्रेरणा दे तो शायद भारत आने का आपका फैसला सही होगा।

0: के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हो जाने की उम्मीद करती हूँ। कुछ महीने पहले मुझे एक अनुभव हुआ जिसके बारे में मैं आपसे मिलकर ही बताना चाहूँगी। इसने मुझे स्पष्ट कर दिया कि मेरा जीवन आपके जीवन से जुड़ने ही वाला है। मैं भारत आना चाहती हूँ ताकि आपके साथ रहकर आपके काम में अपनी ओर से यथासंभव सहायता करूँ। आप बताएं मैं कब आ सकती हूँ? इस पत्र के साथ उस ऊन का नमूना भेज रही हूँ जो मैंने चरखे पर खाता है।
1: आपका पत्र पढ़कर बहुत अच्छा लगा। आपने ऊन का जो नमूना भेजा है वो शानदार है। आप जब आना चाहें आपका स्वागत है। अगर मुझे पता चले कि आप किस जहाज से आ रही हैं तो आपकी अगवानी के लिए और साबरमती के लिए रेलगाड़ी के बारे में जानकारी देने के लिए कोई ना कोई जरूर पहुंच जाएगा।
2: 6 नवंबर 1925 को मेडलिन स्लेट का जहाज बॉम्बे के प्रिंसेस बंदरगाह में आ गया। उनके लिए सब कुछ अलग और अजब ही था। यहां
3: वेलकम टू इंडिया मेडलिन।
0: धन्यवाद।
3: अरे वाह, मुझे बापू ने आपकी सेवा में भेजा है। मेरा ख्याल है आप कुछ दिन मुंबई में रुककर आराम करें, थोड़ा शहर घूमकर देखें।
0: नहीं नहीं, मैं आज शाम की ट्रेन से ही अहमदाबाद जाना चाहती हूँ।
3: जी, जैसा तुमको ठीक लगता है। बग्गी इधर इधर।
1: आप सबको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि इंग्लैंड से जो मेडलिन स्लेट हमारे यहाँ आ रही हैं, उनके संबंध में हमें महान फ्रांसीसी लेखक रोमा रोला का पत्र प्राप्त हुआ है। वो लिखते हैं कि जल्द ही साबरमती में आप मेडलिन स्लेट का स्वागत करेंगे, जिन्हें आपने अपने आश्रम में दाखिला देने की कृपा की है। वो मेरी बहन और मेरी प्यारी मित्र हैं और मैं उन्हें अपनी मानस पुत्री भी मानता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप उन्हें अपने सबसे विश्वसनीय शिष्यों में पाएंगे। उनकी आत्मा प्रशंसनीय ऊर्जा एवं समर्पण से भरी है। वे एकदम सीधी सादी और ईमानदार हैं। आप जिस लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं उसके लिए यूरोप उनसे ज्यादा विनम्र या निष्काय व्यक्ति प्रस्तुत नहीं कर सकता।
2: आश्रम में एक ओर मेडलिन के आने की उत्सुकता थी तो दूसरी ओर कुछ सुगबुगाहट थी।
4: मिस मेडलिन आ भी गया। चलो भाई चलो।
5: वेलकम मिस मेडलिन।
0: धन्यवाद भाई।
5: आप बापू से मिलने के पहले मुंह हाथ धो ले।
0: नहीं, मैं अभी बापू से मिलना चाहती हूँ।
5: जी जी ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। बापू, मिस मेडलिन।
1: संभल कर, तुम मेरी बेटी बन कर रहोगी।
2: एक दूसरे ब्यौरे के मुताबिक मेडलिन गांधी जी को देखते ही बेहोश हो गई थी, जिसका राज उन्होंने बाद में खोला। उन्होंने बताया कि बापू को देखते ही उन्हें उनकी तरफ से आते जबरदस्त प्रकाश की अनुभूति हुई। उस दिन के बाद मेडलिन जल्दी ही आश्रम के कार्यकलापों में हिस्सा लेने लगी।

0: मेडलिन, अब तुम हम सबको एक ईसाई भजन सुनाओ।
1: इंग्लिश प्रेयर?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं। प्रार्थना की कोई भाषा नहीं होती, यहाँ हर भाषा की प्रार्थना होती है। गाओ गाओ बेटी।

0: आइए मिस मेडलिन, मैं आपको पूरा आश्रम दिखा दूं।
1: अभी मैं एक पत्र लिख रही हूँ।
0: अच्छा अच्छा, अपने घर वालों की कुशलता की जानकारी ले रही हैं आप?
1: नहीं नहीं, उन्हें जिन्होंने मुझे यहाँ आने का रास्ता दिखाया।
0: ओह, वो प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक?
1: यस
0: जी, ठीक है, आप लिखिए, मैं चलती हूँ।
1: ओ मेरे प्यारे पिता, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि वे कितने दिव्य हैं। मैंने एक पैगंबर से मिलने की तैयारी की थी, मुझे एक देवदूत मिले। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओ मेरा जीवन सफल हो जाएगा।
2: मेडलिन के आश्रम आगमन के पहले की सुबुगाहटें अब असंतोष में बदलने लगी। कई आश्रमवासियों को ऐसा लगा कि बापू मेडलिन को खास तवज्जो दे रहे हैं।
3: कभी ऐसा हुआ है भला कि आश्रम के किसी नए सदस्य की अगवानी के लिए बापू ने महादेव देसाई, सरदार पटेल और स्वामी पटेल जैसे लोगों को भेजा हो?
4: हाँ, और आश्रम में सबसे अच्छे सूत काटने वाले सुरेंद्र भाई उसे सूत काटना सिखा रहे हैं।
3: और अब तो बापू चाहते हैं कि वो अंग्रेज पहले जल्द से जल्दी अच्छी हिंदी सीखकर उनके कार्यों में मदद करें।
4: पता नहीं बापू ऐसा क्यों कह रहे हैं।
5: बापू वो आश्रम के लोग
4: जानता, मैं आज ही सबका भ्रम दूर किए देता हूँ। जाओ, जाकर मेडलिन को यहाँ आने का संदेशा दो।
5: जी
6: जी बापू।
4: हाँ बेटी, आज मैं तुम्हें शौचालय साफ करने का तरीका सिखाता हूँ।
5: लेकिन बापू आप क्यों?
4: लाओ, मुझे ही जाना होगा, झाड़ू मुझे दो। आओ मेडलिन, हमें सारे शौचालयों की सफाई करनी है।
6: जी बापू।
4: ये देखो, इस झाड़ू से इस तरह सफाई की जाती है।
6: लाइए, मुझे दीजिए, मैं कोशिश करती हूँ। बापू, मुझे अपने कमरे में मेज, कुर्सी, पलंग और मच्छरदानी की कोई जरूरत नहीं। मैं फर्श पर चटाई पर सोने का अभ्यास कर चुकी हूँ, मुझे इसमें कोई मुश्किल नहीं।
4: ठीक है बेटी, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी।
2: मेडलिन के जिम्मेदारी भरे बर्ताव के चलते आश्रमवासी जल्दी ही समझ गए कि वो कोई साधारण अंग्रेज महिला नहीं। इसी बीच मेडलिन ने गांधी जी के समक्ष एक अप्रत्याशित अनुरोध कर सबको चकित कर दिया।
6: बापू, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ।
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
6: मैं ब्रह्मचर्य का व्रत लेना चाहती हूँ, साथ ही अपने बाल भी मुंडवाना चाहती हूँ।
4: अरे भाई, मैं कोई बुद्ध नहीं और तुम भी बौद्ध भिक्षुणु नहीं हो। ये व्रत गंभीर होते हैं, इन्हें हल्के में या हड़बड़ी में नहीं लेना चाहिए।
6: आप जानते हैं कि मैं आपसे जुड़ी किसी भी चीज को कभी हल्के में नहीं लेती। मैंने अच्छी तरह समझ लिया है कि ब्रह्मचर्य की आपकी अवधारणा का मतलब केवल यौन से नहीं बल्कि आत्मानुशासन और आत्मसंयम है। आश्रम का तपोवन वाला वातावरण मुझे आकर्षित करता है और मैं इसे मजबूत करना चाहती हूँ।
4: देखो, अगर तुम केश मुंडवाओगी तो दूसरी औरतों से अलग हो जाओगी और इससे तुम और अलग थलग पड़ जाओगी। तुम इस पर आज रात और विचार कर लो, हम कल इस पर बात करेंगे, ठीक है?
6: जी बापू।
7: चलो चलो, शाम की प्रार्थना सभा शुरू हो चुकी है।

0: आओ बैठो, मुझे तुम्हारे लिए और अपने लिए खुशी होती है। कस्तूरबा, मुझे कैंची लाकर दो, मैं अच्छे खासे बाल काट लेता हूँ।
1: मुझे आशीर्वाद दीजिए बापू।
0: मुझे मालूम है कि ये आश्रम जिन आदर्शों को साकार करने के लिए स्थापित किया गया है, उन्हें पूरा करने के लिए तुम जितना प्रयास करोगी उतना कोई और नहीं करेगा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है, एक नया नाम, मीरा। मीरा भक्ति और धैर्य से भरपूर एक राजकुमारी थी। मीरा के भजन आज भी पूरे देश में गाए जाते हैं। अपने हिंदी शिक्षक नवीन से उनके बारे में पूछना।
2: मेडलिन अब आश्रम में मीराबेन के नाम से पुकारी जाने लगी। सफेद खादी की साड़ी में वो कभी रसोई में सब्जियां काटे जाने का निरीक्षण करती तो कभी प्रार्थना सभा के पहले की तैयारियों का, और जिस समय आश्रम का कोई कामकाज न होता तो सूत काटती या कुछ पढ़ती। 1925 से 1932 के बीच उन्होंने भारत की आजादी के लिए बहुत कुछ किया। 1932 के असहयोग आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई।
3: सर, आपका कई बार वार्निंग देनी पर भी मेडलिन नहीं माना, वो हर हाल में इंडियंस को सपोर्ट देना चाहती है।
4: लगता है वो ऐसे नहीं मानेगा, अरेस्ट हर।
2: अंग्रेजों के प्रयासों से उलट इन सजाओं ने जैसे मीराबेन के दृढ़ निश्चय को बढ़ाया हो। जेल से छूटने के बाद वो फिर अपने कामों में लग गई। उन्होंने गांव-गांव जाकर बापू के आदर्शों का प्रचार प्रसार किया और समाज सेवा के नए आयाम स्थापित किए।
0: मीरा, वैसे तो तुम भारत में रहकर भी भारत की आजादी के लिए बहुत कुछ कर रही हो, लेकिन तुम्हें फिर लंदन जाना होगा।
1: लंदन?
0: हाँ मीरा, ताकि हम अपने आदर्शों की व्याख्या वहां के लोगों को समझाकर भी कर सके।
1: जी, जैसा आप ठीक समझें बापू।
2: लंदन में रहकर मीराबेन ने खुद एक अंग्रेज होते हुए भी अंग्रेजों के सामने भारत का दर्द रखा। वे कर्मचारियों अधिकारियों से मिली, अखबारों व पत्रिकाओं में लेख लिखे ताकि जल्द से जल्द भारत की आजादी का रास्ता खोल सके।
3: मेडलिन, व्हाई डोंट यू लीव इंडिया? दिस इज योर कंट्री, व्हाई यू आर फाइटिंग अगेंस्ट योर ओन कंट्री?
1: फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट मेडलिन, आई एम मीरा, एंड आई एम नॉट फाइटिंग अगेंस्ट एनी कंट्री। दिस इज ऑल अबाउट ट्रूथ एंड फॉल्स। एनीवे, आई हैव टू गो।
0: तो तुम्हारी वार्ताएं कितनी सफल रही मीरा?
1: पापू, मुझे लगता है कि वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों के विचारों को सुनते हैं और उनके विचारों की स्वतंत्रता से सहमत भी होते हैं। मैं होली फैक्स, होर, स्मट और चर्चिल से मिली और उन्हें आपके सिद्धांतों के बारे में बताया। हमें कोशिश करते रहना चाहिए, वो जल्द ही भारत छोड़ देंगे।
0: लेकिन भारत में अभी जो स्थिति है वो सचमुच बहुत गंभीर है। लोग हिंसा पर उतर आए हैं और ऐसे तो
1: आप चिंता न करें बापू, सब ठीक हो जाएगा। मेरे लिए क्या आदेश है बापू?
0: मेरे विचार से हमें अलग अलग स्थानों पर जाना होगा, वहाँ के लोगों को अपने विचारों से अवगत कराकर सही रास्ते पर लाना होगा। तुम एक काम करो, अब तुम वर्धा चली जाओ।
1: जी, जैसी आपकी इच्छा।
2: ये वक्त 1942 का था। देश की आजादी चाहने वाले सभी लोग भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे। अंग्रेजों ने सबकी गिरफ्तारी का फरमान जारी कर दिया और इसी धरपकड़ में मीराबेन फिर जेल पहुंच गईं। कुछ 2 साल जेल में बिताने के बाद उनकी रिहाई हुई।
5: अब आप कहां जाएंगी मीराबेन?
1: मैं हरिद्वार के पास एक किसान आश्रम का संचालन करूंगी। मुझे जेल में भी पत्र द्वारा बापू के दिशा निर्देश प्राप्त होते रहते थे।
5: मीराबेन, काफी दिनों से बापू का कोई पत्र नहीं आया।
1: हाँ, मैं जानती हूँ उन्हें। वे निश्चित ही देश में व्याप्त घृणा व हिंसा से खिन्न होंगे और इसलिए उनमें शायद कुछ समय के लिए विरक्ति का भाव आ गया है।
6: मीराबेन, मीराबेन, बुरी खबर है।
1: क्या हुआ?
6: जी जी, खबर मिली है कि बापू नहीं रहे।
1: नहीं रहे? मतलब?
6: हाँ, किसी ने उनकी हत्या कर दी।
1: हे राम, मेरे लिए अब तक केवल 2 सत्य थे, भगवान और बापू। आज वे दोनों मिलकर एक हो गए।
2: बरसों तक मीराबेन अपना काम करती रही, जनता की सेवा में निरंतर जुटी रही। लेकिन देश की आजादी के बाद जब उन्हें बापू के सपने बिखरते हुए दिखे तो वे चुपचाप भारत छोड़कर चली गईं। बरसों तक उनका कुछ पता न चला। 1979 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया। तब वो वियना के पास एक गांव में सादा जीवन जी रही थी। 1982 में वो अमरता को प्राप्त हो गई।
7: निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय,
8: मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार।
2: श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। और श्रोताओं, कार्यक्रम है शब्दों के शिल्पकार, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक महान कवि गोपाल दास नीरज जी के बारे में।
3: उनमें हिंदी का अश्वघोष बनने की क्षमता है। भदंत आनंद कौत्स्यायन के ये शब्द उस समर्थ कवि के लिए हैं जो अपनी बदनामी का उद्घोष भी बड़ी शान से करते हैं। कहिए, कुछ अंदाजा लगा आपको? भाई गेस कीजिए, कौन है जो कहते हैं इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, लगेंगी आपको सदियां हमें भुलाने में।
2: हाँ श्रोताओं, अपने अलग अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले कवि व गीतकार गोपाल दास नीरज हैं वे, जिन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने पहले कवि प्रदीप सम्मान से नवाजा है। वे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें शिक्षा व साहित्य के लिए भारत सरकार ने दो दो बार सम्मानित किया है, पहले पद्मश्री से फिर पद्म विभूषण से। फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ गीत लेखन के लिए तीन तीन बार उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुका है। चलिए विस्तार से जानते हैं आज इस युग प्रवर्तक कवि गोपाल दास नीरज के बारे में।
3: श्रोताओं, गोपाल दास सक्सेना नीरज का जन्म 4 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के इटावा के पुरवाली गांव में हुआ था। पिता का नाम था ब्रज किशोर सक्सेना। गोपाल दास जब 6 साल के ही थे, तभी पिता का साया सर से उठ गया। परिवार के पास भरण पोषण के लिए कुछ भी नहीं था। मजबूरी में उन्हें अपने फूफा हरदयाल वकील के पास एटा आना पड़ा। माँ के स्नेहांचल से दूर लगभग 10 सालों तक अथक जीवन संघर्ष किए। पेट पालने की चिंता में पढ़ाई भी प्रभावित हो रही थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जी तोड़ कोशिश करके कठिन परिस्थितियों में भी सन 1942 में एटा से हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की।
2: और श्रोताओं, हाई स्कूल पास करने के बाद उन्होंने इटावा कचहरी में कुछ समय के लिए टाइपिस्ट का काम भी किया, फिर एक सिनेमा घर की दुकान पर नौकरी करने लगे। लंबी बेकारी के बाद दिल्ली जाकर के सप्लाई विभाग में टाइपिस्ट की नौकरी करने लगे। पगार थी 67 रुपए महीना। सोचिए जरा श्रोताओं, इसमें भी 35-40 रुपए वे घर भेज दिया करते थे, बाकी में मुश्किल से गुजारा कर पाते थे।
3: जी हाँ, पैसे बचाने के लिए दोपहर के समय बाजार की पूड़ी इसलिए खाते थे कि वो देर से हजम होती है और भूख जल्दी नहीं लगती। इसका दुष्परिणाम उन्हें आज तक भोगना पड़ रहा है। सन 1944 से ही वे कोलाइटिस और लीवर की बीमारी का शिकार हैं। उन्हीं दिनों से लगातार 9 माह तक बुखार आने पर भी इलाज के लिए दफ्तर से छुट्टी न ले सके। पैसे का अभाव अलग था, इसलिए ढंग से इलाज भी नहीं हो सका।
2: खैर श्रोताओं, दिल्ली प्रवास में ही उन्हें युग प्रवर्तक कवि निराला और प्रख्यात समीक्षक शांति प्रिय द्विवेदी का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। ये लोग 1945 में शाहदरा में उनके निवास पर ठहरे हुए थे।
3: दिल्ली में कुछ दिनों तक नीरज सॉन्ग पब्लिसिटी ऑफिस में साहित्य सहायक भी रहे, लेकिन वे सरकार के प्रचार के बजाय राष्ट्रीयता का प्रचार करने लगे। परिणाम ये हुआ कि ये नौकरी भी उन्हें छोड़नी पड़ी। ये सन 1946 की बात है। इसके बाद वे कानपुर आ गए और कुछ दिनों तक यहाँ के डीएवी कॉलेज में क्लर्की करते रहे। उन्हीं दिनों उनका विवाह हो गया। विवाह के बाद डीएवी कॉलेज की नौकरी छोड़कर वे बालकट ब्रदर्स नाम की एक विदेशी प्राइवेट कंपनी में स्टेनोटाइपिस्ट लग गए। ये नौकरी उन्होंने अपेक्षाकृत कुछ लंबे समय तक की, लगभग 5 सालों तक।
2: और श्रोताओं, नौकरी करते हुए ही वे प्राइवेट परीक्षा देकर के 1949 में उन्होंने इंटरमीडिएट किया और उसके बाद बालकट ब्रदर्स के अतिरिक्त वे अन्य स्थानीय फर्म्स में नौकरी करते हुए 1951 में उन्होंने बीए पास कर लिया और कुछ दिनों तक कानपुर में ही जिला सूचना अधिकारी भी रहे। लेकिन पढ़ाई में बाधा आने से साल भर बाद ही यह नौकरी उन्हें छोड़नी पड़ी और उसके बाद 1953 में हिंदी साहित्य में एमए प्रथम श्रेणी में पास किया उन्होंने।
3: एमए करने के बाद नीरज 2 सालों तक बेरोजगार रहे, लेकिन ये बेरोजगारी परोक्ष रूप से उनके लिए वरदान साबित हुई, क्योंकि इस बीच उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और कवि सम्मेलनों के माध्यम से खूब वाहवाही लूटी। उनका गला अच्छा था, सो गीत श्रोताओं के दिल तक पहुंच जाते थे। लेकिन इस भागम भाग का एक नुकसान भी हुआ। पेट की बीमारी तो पहले से ही थी, अनवरत भ्रमण से उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से चौपट हो गया।
2: और श्रोताओं, इसके बाद 1955 में नीरज को मेरठ कॉलेज में हिंदी के लेक्चरर की नौकरी मिल गई, लेकिन यहाँ भी वे ज्यादा टिक न सके। कारण यह है कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उन पर क्लास न लेने के आरोप लगाए गए और इसे शुद्ध होकर के उन्होंने नौकरी छोड़ दी। हालांकि बाद में ये आरोप भी असत्य प्रमाणित हुए।
3: इस नौकरी को छोड़ने के बाद वे अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर के रूप में लग गए। अलीगढ़ में ही मैरिस रोड पर वे अपना स्थायी निवास बनाकर रहने लगे।
2: श्रोताओं, नीरज कवि सम्मेलन लूटने में माहिर थे और इस लोकप्रियता के चलते उन्हें मुंबई के फिल्म जगत में नई उम्र की नई फसल नामक फिल्म का एक गीत लिखने का निमंत्रण मिला और पहली फिल्म में उनके लिखे गीत कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे और दूसरा गीत देखती ही रहो दर्पण न तुम प्यार का यूं मुहूर्त निकल जाएगा बेहद लोकप्रिय हुआ श्रोताओं। और इसका परिणाम यह हुआ कि मुंबई में ही रह करके वे स्थायी रूप से गीत लिखने लगे।
3: फिल्मों में गीत लेखन का ये सिलसिला मेरा नाम जोकर, शर्मिली और प्रेम पुजारी जैसी अनेक चर्चित फिल्मों में कई वर्षों तक जारी रहा। लेकिन आजाद तबीयत के नीरज का मन मुंबई की फिल्मी दुनिया में अधिक नहीं लगा। फिल्म नगरी को अलविदा कहकर वे वापस अलीगढ़ आ गए।
2: श्रोता, पंत जी ने लिखा है कि वियोगी होगा पहला कवि। गोपाल दास नीरज के संबंध में भी यह सत्य है। उनका कवि जीवन 1941-1942 से शुरू होता है। कारण था असफल प्रेम। जब वे हाई स्कूल में पढ़ते थे तभी एक लड़की से उनका प्रणय संबंध हो गया था, लेकिन अचानक उससे विच्छेद हो गया और इस आघात को वे सह न सके और उनके मुख से ये पंक्तियां हठात ही फूट पड़ी। कितना एकाकी मम जीवन, किसी पेड़ पर यदि कोई पक्षी का जोड़ा बैठा होता तो न उसे भी आंखें भर के मैं इस डर से देख पाता कि कहीं नजर न लग जाए उसको।
3: और इस प्रकार वो प्रणयी युवक गोपाल दास सक्सेना कवि होकर गोपाल दास सक्सेना नीरज हो गया। शुरुआती दौर में हरिवंश राय बच्चन ने नीरज को काफी प्रभावित किया। उन्हें एक बार उनका निशा निमंत्रण पढ़ने को मिल गया। वे बताते हैं कि इस पुस्तक के पहले गीत ने ही उन्हें बहुत प्रभावित किया और उन्हें लिखने की सनक सवार हो गई।
2: हाँ श्रोताओं, और 1944 में प्रकाशित अपनी पहली काव्य कृति संघर्ष में वे लिखते हैं कि बच्चन जी से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। इसके कई कारण हैं। पहला तो यह कि बच्चन जी की तरह मुझे भी जिंदगी में बहुत लड़ना पड़ा है, अब भी लड़ रहा हूँ और शायद भविष्य में भी लड़ता ही रहूंगा।
3: क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का एक शोक गीत है सरोज स्मृति। ये लंबी कविता उन्होंने अपनी पुत्री सरोज के असामयिक निधन पर लिखी है। इसके अंत में वे लिखते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो आज तक नहीं कही। लगता है नीरज पर भी ये लागू होती है। संघर्ष की भूमिका में प्रख्यात समालोचक गुलाब राय ने लिखा था, नीरज के रुदनमय गानों में निराशा की अंतरधारा स्पष्ट रूप से झलकती है और वो जीवन के कटु अनुभवों से निःसृत होती प्रतीत होती है। जहां अमृत भी विष बन जाए वहां निराशा का होना स्वाभाविक ही है।
2: हाँ श्रोता, और नीरज की दूसरी कृति अंतरध्वनि 1946 में प्रकाशित हुई। इसमें बच्चन जी के प्रभाव से मुक्त होने का प्रयत्न उन्होंने किया है और विभावरी आते आते उन्होंने अपना स्वतंत्र जीवन दर्शन भी अपना दिया।
3: श्रोताओं, गोपालदास नीरज आज विश्व विख्यात गीतकार हैं, लेकिन उनके जीवन के कई ऐसे पहलू हैं जिससे कम ही लोग अवगत होंगे। तो क्यों ना इन अनछुए पहलुओं को खुद उनकी जुबान से ही सुना जाए। अपने शुरुआती संघर्ष को याद करते हुए वे कहते हैं,
2: बचपन में पिता की मृत्यु हो गई, तभी से जीवन संघर्ष शुरू हो गया। दूसरे के घर रहने के लिए चला गया। 10 साल वहां रहा, सो अकेलापन रहा और अंतर्मुखी हो गया। जीवन में संघर्ष मैंने खूब किया है। पहले 10 साल तक क्लर्क रहा, 3-4 बार स्टेनोग्राफर रहा, 2 साल डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर रहा, फिर 2 साल बेकार भी रहा। पेट पालने के लिए, अपनी भूख शांत करने के लिए कभी पान बीड़ी भी बेची सड़क पर बैठकर, गंगा जमुना में डूब डूब कर खूब पैसे बटोरे, रिक्शा भी चलाया, क्योंकि मैंने श्रम को कभी भी छोटा नहीं समझा। श्रम का बड़ा मूल्य है। अगर आप पान बीड़ी बेचे तो क्या बुरा करते हैं, अगर आप रिक्शा चलाते हैं पर इसमें बेईमानी नहीं करते। मैंने ट्यूशन भी किया और कोर्ट में बैठ करके टाइपिंग भी की।
3: नीरज को लोकप्रियता का मानो दैवी वरदान मिला था। स्वयं इस बात को स्वीकारते हुए वे कहते हैं,
2: मैंने कवि सम्मेलनों में गाना शुरू किया, लोकप्रिय होने लगा। लोकप्रियता मेरे पीछे पीछे भागती रही। ज्योतिष में भी मेरी रुचि रही। मैंने जब अपनी जन्म कुंडली पढ़ी तो उसमें लिखा था विश्वख्यात ऐरावत पर सवारी करें। मुझे लगा कि जो बच्चा गरीब घर में पैदा हुआ है, खाने तक को नहीं था, वो विश्वविख्यात कैसे हो सकता है। लेकिन ये हुआ और मैं अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिसिस, लंदन, जहां भी मैं गया मुझे मेरी कविता सुनने वाले मिले और मेरा नाम हिंदुस्तान से बाहर पहुंच गया फिल्मों के द्वारा। मैं मानता हूं किसी भी व्यक्ति या कवि को विदेश तक पहुंचने का श्रेय सिर्फ फिल्मों के पास है। कारवा गुजर गया गीत मैंने एक बार 1954 में लखनऊ रेडियो से पढ़ा। उस समय पूरे देश में हिंदी कवि सम्मेलन बड़े प्रेम से लोग सुनते थे। मैं ओवरनाइट सारे देश में लोकप्रिय हो गया, क्योंकि पहली बार हिंदी वालों ने नया फ्रेज सुना था कि हिंदी का कोई कवि अपनी कविता में कारवा गुजर गया जैसा शब्द बांध दे। और बाद में इसकी लोकप्रियता को भी बनाने के लिए एक पिक्चर भी बनी 1960 में, नई उम्र की नई फसल। वे बोले, हमें इसके लिए आपका ये गीत चाहिए। मैंने कहा, भाई मैं फिल्मों के लिए लिखता नहीं, आपको चाहिए तो ले लीजिए। वे बोले, आप फिल्मों के लिए गीत लिखिए। मैंने कहा, मैं सर्विस में हूं इधर, सो आ नहीं सकता हूं, आपको मेरी कविता लेनी हो तो ले लीजिए। उन्होंने मेरी कविता लेकर के फिल्म बना दी। सौभाग्य से वो फिल्म हिट भी हो गई और कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे मोहम्मद रफी साहब ने उसे गाया और वो विश्व विख्यात हो गया। जहां भी मैं गया मेरा परिचय कारवा गुजर गया कवि के रूप में ही दिया गया।
3: श्रोताओं, एसडी बर्मन उनके पसंदीदा संगीतकार रहे। उन्हें याद करते हुए वे कहते हैं,
2: बर्मन साहब ने जैसे मेरे गीत बनाए वैसे किसी और ने नहीं किया ये काम। मुझे लगता नहीं कि वे नए नए प्रयोग करते थे और मैंने भी नए नए प्रयोग किए भाषा के साथ।
3: श्रोताओं, मेरा नाम जोकर फिल्म पहले प्रदर्शन में फ्लॉप साबित हुई। राज कपूर साहब को दिवालिया कर दिया इस फिल्म ने, लेकिन इसके गीत अपनी दार्शनिकता के कारण सुपरहिट रहे। इन्हें नीरज ने लिखा था। उस दौर को याद करते हुए वो कहते हैं,
2: फिल्मी दुनिया में लेखक और म्यूजिक डायरेक्टर का एक आपस में सामंजस्य हो जाता है। अब क्या हुआ, जब मेरी पिक्चर सिल्वर जुबली कर रही थी शर्मिली और मेरा नाम जोकर सुपर फ्लॉप रही, पर इसमें मेरा लिखा गीत ए भाई जरा देख के चलो सुपरहिट हुआ। ये मेरी नई बनाई हुई ट्यून है और मेरा ही कॉन्सेप्ट है। इसमें राज कपूर का कहीं कुछ भी नहीं है। वे जानते ही नहीं थे कि जोकर क्या गाएगा। जब मैंने गीत बना करके दिया, उसमें सर्कस के माध्यम से पूरा प्रदर्शन किया, दुनिया ये सर्कस है, ये गीत सुपर डुपर हिट हुआ।
3: श्रोताओं, नीरज को बुलंदी पर भले ही फिल्मों ने पहुंचाया हो, लेकिन उनका उदय तो कवि सम्मेलनों से ही हुआ था। खुद नीरज साहब भी उनका जिक्र बड़े ही उत्साह से करते हैं। कैसे, सुनिए।
2: सन 1941 में मैंने पहली बार मुंह खोला था। सोहनलाल द्विवेदी जी ने अध्यक्षता की थी। मैंने कविता पढ़ी और मैं लोकप्रिय हो गया। गला मेरा बहुत ही मधुर था। मैं उन दिनों अपने कॉलेज में सहगल कहा जाता था। तब कवि सम्मेलनों का स्तर बहुत ऊंचा हुआ करता था। अच्छी कविता पढ़ी जाती थी, सुनने वाले आते थे, रसिक जन आते थे जो कविता के प्रेमी थे। भीड़ कम होती थी और श्रोता ज्यादा होते थे।
3: सन 1962 या 63 में खंडवा में एक कवि सम्मेलन हुआ था। इसमें नीरज साहब ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले विजेता तेंजिंग पर एक कविता पढ़ी जो बहुत सराही गई थी। इस कविता का एक अंश आप भी सुनिए।
2: आखिर मुट्ठी भर धूल पहुंच गई वहां, जा ना सके पांव जहां इतिहास पुराणों के। आखिर धरती के बेटे ने कूद ही दिए बर्फीले बाल पहाड़ों के चट्टानों के।
3: रूपक देखिए कितना अभिनव, तरोताजा, उत्कृष्ट काव्यत्व की ऐसी ही मिसाल आपको नीरज की प्रायः सभी कविताओं में मिलेगी।
2: चलिए श्रोताओं, बात करते हैं नीरज के फिल्मी गीतों के सफर की। श्रोताओं, फिल्मों ने नीरज को लोकप्रियता के आसमान पर पहुंचा दिया। हिंदी फिल्म जगत को भी नीरज के गीतों ने एक नया रूप दिया, नई रंगत दी। कारवां गुजर गया को तो मील का पत्थर माना जाता है, उनके बाकी गीत भी एक से बढ़कर एक हैं। किसी में जिंदगी की सच्चाई है तो किसी में समाज की हकीकत, कहीं प्रेम की गहराई है तो कहीं दार्शनिकता, एक चिंतन धारा झलकती है उनके गीतों में। मसलन सामाजिक सच्चाई को प्रतिबिंबित करता है मेरा नाम जोकर का यह गीत, सुनिए।

0: प्रेम भी क्या चीज है श्रोताओं, सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक लगातार चली आ रही है।
1: बिल्कुल,
0: सभ्यताएं बदली, संस्कृतियां बदली, मिट्टी पानी समाज सब बदलते रहे, पर प्रेम प्रेम नहीं बदला। बदले भी कैसे, इसके बिना जीने का कोई मतलब भी तो नहीं रह जाता। नीरज साहब का एक गीत देखिए, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। दोबारा सुनिए इसे गौर से, जी हाँ, नए अर्थ मिलेंगे आपको।
2: बस ये

0: श्रोताओं एक बात और बताएं आपको, जब से कान्हा ने राधा के लिए बंसी बचाई, लगता है तभी से प्रेम में बंसी की महिमा बढ़ गई है, और तभी से मुहावरा भी बन गया प्रेम की बंसी बजाना। श्रोता हम आपको बता दें, प्रेम का हारमोनियम, प्रेम का सितार, प्रेम का गिटार, ये सब कोई नहीं बजाता।
1: बिल्कुल, प्रेम की बंसी बजती है।
0: हाँ, और इसके पीछे नीरज साहब का ये गीत सुनिए।

श्रोताओं, प्रेम एक नशा है, जो चढ़े तो हर नशा फीका लगता है, फिर चाहे प्रेम आध्यात्मिक हो या लौकिक। ये चढ़े तो खुमारी बराबर की होती है, गोपालदास नीरज भी गाते हैं।

0: तो देखा श्रोताओं, कली, लहर, नदी, किरण सब के सब से अपील है कि हाथ बढ़ाओ, मुझे पिया से मिलना है। लेकिन प्रेम में विछोह भी तो सहना पड़ता है। सच कहें तो मिलन और वियोग दिन रात की तरह हैं, इनका क्रम चलता ही रहता है। फिर विरह के बिना मिलन का आनंद भी तो नहीं। प्रेम की परीक्षा भी विरह में ही होती है। उसी समय समझ में आता है कि प्रेम कितना गहरा है। अब नीरज के नायक का हाल देखिए, जिसने प्यार में खत लिखे तो क्या क्या नजारे बन गए।
1: लिखे

0: श्रोताओं, नीरज साहब के फिल्मी गीतों की गिनती बहुत लंबी है। सवाल जब यह उठता है कि कौन सा गीत उन्हें सर्वाधिक पसंद है, तो पता है किसका नाम लेते हैं वे?
1: किसका?
0: फिल्म प्रेम पुजारी के इस गीत का।

0: तो श्रोताओं, इसी तरह हमारे शब्दों का कारवा भी गुजरता जा रहा है। ये थी हमारी आज की प्रस्तुति गोपाल दास नीरज के ऊपर शब्दों के शिल्पकार कार्यक्रम में। अब हमें इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है। सुनकर

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: आपने अब तक जाना कि स्वामी जी इतिहास के बहुत बड़े ज्ञाता थे। केवल अपने देश का ही नहीं बल्कि उन्हें विश्व इतिहास का अच्छा ज्ञान था। राजनीतिक इतिहास के साथ साथ वे सामाजिक बदलाव का इतिहास भी बयान करते थे।
1: भारत के सिवाय अन्यत्र सभी देशों के धर्मों का यही मत था कि समस्त संसार टुकड़ा टुकड़ा अलग है। ईश्वर भी अलग है, प्रकृति भी अलग है, मनुष्य अलग है, इसी प्रकार पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पत्ता मिट्टी पत्थर धातु आदि सब अलग है। भगवान ने इसी प्रकार सब अलग करके सृष्टि की है।
2: स्वामी जी ने सभ्यता का इतिहास अपनी रोचक शैली में बताया। उन्होंने सृष्टि की शुरुआत से प्रारंभ किया।
1: हम पहले ही कह आए हैं कि हमारी विद्या बुद्धि और चिंता सभी आध्यात्मिक हैं। सभी का विकास धर्म के भीतर है और पाश्चात्यों में ये सारे विकास बाहर शरीर और समाज में है। भारत के चिंतनशील मनीषी क्रमशः समझ गए थे कि इन चीजों को अलग अलग मानना भूल है। अलग होते हुए भी उन सब में एक संबंध है। मिट्टी पत्थर पेड़ पत्ता जीव जंतु मनुष्य देवता यहां तक कि स्वयं ईश्वर भी एक है। अद्वैतवादी इसकी चरम सीमा पर पहुंच गए। उन्होंने कहा, यह सब कुछ उसी का एक विकास है। सचमुच यह अध्यात्म और अधिभूत जगत एक ही है। उसी का नाम ब्रह्म है और जो अलग अलग मालूम पड़ता है वो भूल है। वही माया अविद्या अर्थात अज्ञान है। यही ज्ञान की चरम सीमा है।
0: पाश्चात्य मत से समाज का क्रम विकास हुआ, धीरे धीरे मनुष्य सभ्य हुआ।
1: इसलिए तो इस देश के प्रायः सभी लोग परिणामवादी बने हुए हैं। जैसे छोटा पशु कालांतर में बदलकर बड़ा पशु हो जाता है, कभी बड़ा जानवर छोटा भी हो जाता है, कभी लुप्त भी हो जाता है, इसी प्रकार मनुष्य का भी हुआ होगा, उसका भी क्रमशः विकास हुआ होगा। मनुष्य सभ्य अवस्था में एकाएक पैदा हुआ, इस बात पर अब कोई विश्वास नहीं करता। कारण इनके बाप दादा थोड़े ही दिन पहले असभ्य जंगली थे, अब इतने कम दिनों में ही वे लोग सभ्य हो गए हैं। इसलिए वे लोग कहते हैं कि सभी मनुष्य क्रमशः असभ्य अवस्था से सभ्य हुए हैं और हो रहे हैं।
2: आदिम मनुष्य प्रकृति के साथ एकात्म होकर गुजर बसर करते थे। धीरे धीरे वे प्रकृति पर विजय पाने लगे।
1: आदिम मनुष्य काठ पत्थर के औजारों से काम चलाता था। चमड़ा या पत्ता पहनकर दिन बिताते थे। पहाड़ की गुफाओं में या चिड़ियों के घोंसलों की तरह झोपड़ियों में गुजर करते थे। इसका प्रमाण सभी देशों में मिलता है और कहीं तो अभी भी मनुष्य उसी अवस्था में मौजूद है। क्रमशः मनुष्य ने धातु का व्यवहार करना सीखा, उन नरम धातुओं का जैसे टीन और तांबा। प्राचीन यूनानी बेबीलोन और मिश्र निवासी भी बहुत दिनों तक लोहे का व्यवहार नहीं जानते थे। जब वे पहले की अपेक्षा सभ्य हो गए तो पुस्तक आदि लिखने लगे, सोने चांदी का व्यवहार करने लगे, परंतु तब तक वे लोहे का व्यवहार नहीं जानते थे। अमेरिका महाद्वीप के आदिम निवासियों में मैक्सिको पेरू माया आदि जातियां दूसरों से सभ्य थीं। वे बड़े बड़े मंदिर बनाती थीं। सोने चांदी का उनमें खूब व्यवहार था, यहां तक कि सोने चांदी के लालच से स्पेन वालों ने उनका नाश कर डाला। किंतु वे सब काम चकमक पत्थर के औजारों द्वारा बड़े परिश्रम से किए जाते थे। लोहे का कहीं नामो निशान भी नहीं था।
0: शिकार, फिर पशुपालन, फिर खेती किसानी, ये रहा मनुष्य विकास का इतिहास।
1: आदिम अवस्था में मनुष्य तीर धनुष या जाल आदि के द्वारा पशु पक्षी या मछली मारकर खाता था। क्रमशः उसने खेती बाड़ी करना और पशु पालना सीखा। जंगली जानवरों को अपने अधिकार में लाकर अपना काम कराने लगा। गाय बैल घोड़ा सुअर हाथी ऊंट भेड़ बकरी मुर्गी आदि मनुष्य के घर में पाले जाने लगे। इनमें कुत्ते मनुष्य के आदिम दोस्त थे। इसके बाद खेती बाड़ी आरंभ हुई। जो फल फूल साग सब्जी गेहूं चावल मनुष्य आजकल खाता है, उन चीजों की आदिम जंगली अवस्था बहुत भिन्न थी। बाद में मनुष्यों के अध्यावसाय से ही वे वस्तुएं अनेक सुखदायक पदार्थ बन गईं। प्रकृति में तो दिन रात परिवर्तन होता ही रहता है। नाना प्रकार के पेड़ पौधे पैदा होते रहते हैं। पशु पक्षियों के शरीर संसर्ग में देश काल के परिवर्तन से नई नई जातियों की सृष्टि होती रहती है। इस प्रकार प्रकृति मनुष्य की सृष्टि करती थी, पर मनुष्य की सृष्टि के पूर्व प्रकृति धीरे धीरे पेड़ पौधों तथा दूसरे पशुओं में परिवर्तन करती थी, पर मनुष्य की सृष्टि होते ही उसने जोर से परिवर्तन आरंभ कर दिया। मनुष्य एक देश के पौधे और जीव जंतुओं को दूसरे देश में ले जाने लगा और उनके परस्पर मिश्रण से कई प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधों की जातियां मनुष्य द्वारा उत्पन्न की जाने लगी।
2: समाज की सृष्टि हुई, सभी लोग देवता और जंगली लोग असुर कहलाए।
1: समाज की सृष्टि होने लगी, देश भेद से ही समाज की सृष्टि हुई। समुद्र के किनारे जो लोग रहते थे वे अधिकांश मछली पकड़कर अपना जीवन निर्वाह करते थे। जो समतल जमीन पर रहते थे वे खेती बाड़ी करते थे। जो पर्वतों पर रहते थे वे भेड़ चराते थे। जो बालू के मैदानों में रहते थे वे बकरी और ऊंट चराते थे। कितने ही लोग जंगलों में रहकर शिकार करने लगे। जिन्होंने समतल जमीन पाकर खेती बाड़ी करना सीखा वे पेट की ज्वाला से बहुत कुछ निश्चिंत होकर विचार करने का अवकाश पाकर अधिकतर सभ्य होने लगे। किंतु सभ्यता आने के साथ शरीर दुर्बल होने लगा। जो दिन रात खुली हवा में रहकर अधिकतर मांस खाते थे उनमें और घर के भीतर रहकर अधिकतर अनाज खाते थे बहुत अंतर होने लगा। शिकारी पशु पालने वालों या मछली खाने वालों को जब कभी भोजन की कठिनाई पड़ती तभी वे समतल भूमि निवासी कृषकों को लूटने लगते। समतल निवासी आत्मरक्षा के लिए आपस में दल बांधने लगे और इस प्रकार छोटे छोटे राज्यों की सृष्टि होने लगी। देवताओं का भोजन अनाज होता था, वे सभ्य होते थे तथा ग्राम नगरों अथवा उद्यानों में निवास करते थे और बुने हुए कपड़े पहनते थे। असुरों का वास पहाड़ पर्वत मरुभूमि या समुद्र तट पर होता था। उनका भोजन जंगली जानवरों का मांस तथा जंगली फल मूल था और कपड़े थे बकरी के चमड़े अथवा अन्य कोई चीज से बने, जो इन चीजों के बदले में वे देवताओं से पा जाते थे।
0: देव और असुरों में संघात शुरू हुआ। देव बुद्धिबल से जीतने लगे।
1: असुरों को भोजन का अभाव होते ही वे लोग दल बांधकर पहाड़ से उतरकर या समुद्र के किनारे से आकर गांव नगरों को लूटते थे। वे कभी कभी धन धान्य के लोभ से देवताओं पर भी आक्रमण कर बैठते थे। यदि बहुत से देवता एकत्रित ना हो सकते थे तो उनकी असुरों के हाथ से मृत्यु हो जाती थी। देवताओं की बुद्धि तेज थी, इसलिए वे कई तरह के अस्त्र शस्त्र तैयार करने लगे। ब्रह्मास्त्र गरुणास्त्र वैष्णवास्त्र ये सब देवताओं के अस्त्र थे। असुरों के अस्त्र तो साधारण थे पर उनके शरीर में बल बहुत था। बारंबार देवताओं को असुरों ने हरा दिया, पर वे सभ्य होना नहीं जानते थे। वे खेती बाड़ी भी नहीं कर सकते थे और ना बुद्धि का प्रयोग ही कर सकते थे।
2: जनसंख्या धीरे धीरे फैलने लगी, कुछ वीर जाति बने और कुछ कमजोर।
1: उपलब्ध इतिहास से मालूम होता है कि जम्बूद्वीप के मध्य भाग और अरब की मरुभूमि में असुरों का प्रधान अड्डा था। इन स्थानों में इकट्ठे होकर असुरों ने अपनी संतानों को चरवाहों में फैला दिया। यूरोप खंड के आदिम निवासियों की एक विशेष जाति अवश्य पहले से ही थी। पर्वत की गुफाओं में इस जाति का निवास था और इस जाति के जो लोग अधिक बुद्धिमान थे वे थोड़े जल वाले तालाबों में मचान बांधकर उन्हीं पर रहते और घर द्वार निर्माण करते थे। ये लोग अपने सारे काम चकमक पत्थर से बने तीर भाले चाकू कुल्हाड़ी आदि से ही चलाते थे। क्रमशः जम्बूद्वीप का नर स्रोत यूरोप में आने लगा। कहीं कहीं अपेक्षाकृत सभ्य जातियों का अभ्युदय हुआ। रूस देश की किसी जाति की भाषा भारत की दक्षिणी भाषा से मिलती है, किंतु ये जातियां बहुत दिनों तक अत्यंत बर्बर अवस्था में रही। एशिया माइनर के सभ्य लोगों का एक दल समीपवर्ती द्वीपों में जा पहुंचा। उन लोगों को हम यवन कहते हैं और यूरोपीय उन्हें ग्रीक नाम से पुकारते हैं।
0: जातियों के सम्मित्रण से यूरोपियन जाति का जन्म हुआ। भारत और ग्रीस सभ्यता में अग्रणी थे।
1: हिंदुओं का सा काला रंग, उत्तरी देशों का दूध की ही तरह सफेद रंग, काले भूरे अथवा सफेद केश, काली भूरी नीली आंखें, खास हिंदुओं की तरह नाक मुंह और आंखें तथा चीनियों की तरह चपटे मुंह, इन सब आकृतियों से युक्त बर्बर यूरोपीय जाति की उत्पत्ति हो गई। कुछ दिनों तक वे आपस में ही मारकाट करते रहे। उत्तर के डाकू मौका पाने पर अपने से जो सभ्य थे उनका नाश करने लगे। बीच में ईसाई धर्म के दो गुरु, इटली के पोप और पश्चिम में कॉन्स्टेंटिनोपल शहर के पेट्रियार्क इस पशुप्राय बर्बर जाति और उसके राजा रानी के ऊपर शासन करने लगे। इस ओर अरब की मरुभूमि में मुसलमानी धर्म की उत्पत्ति हुई। जंगली पशु के तुल्य अरबों ने एक महापुरुष की प्रेरणा से अदम्य तेज और अनाहत बल से पृथ्वी के ऊपर आघात किया। पश्चिम पूर्व के दो प्रांतों के उस तरंग ने यूरोप में प्रवेश किया। उसी प्रवाह में भारत और प्राचीन ग्रीक की विद्या बुद्धि यूरोप में प्रवेश करने लगी। कई शताब्दियों के पश्चात जब तुर्क आदि जातियां बौद्ध धर्म छोड़कर मुसलमान बन गईं, तो उस समय इन तुर्कों ने संभाव से हिंदू पारसी आदि सबको दास बना दिया। भारतवर्ष को जीतने वाले मुसलमान विजेताओं में एक दल भी अरबी या पारसी नहीं है, सभी तुर्की या तातारी हैं। सभी आगंतुक मुसलमानों को राजपूताना तुर्क कहते हैं। यही सत्य और ऐतिहासिक तथ्य है। कुतुबुद्दीन से लेकर मुगल बादशाहों तक सब तातार लोग ही थे, अर्थात जिस जाति के तिब्बती थे उसी जाति के, सिर्फ वे मुसलमान हो गए। हिंदू पारसियों से विवाह करके उनका चपटा मुंह बदल गया।
0: मूर जाति ने यूरोप में सभ्यता का सूत्रपात किया। स्वामी जी ने कहा,
1: इधर मूर नामक एक मुसलमान जाति ने स्पेन देश में एक अत्यंत सभ्य राज्य की स्थापना की और वहां अनेक प्रकार की विद्याओं की चर्चा आरंभ कर दी। फलतः पहले पहल यूरोप में यूनिवर्सिटियों की सृष्टि हुई। इटली फ्रांस और सुदूर इंग्लैंड से वहां विद्यार्थी पढ़ने आने लगे। राजा रजवाड़ों के लड़के युद्ध विद्या आचार कायदा सभ्यता आदि सीखने के लिए वहां आने लगे और घर द्वार महल मंदिर तब नए ढंग से बनने लगे। यूरोपीय नामक वस्त्र के ये सब उपकरण हुए। एक शीतोष्ण पहाड़ी समुद्र तटमय प्रदेश उसका करघा बना और सर्वदा युद्ध प्रिय बलिष्ठ अनेक जातियों की समष्टि से पैदा हुई एक सम्मिश्र जाति इसकी रूई हुई। इसका ताना हुआ आत्मरक्षा और धर्मरक्षा के लिए सर्वदा युद्ध करना।
2: यूरोप में जमीन उर्वरक नहीं थी, इसीलिए अन्न की खोज में वे दूसरे देशों पर चढ़ाई करते रहे।
1: यूरोपियनों को जिस देश में मौका मिलता है वहां के आदिम निवासियों का नाश करके स्वयं मौज से रहने लगते हैं। इसलिए उनका कहना है कि आर्य लोगों ने भी वैसा ही किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस धारणा का आधार क्या है? सिर्फ अंदाज ही? तुम लोग अपना अंदाज अनुमान अपने घर में रखो। किस वेद अथवा सूक्त में अथवा अन्यान्य और कहीं तुमने देखा है कि आर्य दूसरे देशों से भारतवर्ष में आए? इस बात का प्रमाण तुम्हें कहां मिला है कि उन लोगों ने जंगली जातियों को मार काट कर यहां निवास किया? इस व्यर्थ अहमकपन की क्या जरूरत है? तुमने तो रामायण पढ़ी ही नहीं, फिर व्यर्थ ही रामायण के आधार पर ये सफेद झूठ क्यों गढ़ रहे हो?
0: पर भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। रामायण आर्य जाति द्वारा अनार्य विजय का उपाख्यान नहीं है।
1: रामायण क्या है? आर्यों के द्वारा दक्षिणी जंगली जातियों की विजय। हां, यह ठीक है कि रामचंद्र सुसभ्य आर्य राजा थे, पर उन्होंने किसके साथ लड़ाई की थी? लंका के राजा रावण के साथ। जरा रामायण पढ़कर तो देखो, वो रावण सभ्यता में रामचंद्र के देश से बढ़ा चढ़ा था कम नहीं। लंका की सभ्यता अयोध्या की सभ्यता से अधिक थी कम नहीं। इसके अलावा वानरादि दक्षिणी जातियां कहां जीत ली गईं? वे सब तो श्री रामचंद्र जी के दोस्त बन गए थे। किसी के ग्रह का या किस बाली नामक राजा का राज्य श्री रामचंद्र ने छीन लिया? तुम कहो तो सही।
2: दूसरों का नाश कर खुद जीना यूरोप का हमेशा यही रवैया रहा।
1: यूरोपीय लोगों, तुमने कब किसी देश का भला किया है? अपने से अवनत जाति को ऊपर उठाने की तुम में शक्ति कहां है? जहां कहीं तुमने दुर्बल जाति को पाया, नेस्त नाबूद कर दिया और उसकी निवास भूमि में तुम खुद बस गए और वे जातियां एकदम मटिया मेट हो गईं। वे सब जंगली जातियां आज कहां हैं? एकदम सत्यानाश। जंगली पशुओं की तरह उन्हें तुम लोगों ने मार डाला। जहां तुम्हारी शक्ति काम नहीं कर सकी, सिर्फ वहीं अन्य जातियां जीवित हैं।
0: स्वामी जी ने भारत और यूरोप की तुलना करते हुए कहा,
1: भारतवर्ष ने तो ऐसा कभी भी नहीं किया। आर्य लोग बड़े दयालु थे। उनके अखंड समुद्रवत विशाल हृदय में, दैवी प्रतिभा संपन्न मस्तिष्क में, उन सब आकर्षक प्रतीत होने वाली पाश्विक प्रणालियों ने किसी समय भी स्थान नहीं पाया। विदेशी अहमकों, यदि आर्य लोग जंगली लोगों को मार पीट कर यहां वास करते तो क्या वर्णाश्रम की सृष्टि होती? यूरोप का उद्देश्य है सबको नाश करके स्वयं अपने को बचाए रखना। आर्यों का उद्देश्य था सबको अपने समान करके अथवा अपने से भी बड़ा करना। यूरोपीय सभ्यता का साधन तलवार है और आर्यों की सभ्यता का उपाय वर्ण विभाग। शिक्षा और अधिकार के तारतम्य के अनुसार सभ्यता सीखने की सीढ़ी थी वर्ण विभाग। यूरोप में बलवानों की जय और निर्बलों की मृत्यु होती है। भारत में प्रत्येक सामाजिक नियम दुर्बलों की रक्षा करने के लिए ही बनाया गया है। आर्य लोग शांति प्रिय हैं, खेती बाड़ी करते हैं और शांति से अनाज पैदा करते हैं। अपने परिवार का पालन पोषण मात्र कर देने से खुश हो जाते थे। उनके लिए सांस लेने का अवकाश यथेष्ट था, इसलिए चिंताशील तथा सभ्य होने का अवकाश अधिक था। हमारे जनक राजा अपने हाथों से हल भी चलाते थे और उस समय के सर्वश्रेष्ठ आत्मविद भी थे। यहां आरंभ से ही ऋषि मुनियों और योगियों आदि का अभ्युदय था। वे लोग आरंभ से ही जानते थे कि संसार मिथ्या है, लड़ना झगड़ना बेकार है। जो आनंद के नाम से पुकारा जाता है उसकी प्राप्ति शांति में है और शांति है शारीरिक भोग के विसर्जन में। सच्चा आनंद है मानसिक उन्नति में और बौद्धिक विकास में, ना कि शारीरिक भोगों में। जंगलों को आबाद करना उनका काम था।
2: अंत में स्वामी जी आधुनिक यूरोप की तारीफ करते हैं।
1: पाश्चात्य देशों में इस समय एक साथ ही लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की कृपा हो गई है। केवल भोग की चीजों को ही एकत्रित करने पे वे शांत नहीं होते, वरन सभी कामों में एक सुंदरता देखना चाहते हैं। खान पान, घर द्वार, सभी में सुंदरता की खोज है। जब धन था तो हमारे देश में भी एक दिन यही भाव था। इस समय एक दरिद्रता के कारण ही हम लोग इतो नष्ट स्ततो भ्रष्ट होते जा रहे हैं। जाति के जो गुण थे वे मिटते चले जा रहे हैं और पाश्चात्य देश के लिए हम एक नियम को अपनाने में भी असमर्थ हैं। पूजा पाठ प्रवृत्ति आदि जो कुछ था उसे तो हम लोग जल में प्रवाहित किए दे रहे हैं, पर समय उपयोगी किसी नवीन नियम का अभी भी निर्माण नहीं हो रहा है।
0: भारत ने प्राचीन गौरव खो दिया है, हर तरफ अवनति ही नजर आती है।
1: यहां सबसे अधिक दुर्दशा कलाओं की हुई है। पहले सभी वृद्धाएं दीवारों को रंग बिरंगा करती थी, आंगन को फूल पत्तों के चित्रों से सजाती थी, खाने पीने की चीजों को भी कला की चातुरी से सजाती थी। वो सब या तो चूल्हे में चला गया है या शीघ्र ही जा रहा है। नई चीजें अवश्य सीखनी होंगी और करनी भी होंगी, पर क्या पुरानी चीजों को जल में डुबाकर? नई बातें तो तुमने खाक सीखी हैं, केवल बकवास करना जानते हो। काम की विद्या तुमने कौन सी सीखी है? आज भी दूर के गांव में लकड़ी के और ईंटों के पुराने काम देखाओ। कलकत्ते के बढ़ई एक जोड़ा दरवाजा तक तैयार नहीं कर सकते। दरवाजा क्या सिटकनी तक नहीं बना सकते। बढ़ई पना तो अब केवल अंग्रेजी औजारों को खरीदने में ही रह गया है। यही अवस्था सब चीजों में उपस्थित हो गई है। हमारा जो कुछ था ये सब तो जा रहा है और विदेशों से भी सीखी है केवल बकवास।
2: पश्चिम में सफाई का बहुत महत्व है, स्वामी जी ने जब देखा तो कहा,
1: साफ सुथरा बनने ठन्ने में इस देश का इतना अधिक अभ्यास हो गया है कि गरीब से गरीब आदमी की भी इस ओर दृष्टि रहती है। दृष्टि भी किसी मतलब से ही रहती है, कारण साफ सुथरा कपड़ा लत्ता ना पहनने से कोई उन्हें काम काज ही ना देगा। नौकर मजदूरिन रसोईया सबका कपड़ा दिन रात लकालक रहता है। घर द्वार झाड़ झूड़ धो पोंछ कर साफ सुथरा किया रहता है। इनकी प्रधान विशेषता ये है कि इधर उधर कभी कोई चीज नहीं फेंकेंगे। रसोई घर झका झक कूड़ा करकट जो कुछ फेंकना है बर्तन में फेंकेंगे, फिर उस स्थान से दूर ले जाकर फेंकेंगे, ना आंगन में और ना रास्ते में ही फेंकेंगे।
0: स्वामी यूरोप और अमेरिका में खूब घूमे, उनकी कला की तारीफ की।
1: जिनके पास धन है उनका घर देखने की चीज होती है, रात दिन सब झकाझक रहता है। इसके बाद देश विदेशों की नाना प्रकार की कारीगरी की चीजों को एकत्रित करते हैं। इस समय हमें उनकी तरह कारीगरी की चीजें एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु जो चीजें नष्ट हो रही हैं उनके लिए तो थोड़ा यत्न करना पड़ेगा या नहीं। उनकी तरह का चित्रकार या शिल्पकार स्वयं होने के लिए अभी भी बहुत देरी है। इन दोनों कामों में हम लोग बहुत दिनों से ही अपटु हैं। हमारे ठाकुर जी तक कितने सुंदर होते हैं या तो जगन्नाथ जी को ही देखने से पता लग जाता है। बहुत प्रयत्न से उसकी नकल करने पर कहीं एक आध रवि वर्मा पैदा होते हैं। उसकी अपेक्षा देशी ढंग के चित्र बनाना अधिक अच्छा है। उनके कामों में फिर झकाझक रंग हैं, पर उनकी अपेक्षा जयपुर के सुनहले चित्र और दुर्गा जी के चित्र आदि देखने में अधिक सुंदर हैं।
2: आपने स्वामी जी के विश्व सभ्यता का संक्षिप्त इतिहास सुना। वे जहां भी जाते थे वहां के इतिहास और समाज को भली भांति जानने का प्रयास करते थे और अपने ढंग से परिभाषित करते थे।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

कल सुबह 7 बजे सुनी का कार्यक्रम जीवन सौरभ। अक्षय निधि ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे 7:10 से। भक्ति संगीत आप सुन सकेंगे 7:20 से। डॉक्टर मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी पर केंद्रित कार्यक्रम वतन का राग आपको सुनवाएंगे 8 बजे से। प्रकृति के पुकार ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 8:30 से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रकृति और मनोविज्ञान पर जानकारी सुनेगा पारुल ऋषि से मनीषा चतुर्वेदी की बातचीत। योग संवाद सुनेगा 9 बजे से। 9:30 पर आपको सुनवाएंगे कलापनी कोमकली का भक्ति गीत विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत। दस बजे सुनेगा परिक्रमा और उसके बाद आप सुन सकेंगे रेडियो रिपोर्ट हिंदुस्तान हमारा ये कार्यक्रम सुनेगा 10:30 से।

सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। रात्रि के 10 बजे हैं। इसी के साथ हमारी आज की सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।